मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी ऐप पर। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। सुबह के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा का शुभारंभ।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय

0: ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हम कोटि कोटि भारतीय अपने जनतंत्र के प्रति निष्ठावान हैं। जहां एक ओर अपने राष्ट्र की प्राकृतिक छटा और गौरवशाली इतिहास से हम गौरवान्वित हैं, वहीं उसकी समृद्धि, सुरक्षा और उन्नति के प्रति सक्रिय, सचेत और संकल्पित भी।

जो अनित्य है वही नित नए रूपों में सामने है, जो अजन्मा है वही अनेकानेक अवतारों में जन्म ले कष्टों का निवारण करता है। तेरी माया ही नहीं, कृपा भी अपरंपार है।

हर एक मनुष्य में उसका अपना सामर्थ्य, शक्ति और गुण है। जीवन के सुख संतोष के लिए वो निरंतर प्रयासरत भी है। अपनी सामर्थ्य से परे या कष्ट के निवारण के लिए ही वह स्मरण करता है प्रभु का, जो कभी भूला, कभी मनमोहन, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कभी मात्र स्वरूप में अभिव्यक्त होता है।

ये आस्था के रंग हैं या परम शक्ति का विराट स्वरूप, जो कभी स्वामी सखा है वही कभी परम पिता परमेश्वर, जिससे बच्चों के से अधिकार भाव से हम सुख की कामना करते हैं।

अक्षर का अपना अलंकार होता है, शब्द की ध्वनि। इसमें जब भक्ति की भावना, समर्पण का भाव जा मिलता है, तब वो नाद उस परब्रह्म तक पहुंचता ही है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर मन्ना डे, सुरेश बाडकर और साथी संगीत है सतीश भाटिया का।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख है सुरेश तिवारी का।
1: ज़ैन फकीर लिंची से किसी ने पूछा, तुम्हारी साधना क्या है? उसने कहा, भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, और जब प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, और जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा, लेकिन ये तो सभी साधारण लोग करते हैं। इस पर लिंची ने जवाब दिया, मैं कौन सा असाधारण हूँ, मैं साधारण से भी साधारण हूँ। उस आदमी ने फिर पूछा, फिर फायदा क्या है? लिंची ने कहा, फायदा बहुत है, संतुष्ट हूँ, और क्या फायदा। आज अपने सामने हर एक आदमी का चेहरा हम रखें तो कुछ उल्टी ही तस्वीर नजर आती है, कोई भी हमें संतुष्ट नजर नहीं आता है। एक आपाधापी है सबके पास, कोई किसी बात के लिए भाग रहा है तो कोई किसी बात के लिए। औसत आदमी के पास चाहे जो कुछ भी हो पर संतोष जरा नहीं है। आदमी ने अपने हिस्से में जो भी पाया है उसे वो कम लगता है। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहता है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में बेचैनी भी बहुत ज्यादा है। आदमी ने अपने आसपास ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि उसे जरा भी शांति नहीं मिलती। कभी हम विचार करें तो लगता है कि लालसा ने, चीजों के प्रति मोह ने, और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने सबको परेशान कर रखा है। कोई भी आदमी अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो जो है या जिस हाल में है, कम से कम उस हाल से वो संतुष्ट नहीं है। वो किसी और की तरह की स्थिति और जगह पाना चाहता है। ये चाह उसके भीतर लगातार बनी रहती है, और यही कारण है कि वो न तो आज संतुष्ट दिखता है और न ही उसके भीतर आगे भी संतुष्टि आएगी, ऐसा दिखाई देता है। सुनी हुई बात है, अफ्रीका के एक गांव में यूनेस्को की तरफ से नल लगाए गए, पानी के नल लगाए गए। उस गांव में अब तक एक कुआं था, लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव के बूढ़ों ने आकर खबर दी कि हम क्षमा चाहते हैं, ये पाइपलाइन अलग कर दी जाए, क्योंकि हमारे गांव की सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वे लोग बहुत हैरान हुए। व्यवस्था करने वाले लोगों ने कहा कि ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो। जवाब में गाँव के बूढ़ों ने कहा, इस पाइप की वजह से गांव की पुरानी और मौलिक चीजें चली गई हैं, अपनापन चला गया है। कुआं तो हमारा प्राण था, वहां हम मिलते थे, वहीं सुबह हमारी स्त्रियां मिलती थीं, सांझ हम वहां बैठकर गपशप करते थे। कुआं तो बर्बाद हो गया, वहां अब कोई जाने वाला नहीं रहा। अब तो हर एक घर में पानी पहुंच गया, तो वहां कोई आता ही नहीं। तो पूरी कम्युनिटी फीलिंग खत्म हो गई, यानी हमारा जो एक समूह था, हम जो एक साथ जीते थे, वो खत्म ही हो गया। एक एक आदमी अलग अलग हो गया, इसलिए हम ये जो पाइप है उसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नए और पुराने तरीके के जीवन से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। सुविधाएं जिस गति से बढ़ रही हैं, आदमी की जिंदगी उसी अनुपात में सिकुड़ती जा रही है। आदमी बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होता चला जा रहा है। सिर्फ अपना परिवार ही एकमात्र धुरी रह गई है। सामाजिक जीवन में पहले जैसी जीवंतता नहीं है। सालों पहले किसी सामाजिक आयोजन में, संयुक्त परिवार के आयोजन में, लोग आत्मीयता के साथ जुटते थे, पर आज ऐसे आयोजन सिर्फ औपचारिक हो गए हैं। समय की कमी बताकर निकट से निकट का आदमी अपनों से भाग रहा है, और बाद में सोचता है कि उतनी

0: तेजी से वह ऐसे आयोजनों से निकल तो आया है, पर क्या वास्तव में उसके पास समय की कमी थी? समय की कमी तो आज एक बहाने की तरह हो गई है। मेलजोल कम होने और अपनी बात ठीक से न कर पाने, अपना दर्द ठीक से न बता पाने के कारण एक अलग तरह की बेचैनी हर आदमी के पीछे घर कर रही है। अभिव्यक्ति की कमी से दर्द बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है और उसी अनुपात से संतुष्टि घट रही है। भगवान बुद्ध ने एक प्रसंग में कहा, तुम चलो, कितनी ही भूल करो चिंता नहीं है, चलें इतना ही काफी है। हम सोचें कि हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम संतुष्ट होना नहीं चाहते हैं। हम अपनी पहुंच से कहीं ज्यादा चीजें पाना चाहते हैं। अपने अच्छे विचार हमने खो दिए हैं। एक दूसरे से स्पर्धा ने हमारी संतुष्टि छीनी है। संतुष्टि तो तभी मिल सकती है कि जो हमारे पास है उसी का आनंद उठाएं। ये कठिन तो है, असंभव नहीं।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख था सुरेश तिवारी का। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इसमें डॉक्टर योगेश पटेल आपको ये जानकारी दे रहे हैं।
2: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि कीटनाशियों के छिड़काव में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि किसान भाइयों खरीफ की फसल चल रही है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी दवाइयों का स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो किसान भाइयों, जो सबसे मुख्य बात है वो ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सी दवा का छिड़काव कर रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम दवा स्प्रे कर रहे हैं, उससे सभी तरह के कीड़े या सभी तरह की जो बीमारियां हैं वो एक ही दवाई से नियंत्रित हो जाएंगी, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो कीड़े रहते हैं या जो खेती में नुकसान करने वाले जो जीव जंतु रहते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि कीड़े ही बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा होगा कि इल्लियाँ होती हैं, रस चूसने वाले कीड़े अलग रहते हैं, जो बोरर रहते हैं जो प्लांट के अंदर चले जाते हैं वो अलग रहते हैं, जीवाणुओं का हमला होता है, जो वायरस जैसे कि कोरोना वायरस था आप लोगों को पता है, इस तरह का वायरस के अटैक होते हैं वो अलग तरह का होता है, नोस्टॉक अलग तरह का होता है, फंजाई से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो फसलों में, तो उनमें अलग तरह का स्प्रे होता है। तो सबसे पहले तो जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली है, जैसे और एक और मैं मुख्य चीज़ छूट गई, वो है कि खरपतवार, खरपतवार मारने वाली दवाइयाँ अलग रहती हैं। तो सबसे जो पहली मुख्य बात किसान भाइयों को समझना चाहिए वो ये है कि कोई भी दवाई ऐसी नहीं होती है कि सभी जो परेशानियाँ जो फसलों में आती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आप एक दवा डाल दें और सबको नियंत्रित करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि क्या चीज़ों का प्रकोप उस पर हो रहा है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फसल का सघन निरीक्षण करें। सघन निरीक्षण से अर्थ ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो कीड़े रहते हैं, बीमारियां रहती हैं, वो फसल में छुपी हुई अवस्था में होती हैं, ऊपर आपको नहीं दिखाई देंगी, कि आप आसानी से खेत में से निकलें तो आपको ऊपर से दिखाई दे जाएंगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत इंटेंसिव उसकी जो स्काउटिंग है वो करें, या अपन बोल सकते हैं कि निरीक्षण बड़ा सघन करें। आप पत्तियों को उलट पलट के देखें, खेतों में नीचे बैठे हैं आप किसान भाई और देखें पत्तियों के नीचे, तने में नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और सब तरह से देखें, उसमें कहीं कीटों में अंडों का प्रकोप तो नहीं हो रहा है, किसी तरह से नहीं हो रहा है। तो ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखें आप लोग कि किस तरह की दवाई, और फिर जो भी उसमें समस्या है उसके अनुसार उसमें दवाई का स्प्रे करें। तो ये बात बड़ी मुख्य रूप से ध्यान रखें। दवाई डालते समय जो मुख्य बात ध्यान रखना चाहिए वो है डोज, या दवा की मात्रा बोलें आप, कितने क्षेत्र में कितनी दवाई डालनी है। तो डोज का सही ध्यान रखें किसान भाई। क्या है, कीट की संख्या पर दवाई की मात्रा निर्भर नहीं करती है। यदि किसी खेत में आपके 10,000 कीट हैं तो उतनी दवा डालनी पड़ेगी, और 10 कीट हैं तब भी उतनी दवा डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये डोज होती है और डोज फसल में घुलने के बाद कीड़ों पर असर डालती है। यदि आपने डोज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर ली तो वो आपकी फसल को तो नुकसान करती ही करती है, और दूसरा जो कीड़ों को मारने की उसकी क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाई, डोज जो रिकमेंडेड है, जो अनुशंसित है वैज्ञानिक प्रयोगों के फलस्वरूप, ये अनुशंसित मात्रा आपको बताई जाती है, तो वो अनुशंसित मात्रा ही डालें। उसे कभी भी अपने अनुसार या कीड़े के या किसी बीमारी के प्रकोप के अनुसार उसे कम ज़्यादा ना करें, जो अनुशंसित मात्रा है उसका ही उपयोग करें, उसी ही मात्रा डालें। तो ये डोज बहुत महत्वपूर्ण होती है। डोज एक तरह से और गलत हो जाती है कि जब कितनी दवाई की मात्रा कितने पानी में घोलनी है,

0: ये भी किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि आप भी समझते होंगे कि आपको मतलब 10 ml दवा आप 1 लीटर पानी में घुलनी है और 5 ml में घुलनी है, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि पानी की सही मात्रा का इस्तेमाल करें। पानी जितनी मात्रा अनुशंसित है उतनी मात्रा का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए किसान भाई इतना ही, नमस्कार।
1: कृषि चर्चा में योगेश पटेल आपको ये जानकारी दे रहे थे। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: हेमंत देवलेकर,
3: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से

यह आकाशवाणी भोपाल है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः सार्धनववादने आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के

0: दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और वेब OTT पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर में 7:20 पर आज नमस्कार भोपाल के आकर्षण हैं। विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की पहल और विज्ञान के लोकप्रियकरण की गतिविधियों पर मैपकॉस्ट के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास सिंधे से विशेष बातचीत। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ पर महुआ महोत्सव के आयोजन के उपलक्ष्य में जनजातीय संग्रहालय के क्यूरेटर श्री अशोक मिश्रा से बातचीत और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम नृत्यांगना एवं गुरु सुश्री श्वेता देवेंद्र से बातचीत की है हमारी प्रतिनिधि मेघा तिवारी ने।

8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। इसमें आप कुछ बातचीत और कुछ गीत सुनते हैं। 9:15 पर लोक संगीत में बीना ठाकुर और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। 9:30 विज्ञान लोक में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और अपशिष्ट प्रबंधन पर गौरव वैद्य की ये बातचीत आपसे सुन पाई जाएगी। 9:45 पर पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का एपिसोड 4 आपको सुनवाया जाएगा। 10:00 रोज की तरह जिले की चिट्ठी होगी। 10:05 पर फिल्म संगीत का विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम होगा गीत सागर। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में कादिर खान का राग तोड़ी में सारंगी वादन होगा। 11:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 संग्रहालय से कार्यक्रम में सुनिएगा जंग लगी तलवार का भाग 1।

दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगी। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 सुनिएगा आपकी फरमाइश।

हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:30 और रात्रि 8:35 पर। शाम 6:00 आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान, विशेषज्ञ डॉक्टर सी आर मेहता होंगे। सात बजकर 21 मिनट पर ग्राम सभा

आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आपको सुनवाया जाएगा। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाव आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति।

रात्रि 9:30 बजे साहित्य भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर 22,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक, 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रदेश में गृह विभाग ने 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए और मौसम विभाग ने राज्य के 52 जिलों में आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रमुख हिस्से राष्ट्र को समर्पित किए गए और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी हुआ। शाम को प्रधानमंत्री ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ साथ नमो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि दूध उत्पादन से लेकर इंडस्ट्री और माइनिंग तक हर क्षेत्र में सहकारिता का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रयास किया गया।
2: हम अपने किसानों का जो एक साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं।
0: प्रदेश में गृह विभाग ने कल 8 आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित कुल 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ और उनकी पत्नी अनु बेनीवाल दोनों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर जबलपुर भेजा गया है। वहीं नरसिंहगढ़ के एसडीओपी

0: मिनी शुक्ला ने शुक्ला को पदोन्नत कर भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। धार के पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली की शकूर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहां 300 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय पुनर्विकास कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ट्रेन सेवा सागर के विकास को नई गति देगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी आने की संभावना है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान से अब तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। पहली तारीख 6 जून निर्धारित थी। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कौशल विकास मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि जिस तरह सैनिक देश की भौतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह साइबर विशेषज्ञ डिजिटल सीमाओं के प्रहरी हैं। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजक बनने की अपील की है। प्रदेश में शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि ये कुनू में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। प्रदेश में मॉनसून से पहले ही प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के 7 खिलाड़ियों का कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में चयन हुआ है। इनमें संतोष सिंह, प्रिंस गोस्वामी और निहारिका सिंह सहित 5 कैनो स्प्रिंट और 2 पैरा कैनो खिलाड़ी शामिल हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पदक जीतकर लौटने की शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कल अल्प प्रवास पर बैतूल पहुंचे। सर्किट हाउस में कलेक्टर ने उनका स्वागत किया। खंडवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पन्ना जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत पूर्व मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने की। डिंडौरी में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण किया गया। झाबुआ कलेक्टर ने माही मुख्य बांध का निरीक्षण कर जल आवक और डैम संचालन व्यवस्था देखी। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में कल रोजगार मेले में 53 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, साथ ही 23.85 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मंडला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मंत्री संपतिया उइके ने उदय चौक के पास निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का निरीक्षण किया। गुना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर प्रस्तुत है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में।

ताज़ा तरीन खबरें, चुनिंदा फिल्मी गीत और विविध जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का एक नया अंक लेकर हाजिर हूँ मैं मेघा तिवारी। दोस्तों, खुशी का संबंध केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण से भी होता है। जब हम जीवन की छोटी उपलब्धियों और साधारण क्षणों का आनंद लेना सीख जाते हैं तब जीवन अधिक सुंदर और संतुलित महसूस होने लगता है। क्यों ना हर दिन कम से कम एक ऐसी छोटी सी बात अवश्य खोजें जो हमें मुस्कुराने का कारण दे, क्योंकि खुशियां कई बार बाहर से नहीं हमारे आसपास ही बिखरी रहती हैं, बस पहचानने की जरूरत है। जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए कभी सपने हमें पुकारते हैं, कभी उम्मीदें हमें नई दिशा देती हैं, कभी मन हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही सकारात्मक भावों के साथ अब समय है एक खूबसूरत गीत का जो हमें अपने मन को सुनने और जीवन के हर सफर को खुले दिल से जीने का संदेश देता है।

न्यूज़ ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है आपका मनपसंद नमस्कार भोपाल। वक्त मिलाइए हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:26 होने को हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बताते हैं। पहली खबर है देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को जिस क्षण का इंतजार था अब वो तय हो गया है। धर्म आस्था और सनातन संस्कृति के महापर्व सिंहस्थ 2028 का आयोजन उज्जैन में 27 मार्च से 27 मई 2028 तक होगा। लगभग 60 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं के क्षिप्र तट पर पहुँचने की अपेक्षा है। सिंहस्थ में 3 प्रमुख अमृत शाही स्नान होंगे जिनके लिए साधु संत और अखाड़ों की भव्य पेशवाई भी निकलेगी। तय कार्यक्रम के अनुसार सिंहस्थ का पहला अमृत स्थान 9 अप्रैल 2028, दूसरा 23 अप्रैल 2028 और तीसरा और अंतिम अमृत स्नान 8 मई 2028 को होगा। अखाड़ों के साधु संत क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। एक और खबर है भारतीय वायुसेना में उच्च स्तर पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC के पद पर कार्यरत एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2026 को अपना नया कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के अत्यंत अनुभवी फाइटर पायलट्स में गिने जाते हैं। दिसंबर 1986 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने लगभग 4 दशक लंबे सैन्य करियर में अनेक महत्वपूर्ण परिचालन प्रशिक्षण और रणनीतिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके पास 3,300 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव है और उन्होंने विभिन्न लड़ाकू विमानों का संचालन भी किया है। एक और खबर है स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर 9 जून को शाम 6:30 शहीद भवन में बिरसा मुंडा पर केंद्रित नाटक अबुआ दिशुम अबुआ राज का मंचन होगा। अपनी वीरता स्वाभिमान समर्पण और संकल्पबद्धता के कारण इतिहास में स्मरणीय रहे महानायक बिरसा मुंडा एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जहां भय नहीं विश्वास हो और लोग स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सकें। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहकर अंग्रेज शासकों को चैन से सांस नहीं लेने दी। नाटक में इन्हीं बातों को दिखाया जाएगा। और त्रिकर्षी संस्था द्वारा आयोजित रंगपिता बाल रंग समारोह के अंतर्गत बाल कलाकारों की प्रतिभा को मंच प्रदान करते हुए 2 नाटकों का प्रभावशाली मंचन किया जा रहा है जो कि 8 शाम होगा। ये कार्यक्रम 6:30 ख्याल ऑडिटोरियम विद्यानगर आयोजित होगा। ये थी कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार भोपाल सुन रहे हैं आप और अब एक और गीत आपकी नजर लीजिए सुनिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: दोस्तों, विज्ञान तब सार्थक बनता है जब वो प्रयोगशालाओं से निकलकर समाज तक पहुंचे। विज्ञान के इसी लोकप्रियकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर प्रस्तुत है मैपकॉस्ट के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास शिंदे से हमारी ये बातचीत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के हर प्रदेश में एक विभाग होता है जिसका नाम होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और उस विभाग के अंतर्गत हर स्टेट में एक स्टेट काउंसिल होती है। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट निर्धारित करती है, और इसका काम होता है पूरे प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार का। आम जन विज्ञान से कैसे जुड़ सकता है, आम जन में कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट हम विकसित कर सकते हैं, अद्यतन तकनीकियों को हम कैसे आम जन तक पहुंचा सकते हैं। हमारा एक बड़ा समुदाय जनजातीय समुदाय होता है, दूर दराज के अंचलों में लोग निवास करते हैं, वो एक बड़ा समुदाय होता है, उस समुदाय तक विज्ञान कैसे पहुँचे। तो हमारी बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हम इन सभी क्षेत्रों और इन सभी जनों के बीच में काम करते हैं।
1: जी, तो कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, अगर मध्य प्रदेश शासन की भी ऐसी कोई स्कीम्स के बारे में आप हमें जानकारी देना चाहें।
2: देखिए, वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए MPCST ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहली तो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लोकव्यापीकरण योजना। इसके माध्यम से हम शिक्षकों, छात्रों, किसानों और आम नागरिकों के बीच वैज्ञानिक चेतना के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं वर्ष भर बहुत सारे साइंटिफिक डेज आते हैं, जैसे हाल ही में पर्यावरण दिवस आने वाला है, अभी बायोडाइवर्सिटी डे गया हुआ है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को मनाते हैं।

0: तो इस प्रकार बहुत सारे साइंटिफिक डेज होते हैं। उसके साथ साथ में जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं और उन्होंने जो अपना अद्भुत कार्य किया है, उन कार्यों के बारे में और उन वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देने के लिए भी हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो इन साइंटिफिक डेज़ प्लस वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी ये हम विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं ताकि वो विज्ञान से परिचित हों। इसके अलावा हम लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराते हैं,
1: जैसे
0: साइंस के मॉडल्स को लेके हम लोग काफ़ी सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हैं ताकि बच्चे खुद करके देखें जो विज्ञान उन्होंने पढ़ा है या उसको जो पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने थ्योरी तो कर ली, जान ली, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वे जो

0: चाहते हैं ताकि वो विज्ञान से परिचित हो। इसके अलावा हम लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराते हैं,
1: जैसे
0: साइंस के मॉडल्स को लेके हम लोग काफ़ी सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हैं ताकि बच्चे खुद करके देखें जो विज्ञान उन्होंने पढ़ा है या उसको जो पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने थ्योरी तो कर ली, जान ली, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वे जो होता है वो हम बताते हैं। इसके लिए हमारे काउंसिल में यहाँ पे भोपाल में ही हमने IIT गांधीनगर के साथ में एक सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग ये एस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो खुद हैंड्स ऑन करते हैं, वर्कशॉप्स में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ स्कीम है। एक हमारी स्कीम है विज्ञान मंथन यात्रा, और ये बहुत ही अद्भुत योजना है, और 2007 से हम इसको चला रहे हैं, और इसमें जो प्रदेश के मेरिटोरियस बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और लगभग 600 बच्चे देश के विभिन्न शहरों में, जैसे जो बड़े शहर हैं देहरादून, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, जहाँ पे कि वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों की लैब्स, मतलब हम कह सकते हैं CSIR की लैब्स और भी दूसरी जो लैब्स है वो बहुत सहजता से उपलब्ध हैं। तो ये बच्चे वहाँ पे विज़िट करते हैं, चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं कि वैज्ञानिक किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के शोधों में वो इन्वॉल्व हैं, किस प्रकार की शोध होती है। अभी हाल ही में लगभग 500 बच्चे इसरो गए थे, इसरो में वो बेंगलोर गए, बेंगलोर का जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ गए, चेन्नई गए, और फिर फाइनली जहाँ से हम हमारे यहाँ के उपग्रह लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा,
1: श्रीहरिकोटा
0: श्रीहरिकोटा बच्चे गए, उन्होंने लॉन्चिंग देखी, उन्होंने चंद्रयान-3 के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चंद्रयान-3 के लिए काम किया था उन वैज्ञानिकों से मिले। तो इस प्रकार ये बहुत ऐसे क्षण होते हैं जब बच्चा तय करता है कि नहीं, मुझे विज्ञान में ही अपना करियर चुनना है और विज्ञान के क्षेत्र में ही आगे जाना है।
1: इन
0: तो इस
1: बच्चों
0: प्रकार का
1: का,
0: एक्सपोज़र हम देते हैं।
1: जी, बिल्कुल, इन बच्चों का किस तरह से चुनाव किया जाता है?
0: इन बच्चों के चयन के लिए हम विज्ञप्ति जारी करते हैं और सभी अच्छे न्यूज़पेपर में इसकी सूचना जाती है, हमारी वेबसाइट में भी इसकी जानकारी उपलब्ध रहती है। ये बच्चे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरते हैं और मेरिट के बेस पे इनका सिलेक्शन होता है।
1: जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता अलर्ट रहें, जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें।
0: इसके अलावा हम लोग बहुत सारी प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे विज्ञान मेले हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आपने सुना होगा भोपाल विज्ञान मेला। तो भोपाल विज्ञान मेला अपने आप में एक बड़ा वो होता है जिसमें कि कुछ मॉडल्स इसरो के भी आते हैं, DRDO के भी मॉडल्स आते हैं, बच्चे जाते हैं, बहुत
1: जी
0: सारे वैज्ञानिक आते हैं। इवन
1: जी
0: हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम वैज्ञानिक छात्र संवाद भी कराते हैं, तो जब बच्चे इन वैज्ञानिकों से मिलते हैं तो उनके अंदर अलग ही रोमांच होता है, उनके अंदर बहुत सारे जो प्रश्न उमड़ते रहते हैं वो बहुत आसानी से उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपने विज्ञान के ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी, बहुत शुक्रिया सर, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें भी अगर कोई सहायता आपको चाहिए तो बिल्कुल आ सकती है। हमारे एक और स्कीम है SSED, हम उसको कहते हैं साइंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान, जिसके माध्यम से हम आम जन और कमज़ोर वर्ग जो कि तकनीकी से दूर रहता है तो हम उनको तकनीकी प्रोवाइड करके कैसे उनके आय के स्रोत बढ़ा सके, उनका श्रम कम कर सके, उनके श्रम में लगने वाला समय कम करके उनके जीवन को बहुत ही सुलभ बनाने के लिए प्रयास
1: जी
0: करते हैं
1: जी
0: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास है, बिल्कुल आप लोग आइए और मिलिए और जानिए, और यही मेरा एक संदेश होगा।
1: जो कि साइंस वैसे भी हमारी लाइफ को आसान बनाती है, जाने अनजाने हम कुछ चीज़ों के और प्रोविजंस के बारे में वाकिफ नहीं होते हैं, जो कि आपने हमारे साथ साझा किए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, भोपाल में अभी हमारे साथ थे मैपकॉस्ट के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास शिंदे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का आज स्थापना दिवस है और स्थापना के 13वें वर्ष के साथ महुआ महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि जनजातीय जीवन में कलाओं के रंग के अवसर पर केंद्रित है। प्रस्तुत है जनजातीय संग्रहालय के क्यूरेटर श्री अशोक मिश्र से हमारी ये बातचीत।
3: नमस्कार, हमारे लिए ये बहुत सुखद है कि हम संग्रहालय के 13 वर्ष स्थापना के हो चुके हैं और उस स्थापना का वर्षगांठ समारोह आज मना रहे हैं। दूसरा यह कि जनजातीय जीवन, संस्कृति और उसके सौंदर्य बोध को पूरी गरिमा के साथ अभिव्यक्त करते इस संग्रहालय की यात्रा 13 वर्षों को आज पूर्ण करती है और पूर्णता की इस अवधि में उसका उत्सविक होना हमारे लिए और भी रसमय बन जाता है। ख़ास तौर से हम इन 6 से 10 जून तक वर्षगांठ समारोह को महुआ महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। महुआ महोत्सव चूँकि जनजातीय जीवन के केंद्र में है, इसलिए जनजातियों की जब उत्सविकता की बात हम करें तो उसमें महुआ की केंद्रीयता होना बहुत ज़रूरी हो बन जाता है। इस कारण महुआ महोत्सव हमारे वर्षगांठ समारोह के आगाज की तरह है। हम इन 6 से 10 जून की गतिविधियों में ख़ास तौर से गोंड जनजातीय परंपरा का एक आख्यान है, जिस राजा लोहगुंडी, जो गोंडवानी का एक राजा है, उसको लेकर एक कोरियोग्राफिक प्रस्तुति पहली बार तैयार कराई गई है, जिसकी प्रस्तुति हम 6 तारीख यानी आज ही सायं 6:30 बजे आहूत करेंगे।

0: 7 तारीख को हम बुंदेलखंड के महाबली छत्रसाल, जिन्हें बुंदेल केसरी भी कहा जाता है, उनके जीवन और अवदान को ध्यान में रखते हुए एक कोरियोग्राफिक प्रस्तुति वह भी तैयार कराई गई है, जिसकी प्रस्तुति हम 7 तारीख को करेंगे। 8 तारीख को हमारे जीवनदायिनी नदी नर्मदा के साथ छिप्रा का जो आध्यात्मिक महत्व है, नर्मदा को लेकर बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हम ही लोगों ने आयोजित की हैं। इस बार खास तौर से छिप्रा के प्राकट्य को लेकर एक नृत्य नाट्य तैयार किया गया है, जो हम 8 तारीख को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा प्रति दिवस मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अन्य 14 राज्यों के जनजाति लोक नृत्यों, गायन, वादन, इनकी प्रस्तुतियां प्रति दिवस दोपहर 2 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक होंगी। हम इसके अलावा जनजातियों के द्वारा अनुष्ठानिक और अलंकरण के उद्देश्य से रचे जाने वाले शिल्पों का शिल्प मेला तथा देशज व्यंजन, खास तौर से जनजातीय जीवन के उपयोगी देशज व्यंजनों को हम इस अवसर पर जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे, कि वह यहाँ उन जनजातीय व्यंजनों का स्वाद ले सकें और जनजातियों के द्वारा रचे जाने वाले शिल्पों को क्रय कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो इस तरह से 6 से 10 जून की उत्सविकता जनजातीय संग्रहालय ने रची है। कुछ बच्चों के लिहाज से भी गतिविधियां आहूत की गई हैं कि कठपुतली से अलग अलग जनजातीय आख्यानों को अभिव्यक्त किया जाएगा। साथ ही यहां पर हम कठपुतली को सिखाने का काम भी करेंगे कि जो बच्चे कठपुतली को बनाना सीखना चाहते हों, तो कुछ हमने ऐसे कलाकारों को भी जोड़ा है जो कठपुतली बनाना सिखाएंगे, तो उसमें भी बच्चे जुड़ सकेंगे। तो इस लिहाज से समग्रतः जनजातीय संग्रहालय का यह 13वां वर्षगांठ समारोह जनजातीय जीवन और उसकी सौंदर्य बोध की दृष्टि को समग्रता में अभिव्यक्त करेगा।
1: आपने अभी मेंशन किया कि 14 राज्यों से जो है कलाकारों को इनवाइट किया गया है प्रस्तुति के लिए। हम आपसे एज अ सम ऑफ मैसेज ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो है उनको ट्राइब्स रिजर्व करते हैं, क्यों ज़रूरी है मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी ट्राइब्स के बारे में जानना, और कितना इम्पोर्टेंट है आपके नज़रिए से कि ट्राइब्स भी अपनी इंटीग्रिटी कल्चर को बनाए रखें, और साथ ही साथ ये जो आजकल एक फिज़ा चली है मॉडर्नाइजेशन की, तो इसका असर उन पर कहीं नेगेटिवली तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस आपका स्वयं का रहा है तो आपका विजन अलग है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है?
0: एक्चुअली सबसे पहले तो ये जो राजनैतिक शब्दावलियाँ हैं जिसमें ट्राइब्स अथवा नागरजन यानी अर्बन लोग, यह विभाजन संस्कृति की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यह अंततः हम सभी लोग इस भूमि के प्रिमिटिव लोग हैं, आदिवासी हैं, और जीवन की ज़रूरतों की यात्रा करते हुए हम नगरों के निर्माण तक की यात्रा करते हैं, हैं तो हम वही। आप इसको इस तरह से भी देख लें कि जैसे जनजातीय जीवन प्रकृति उपासना में है, लोक जीवन जो है वो प्रतीकों और प्रकृति में है, जो शहरी जीवन है वह प्रतिमा, प्रतीक और प्रकृति तीनों में है। तो यानी कि यह अंतर, ये जो यात्रा है वह अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। इसको भाषा में अलग से व्यक्त करना मैं उचित नहीं मानता, चूँकि अंततः वो सांस्कृतिक तत्व हमारे पास आदिम भी हैं और नगरीय भी हैं। ऐसे ही जनजातियों के बीच भी वो सारी चैतन्य, नगरीय जीवन का की चेतना भी है, अपने क्षेत्र की भी चेतना है और दीगर व्यवहार की भी चेतना है। तो इस तरह से इसको विभाजित करके देखने के बजाय समग्रता में देखना चाहिए, और समग्रता में एक क्षेत्रीयता स्वभाव के अनुसार अपने सांस्कृतिक ताने बाने के रूप को अलंकृत करने की दिशा में काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
1: बहुत बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही सुंदरता से आपने हमको ये समझाया सर, और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता भी इस बात से ज़रूर कनेक्ट हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त निकाला और इस आयोजन के बारे में बताया, और हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे श्रोता ज़रूर शामिल होंगे इस आयोजन में।
0: मैं चाहूँगा कि वह अपने ही पुरखों की संस्कृति के इस उत्सव में हिस्सेदार बने और अपनी ही संस्कृति से अपना एक परिचय बनाएं, जो किन्हीं कारणों से जिनका विस्मरण कर चुके हैं।

0: तो एक तरह से अपने ही पुरखों के नर्तन को, अपने ही पुरखों की गायकी को, उनकी समृद्ध सांगीतिक रचनाओं को अनुभव करने के लिए वे 6 से 10 जून इस जनजातीय संग्रहालय के परिसर में जरूर आएँ, हम स्वागत करेंगे।
1: बहुत शुक्रिया।
2: नमस्कार। भोपाल में अभी हमारे साथ थे जनजातीय संग्रहालय भोपाल में क्यूरेटर श्री अशोक मिश्र। ये हमें महुआ महोत्सव और जनजातीय संग्रहालय के स्थापना के बारे में जानकारी दे रहे थे।

0: नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप। और अब बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति है, साधना और संस्कृति का सशक्त माध्यम है। इस विषय पर हमने बातचीत की सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना एवं गुरु श्वेता देवेंद्र से।
1: धन्यवाद, नमस्कार। मैं नृत्य एकेडमी के नाम से एक एकेडमी रन करती हूँ जिसको 20 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। भरतनाट्यम तो मेरा पैशन है ही, उसके लिए मैं क्लासेस लेती हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब 6 या 7 वर्ष की, तब इतनी छोटी उम्र में तो पता नहीं होता है कि क्लासिकल डांस क्या होता है, अलग अलग तरह के क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या कल्चर है। जो मेरे मम्मी पापा हैं उनको बहुत इंटरेस्ट था, और वो कभी, मेरी मम्मी कभी नहीं कर पाई, तो उनका हमेशा से एक सपना था कि मैं मेरी बेटी को सिखाऊंगी। और लकीली क्या था कि मेरे जो गुरु थे लेट शंकर होम्बल जी, उनकी जो क्लासेस होती थी वो हमारे घर के बहुत पास होती थी, तो मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे वहाँ पे एनरोल करवाया। और इतनी छोटी उम्र में तो मुझे पता नहीं था कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बनता गया और इतना बनता गया कि आज मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और डेफिनेटली शंकर होम्बल जी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया इस फील्ड में। उसके बाद करीबन 2015 में मैंने पद्मश्री और SNA अवार्डी गीता चंद्रन जी का सानिध्य प्राप्त किया, और अभी भी वही मेरी गुरु हैं जिनसे मुझे कंटिन्यूस गाइडेंस मिलता रहता है।
0: जी जी जी

0: और आप अगर कुछ ऐसे विशेष प्लेटफॉर्म्स पर प्रस्तुति दे चुकी हैं तो प्लीज़ उनका भी जिक्र कीजिए।
1: मैंने बहुत से नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्रामों में अपनी प्रस्तुति दी है। अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो हमने अफ्रीका में हम लोग 2016 में हम लोग गए थे, जहाँ की अलग अलग 5 सिटीज़ में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, और वो फेस्टिवल था फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट घाना। और इसी के अंतर्गत हम लोग ग्लासगो भी गए थे, यूके ग्लासगो में भी मैंने प्रस्तुति दी है। और अगर हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करें तो खजुराहो डांस फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुकी हूँ, हरिदास सम्मान समारोह जो कि मुंबई में होता है उसमें कर चुकी हूँ, और जो हमारे स्टेट के प्रोग्राम्स होते हैं वो तो बहुत सारे मैं कर चुकी हूँ, भारत भवन के प्रोग्राम्स, अलाउद्दीन खां एकेडमी के प्रोग्राम्स, संस्कृति विभाग के कार्यक्रम, और इसी के साथ ही अभी G20 में भी मैंने पूरा एक डांस ड्रामा अमृतस्य मध्य प्रदेश करके कोरियोग्राफ किया था, जो कि डेलीगेट्स के लिए इंदौर में प्रस्तुति उसकी दी गई थी। साथ ही अभी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो पिछले साल हुआ था उसका भी पूरी कोरियोग्राफी मैंने की थी।
0: जी, हमें बहुत खुशी और नाज है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी रखना उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि नृत्य सीखना चाहते हैं, और क्या सही उम्र है अगर हमारे श्रोता चाहें कि उनके बच्चे या बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी सीखना चाहें, तो व्हाट इज़ द करेक्ट एज टू अप्रोच अ गुरु?
1: किसी भी शास्त्रीय नृत्य को सीखने की सही एज, मतलब समझ बहुत ज़रूरी है। 7 ईयर्स अगर आप हैं तो 7 ईयर्स इज़ द राइट एज। उससे छोटे बच्चे इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो 7 ईयर्स इज़ द राइट एज फॉर दिस। और इसको क्यों हमें सीखना चाहिए, देखिए हम हमारा जो कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, दैट इज़ वेरी डीपली रूटेड। और हम कहाँ से आते हैं, हमारे हमारे जो साहित्य है, जो कल्चर है, वो हमें पता होना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा साधन है किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्लासिकल डांस ही, कोई भी आर्ट फॉर्म जो हमारे ट्रेडिशन को बिलोंग करता है, उससे जुड़े रहना, मतलब उससे जुड़े रहने का मतलब है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी रूट से जुड़े हैं। तो और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। तो ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें जो डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, वो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना, जो कि हमें आगे भी बहुत मदद करता है। जो मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं अपनी चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन वे में रखती हूँ, और जैसा मुझे गुरु ने सिखाया है मैं उसको उस लेगेसी को आगे बढ़ा रही हूँ। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: ये थी सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना एवं गुरु सुश्री श्वेता देवेंद्र। अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जो कि अत्यंत लोकप्रिय शास्त्रीय शैली का गीत है, जिसे आदरणीय पंडित बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था।

और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल सुबह 7:20 पर ज़रूर सुनिए कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। हम हाजिर होंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़

0: निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया।

0: है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9 लाख 42

0: narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: यह आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव ओटीटी पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं? नई सुबह, नई सवेरा और नई उमंग के साथ आज का दिन आपका शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, भगवान ने हमारे उंगली के बीच में जगह क्यों दी है, कभी हमने सोचा है क्या? नहीं ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो हमारा हाथ पकड़कर उस जगह को पूरा कर दे और पास आकर धीरे से कहे, सुनो, घबराना मत, किसी भी परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो कौन है? वो हमारा ईश्वर है।

दोस्तों, जब जीवन बिखरता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि ज़मीन भी हमारे पैरों से खिसक गई है। पर दोस्तों, सच्चाई यह है कि धरती कभी साथ नहीं छोड़ती। हमारा संतुलन डगमगाता है। हमारे भीतर एक मौन शक्ति है जो हर गिरावट के बाद उठने में हमारी मदद करती है। यह शक्ति उसी समय जागती है जब हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि अभी आप टूटे हैं और फिर खुद को गढ़ सकते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता तो असल में हमारी शिक्षक है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा साधना के साथ। दोस्तों, तो अंततः केवल तीन बातें मायने रखती हैं। तुमने कितना प्रेम किया, कितनी कोमलता से जीवन जिया और कितनी गरिमा से उन चीज़ों को छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए नहीं थीं।

दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में सारी अनुकूलताएं होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं और भविष्य की इतनी चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते हमारे रातों की नींद ही उड़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि हो सकता है जिस भविष्य की चिंता हम कर रहे हैं और जो हमें दिन रात चिंतित करती है, शायद उसमें हम रहे ही ना।

दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्थिति तक जब नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें दूसरे की गलती या दूसरे के अनुभव और दूसरे की जो भी बातें हों उनका लाभ हमें मिल नहीं पाता। जिस तरह की जब तक बेटा खुद पिता नहीं बनता, तब तक वह पिता के फैसलों को हमेशा गलत समझता है, अनुभव और जिम्मेदारी की कमी अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। समय और परवरिश के साथ ही समझ और कद बढ़ता है, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता के निर्णयों में छुपी सीख को अपनाना हमारी बुद्धिमत्ता होगी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो, इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया गया। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी हुई है। आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

संदेह के साथ हम शायद जीत नहीं पाएंगे। अपने जीवन के वास्तुकार हमें खुद ही बनना होगा और अपनी उत्कृष्ट कृति बनाए और किंवदंती बनने का प्रयास करना होगा।

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुरमई सवेरा का शेष भाग। दोस्तों, खुद पर विश्वास के साथ यदि हम शायद ही कभी हारेंगे, खुद पर

दोस्तों, जीवन में थोड़ा सख्त होना भी ज़रूरी है, वरना लोग हमारे अधिकार, चरित्र और आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद देंगे।

दोस्तों, ये जीवन है, यहाँ सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिल सकती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर रिश्ते पैसे सेहत सभी है तो जीवन कम लगता है।

इस गाने के साथ ही सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। साधना जैन को नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अगली बार नए विषयों और नए गानों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संकेत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बीना ठाकुर और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिए सुरोहर।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे बीना ठाकुर और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान लोक।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम आपके बीच हैं वो है ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और अपशिष्ट प्रबंधन। आजकल चर्चा में है ग्रीन तकनीक हर जगह, और जब आवासों के निर्माण की बात आती है तो उसमें भी ग्रीन तकनीक का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। साथ ही बढ़ती आबादी के साथ अपशिष्ट का प्रबंधन भी जानना जरूरी है, और इस विषय पर जानकारी लेने हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है गौरव वैद्य जी को। गौरव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम विज्ञान लोक में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: बातचीत की शुरुआत करें हम और जाने सबसे पहले तो इस बात को कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और क्या आशय है इसका।
1: धन्यवाद मुझे फिर से आप लोगों ने इनवाइट किया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की या परिकल्पना की, तो हमेशा से ये देखा गया है कि बिल्डिंग्स इट्सेल्फ, मैंने बिल्डिंग अपने आप में ही ऊर्जा का एक काफ़ी मात्रा में उपभोग करती आई हैं हमेशा से।
0: जी,
1: अगर हम विश्व स्तर पर ग्लोबल स्केल पर भी देखते हैं तो लगभग लगभग 30% ऊर्जा बिल्डिंग के निर्माण से लेके उसके रखरखाव, उसके परिचालन, ठीक है, उसी में ही उपयोग कर ली जाती है। तो हमेशा से जब ये देखा गया है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा जो उपयोग है, उपभोग है, बिल्डिंगें कर लेती हैं, तो 1960 से 70 के दशक के बीच में विश्व स्तर पर लोगों ने सोचना शुरू किया कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए कि भाई जो ऊर्जा का इतना सारा हम खर्चा करते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, उसको नियंत्रित करने का, सीमित करने का कोई तरीका हो सकता है क्या। समय के साथ जब लोग उसके बारे में सोचने लगे, 1962 में एक किताब प्रकाशित हुई थी।
0: हाँ हाँ।
1: उसका टाइटल था साइलेंट स्प्रिंग्स, जिसके लेखक थे रशेल कार्सन। यूएसए में ये किताब लिखी गई थी और पहली बार इसमें ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के ऊपर बात की गई थी कि बिल्डिंग्स को कैसे ग्रीन बनाया जाए या बिल्डिंग्स को किस तरीके से ग्रीन तरीके से उपयोग किया जाए। यहाँ पे ग्रीन शब्द का उल्लेख था ऊर्जा संरक्षण के लिए
0: जी,
1: और वहाँ से पहली बार इस शब्द का उद्भव हुआ। और समय के साथ चलते चलते फिर वो कि कैसे लोगों के बीच में उसकी जागरूकता आई, लोगों ने उसको समझा, लोगों ने समझा तो लोगों के समझने के बाद इंडस्ट्री जो थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माने इस पूरी की पूरी मकान बनाने वाले, बिल्डिंग्स बनाने वाले, बिल्डिंग्स को सर्विसेज देने वाले, बिल्डिंग्स को उपयोग करने वाले लोग, ठीक है, तो तमाम लोगों को उसके बारे में समझ आई और धीरे धीरे लोगों ने इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को स्वीकार किया।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट एक कॉमन कंसेप्ट के रूप में लोगों के बीच में आ गया।
0: जी,
1: मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में जो एक्सपेक्टेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहली बात वाटर एफिशिएंसी मिलनी चाहिए, माने सीमित मात्रा में पानी का उपयोग हो, ठीक है, जिससे पानी का अपव्यय कम से कम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी ऊर्जा का कम से कम उपयोग हो और ऊर्जा संरक्षण मिले। तीसरी बात नेचुरल रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जैसे कि सूर्य प्रकाश को
0: जी,
1: या फिर ताजी हवा को इतना उपयोग करना है कि आपको सूर्य के प्रकाश के लिए या प्रकाश व्यवस्था के लिए और हवा के लिए आपको एनर्जी साधनों के ऊपर आश्रित रहना ना पड़े।
0: जी,
1: फिर उसके बाद यह है कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज कर सकते हैं जिससे हैवी मैन्युफैक्चरिंग को कम किया जाए, और जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण और तमाम तरीके के प्रदूषण है जो इंडस्ट्री से होते हैं, वो भी कुछ हद तक कम होंगे। माने ये परकोलेशन ऑफ द आइडिया उस लेवल तक जाता है सर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी और सुगठित प्लानिंग है। हम आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग के मानक या स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे परखा जाता है कि ये एक ग्रीन बिल्डिंग होने जा रही है।
1: तो इसमें बेसिकली अगर मानक की बात करें या इसको एवेल्युएट करने की बात करें, तो मुख्य मुद्दा यह है कि इन्वायरमेंटली साउंड अप्रोच को अडॉप्ट करना रहता है, जिसमें बिल्डिंग की लाइफ साइकिल पूरी की पूरी, माने बिल्डिंग का प्लानिंग फेज, प्लानिंग के बाद उसका डिजाइनिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, डिमोलिशन, जितने भी स्टेजेस हैं, सारी स्टेजेस के ऊपर पूरी की पूरी नज़र रखी जाती है, और उन सारी की सारी स्टेजेस के अंदर किस तरीके से ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हेल्थी लिविंग स्पेस और बेटर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। भारत में मुख्य तौर पर तीन ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स हैं। पहला कहलाता है गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृह
0: जी,
1: जो गृह सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने

0: टेरी मीन्स द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के सहयोग से 2007 में बनाया था सर, और इसमें टोटल 34 क्राइटेरियाज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बिल्डिंग की प्लानिंग से लेकर डिमोलिशन तक के, तो
1: जी
0: उसमें तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं और 34 क्राइटेरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करके रेटिंग किया जाता है।
1: अच्छा
0: दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया या रेटिंग सिस्टम है वो है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये जो रेटिंग व्यवस्था है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII ने 2001 में हैदराबाद शहर में प्रस्तावित किया था, जो कि अमेरिका की लीड्स सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया जो जनरल बिल्डिंग स्टैंडर्ड काउंसिल द्वारा दिया गया था, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, उससे प्रभावित है।
1: जी
0: और इस

0: ये जो रेटिंग व्यवस्था है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII ने 2001 में हैदराबाद शहर में प्रस्तावित किया था, जो कि अमेरिका की लीड्स सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया जो जनरल बिल्डिंग स्टैंडर्ड काउंसिल द्वारा दिया गया था, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, उससे प्रभावित है
1: जी
0: और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही इस पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन को दिया जाता है, जो कि इवन US की क्राइटेरियाज के हिसाब से अनुमोदित है।
1: अच्छा
0: फिर तीसरा हमारा जो आता है क्राइटेरिया, यह आपका कहलाता है BEE, ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी का।
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, उन्होंने ये 2009 में जो एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड के अपडेटेड वर्जन के साथ नए दिशा निर्देशों को देखते हुए 5-स्टार रेटिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया था
1: जी
0: और उसके बेसिस पे पूरा रेटिंग देते हैं। मुख्य मुद्दा यही है इसमें कि ऊर्जा एवं पानी का संरक्षण, कचरा एवं प्रदूषण का प्रबंधन, निर्माण कार्यों एवं निर्माण योजना के लिए नवीन एवं कम प्रदूषण करने वाले मटेरियल का प्रयोग तथा बेहतर इन्वायरमेंटल और अच्छी सेहत वाले विषयों को प्रमुखता दी जाती है।
1: बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि जब हम किसी बिल्डिंग की या भवन की रचना करते हैं तो उसकी डिज़ाइन या मटेरियल सिलेक्शन में या उसमें किस तरह से हम एक इनोवेशन या नवीकरण ला सकते हैं या उसका ध्यान रखते हैं।
0: अगर देखा जाए तो प्लानिंग स्तर से ही इसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाते हैं। बिल्डिंग के सभी पहलुओं के ऊपर विचार किया जाता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है तो कृत्रिम लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े।
1: जी
0: सभी जितने भी हमारे लिविंग स्पेसेस हैं, माने रूम्स कह लें हम, वहाँ पर एयर सर्कुलेशन, हवा का प्रवाह इतना बेहतर हो कि किसी भी परिस्थिति में आपको जहाँ हवा का प्रवाह बेहतर मिलना शुरू होगा, वहाँ पर आपको जो कृत्रिम हवा के इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने की ज़रूरत कम हो जाएगी या उसकी इफ़िशियंसी को कम करके चला सकेंगे आप,
1: बिल्कुल
0: तो वो चीज़ें। साथ ही साथ फिर दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, बरामदे कैसे हों, सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को कैसे प्रयोग करें। फॉर एग्जांपल हमारे संस्थान में भी पानी को गर्म करने के लिए हम लोग सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं, सोलर पैनल लगा के पार्किंग में हम लाइट जलाते हैं। तो कई सारे छोटे छोटे प्रयोग हमारे संस्थान में हम लोगों ने खुद शुरू किए हैं, भोपाल के
1: जी
0: कई सारे गवर्नमेंट संस्थाओं में भी वो प्रयोग शुरू किए गए हैं। जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें हम, ग्रीन बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल ब्रिक्स नाम से ब्रिक्स आ रहे हैं, जो इस तरीके की ब्रिक्स होती हैं कि वो मॉइस्चर को इस तरीके से मैनेज करती हैं कि ठंड में थोड़ा सा गर्माहट, गर्मी में थोड़ा ठंडक का माने आपको अनुभव हो। जो सेरामिक टाइल्स वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं, तो मैग्नीशियम क्रोमाइट का और टाइटेनियम ऑक्साइड का एक MgCr2O4 एंड TiO2 सेरामिक टाइल्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं। ये पोरस टाइल्स हैं,
1: हाँ
0: पोरस
1: हाँ
0: स्ट्रक्चर्ड टाइल्स हैं। इनका भी यही है कि ये कम से कम प्रदूषित करते हैं और टेम्परेचर, थर्मल इफ़िशियंसी इनकी बहुत अच्छी है।
1: अच्छा
0: साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक नया माने कंसेप्ट है इसमें, अर्थ टनल एयर कूलिंग सिस्टम, कि आपके कंक्रीट के या आपके सीमेंट के, आपके अलग अलग पाइप के नेटवर्क 3-4 मीटर आपके फ्लोर लेवल से नीचे और फिर उसके बाद अलग अलग लेयर पे अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर बना के
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि AC का जो आपका बिल है वो
1: जी
0: मिनिमम से मिनिमम रहे, क्योंकि ठंडा पानी जो प्रवाहित होता है वो टेम्परेचर को वैसे ही कम कर देता है रूम के, तो इस
1: बिल्कुल
0: कारण से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन ये है, ये बिल्डिंग स्केल के ऊपर ज़्यादा सक्सेसफुल है, हाउस होल्ड लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी इसको और बेहतर टेक्नोलॉजीज के साथ विकसित करने की और ज़रूरत है।
1: जी
0: एक लास्ट चीज़ मैं आपके साथ जो इसमें थोड़ा और माने शेयर करना चाहूँगा, एक 2010 में कंसेप्ट आया है नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग।
1: जी
0: नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग का मतलब यह है कि एनर्जी को ऑलमोस्ट ऑप्टिमम लेवल तक ऐसा कंज्यूम करें कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसी से सब कुछ ऑपरेट हो, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए।
1: हाँ
0: तो ये हमारा आगे का भविष्य है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे।
1: जी जी
0: अगर भोपाल के स्तर पर मैं देखूं तो जितने भी नए संस्थान बन रहे हैं उनमें बनने वाले नए बिल्डिंग्स में ये सारे के सारे एस्पेक्ट के ऊपर प्रयत्न किया जा रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि इस स्तर पर प्रयत्न होता है तो आगे वाले समय में काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हो पाएंगे।
1: जी अब एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो कचरे और अपशिष्ट का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो इसमें क्या कुछ हो रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और हमारे शहर भोपाल में?
0: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत कुछ हो रहा है। कचरा का जनरेशन माने आपके जो जहाँ से कचरा निकलता है, चाहे हमारे घर हों, दुकानें हों, संस्थान हों,

0: इंडस्ट्री हो, तो सोर्स सेग्रीगेशन शुरू हो चुका है.
1: जी
0: ठीक है, गीला कचरा सूखा कचरा हम लोग सुनते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट, उसके बाद मेडिकल वेस्ट या आपका ई वेस्ट, सबको अलग अलग लेवल पे एकत्रित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं. कुछ हद तक उसमें हमें कामयाबी मिल भी रही है. फिर उसके बाद ये सेग्रीगेशन होने के बाद ट्रांसफ़र करते समय भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो अलग अलग ही जाएं,
1: जी
0: ताकि उनका रिसाइकल या रीयूज़ के लिए कहीं कोई उपयोग संभव हो सके और ट्रीटमेंट करते समय उसमें कुछ आसानी मिले. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अगर हम बात करें, तो नेशनल और स्टेट और लोकल माने
1: जी
0: शहरी स्तर पर,
1: हाँ हाँ
0: हर स्तर पर बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016,
1: जी
0: ठीक है, प्रकाशित हो चुके हैं.
1: हाँ हाँ
0: कई सालों से ये हम पुराने जो रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारी जो तकनीकी संस्थाएं हैं उन्होंने नए रूल बनाए हैं जो ज़्यादा प्रासंगिक हैं आज की ज़रूरतों को देखते हुए. और उन सारे रूल्स के अंदर किस तरीके से जहाँ पर कचरा जनरेट हो रहा है, जहाँ कचरा आ रहा है, वहीं से, जैसे घरों से हमारे या दुकानों से, संस्थाओं से, इंडस्ट्री से, वहीं पे उसको कैसे सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेट करके किस तरीके से उसको इकट्ठा करके हम रिसाइकलिंग रीयूज़ के लिए हम उसको भेज सकते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके उसमें से कुछ डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से उसको साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए भेजा जा सकता है. अगर हम बात करें भोपाल के परिप्रेक्ष्य में, तो भोपाल में सालों से भानपुर खंती के ऊपर सिर्फ डंपिंग हुआ करता था, और उस डंपिंग के कारण वायु प्रदूषण भी हुआ.
1: जी
0: वहाँ की ज़मीन का ग्राउंड लेवल है, उसके अंदर सॉइल का कंटेमिनेशन हुआ,
1: जी
0: उसके साथ ही साथ आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका कंटेमिनेशन हुआ, तो हर एक तरीके से वहाँ पे प्रदूषण फैला. ठीक है, तो जैसे आदमपुर छावनी में साइंटिफिक लैंडफिल साइट प्रपोज किया गया है,
1: जी
0: और ये साइंटिफिक लैंडफिल साइट के अंदर जो लैंडफिलिंग होगा वो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक होगा, जो कम से कम प्रदूषण करेगा और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कचरे को डिस्पोज करने का कैपेसिटी रखेगा.
1: अच्छा, तो वैसे ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है, इसमें किस तरह की नई तकनीक और प्रयत्न आजकल आए हैं सामने?
0: अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर बहुत सारे नए इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं. अभी अगर देखा जाए तो आपका चाहे सेग्रीगेशन, स्टोरेज, रिसाइकल और रीयूज़ के आइडिया को ध्यान में रख के एक सोर्स रिडक्शन अप्रोच अडॉप्ट की गई है. सोर्स रिडक्शन अप्रोच का मतलब ये है कि सोर्स के ऊपर आपका जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है उसको मिनिमाइज़ कैसे करें.
1: जी
0: ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमशन लेवल पर ही उसको कम करना चाहते हैं, कि जहाँ से आपका इंडिविजुअल कंज्यूमशन होता है और फिर उस हिसाब से आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, तो उस लेवल पे उसको कैसे कम कर सकते हैं और रीयूजेबल और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें.
1: जी
0: तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो इसमें पूरा बढ़ जाता है, और ऑटोमेटिकली आपका कचरे का जो टोटल जनरेशन है वो कुछ कम हो जाता है. दूसरा, अगर कलेक्शन की बात करें, तो कलेक्शन के अंदर मोशन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आजकल इंट्रोड्यूस हुई हैं, उसमें जीपीएस की मदद से पूरा का पूरा कलेक्शन का जो मूवमेंट है, मोशन है, उसको मैनेज किया जाता है, कि भाई कौन सा रोड पे से कचरे वाला गाड़ी कितने बजे से कैसे गुजरेगा, उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन से कचरा कलेक्ट करके दूसरी जगह जाके फिर ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्पोजल लोकेशन, हर जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा, कौन सा रूट के ऊपर भीड़ ज़्यादा है, कौन सा रूट उसका प्रेफर्ड रूट होगा, तो वो पूरा जीपीएस से गाइडेड रहेगा. बहुत माने बेहतर तकनीक है ये. साथ ही साथ जो रिमोट मॉनिटरिंग और कलेक्शन इफिशियंसी टेक्निक, जिसमें एक हमने छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट किया था गुजरात में, जिसमें कि हम लोगों ने हाउसहोल्ड लेवल पर बारकोड्स लगाए थे लोगों के दरवाज़ों के ऊपर,
1: अच्छा हाँ
0: और
1: हाँ
0: बारकोड्स के साथ हमारे जो वेस्ट कलेक्टर रहते थे, कचरा लेने वाले जो लोग रहते थे, वो उसका हमेशा सिग्नल माने सेंसर से, उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता था, तो
1: हाँ
0: इंस्ट्रूमेंट से सेंसर से उसका पिक लेते थे,
1: राइट
0: और वो पिक लेते बराबर हमारे सर्वर में, मेन ऑफिस में आ जाता था कि इस घर में से कचरा उठा लिया गया है. तो हर एक घर का यूनिक बारकोड डेवलप करके उस घर के साथ एसोसिएट किया जाता था,
1: जी
0: और उसमें घर वालों के सेफ्टी सिक्योरिटी के फीचर्स भी रखे थे हमने, कि हमारे कचरे वाले लोगों से कभी किसी को कोई सुरक्षा का कोई भय ना रहे,
1: जी
0: साथ ही साथ कचरा इकट्ठा हो गया है उसकी जानकारी हमारे पास तुरंत की तुरंत पहुंचे. अगर किसी घर से कचरा लेने वाला नहीं गया है तो हमारे सर्वर में तुरंत पता पड़ जाता था कि इस घर से आज कचरा नहीं लिया गया है.
1: अच्छा
0: और फिर कचरा जब इकट्ठा कर लिया है तो नेबरहुड लेवल से लोकल एरिया लेवल तक, माने अपने नेबरहुड लेवल से वार्ड लेवल तक, वार्ड लेवल से जोन लेवल तक पूरा मॉनिटरिंग उसमें हो सकता था. तो इस तरीके के कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बड़ी स्केल पर, सिटी स्केल पर लाने के लिए इसे हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा.
1: जी
0: तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है. तो इनको कहते हैं हम हमारी भाषा में इन्वायरमेंटली साउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ हेल्प ऑफ द इन्वायरमेंटली

0: टेक्निक्स।
1: अच्छा
0: जी,
1: और आने वाले समय में जो भारत का रूप है तकनीकी रूप से और जो आपका क्षेत्र है खास तौर पर आर्किटेक्चर, कैसा पाते हैं आप?
0: मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने ब्राइट देखता हूँ हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में बेहतर होने की, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में भी बहुत तुलनात्मक रूप से इम्प्रूवमेंट आया है, इनोवेशंस को लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एक जो चीज़ मैं देखता हूँ हमारे लिए एक्चुअल चैलेंज है, वो ये है कि हमारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखकर हम अफोर्डेबल आस्पेक्ट के ऊपर उनको कैसे संसाधन दिला सकते हैं। अगर हम अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस कर पाए तो विश्वसनीयता, तकनीक, योग्यता, बाकी पैमानों पर हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे, मुझे लगता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी गौरव वैद्य साहब, ग्रीन बिल्डिंग तकनीक के बारे में और उससे जुड़ी हुई कई और बातें, खास तौर पर अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। इन सारी जानकारियों का और आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक, हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति के बाद, इसे फिर से सुन लीजिएगा। प्रस्तुत है पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का एपिसोड नंबर 4।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
3: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
4: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
3: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
4: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
3: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
4: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
3: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
4: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया 30 से 40

0: तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गाँव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत।

0: वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ एपिसोड 4। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना सुन लीजिए। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेनर क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह से प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों पर तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू और सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिला इन दिनों विकास, नवाचार और जन कल्याण के कई नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब जलूद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। ग्रीन बॉन्ड और जन भागीदारी मॉडल से तैयार ये देश का पहला

प्लांट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद मुख्यमंत्री महेश्वर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंता को भी प्राथमिकता दी। मंडलेश्वर क्षेत्र के कतर गांव में उन्होंने गेहूं उपार्जन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में विकास कार्यों की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय क्षेत्रों के विकास और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी ओर खरगोन ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जलगंगा संवर्धन अभियान में जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में 7188 जल संरचना कार्य किए गए हैं, जिनसे लगभग 617 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहण की संभावना बनी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने इसे प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की साझा भागीदारी का परिणाम बताया है। जल संरक्षण के अलावा भारत सरकार के नीति आयोग के दिसंबर डेल्टा रैंकिंग में झिरन्या विकासखंड ने मध्य भारत जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा और तकनीक की बात करें तो खरगोन यहां भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। झिरन्या के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक स्पेस लैब का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस स्पेस लैब से जनजातीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। नवाचार की यही सोच अब पर्यावरण संरक्षण में भी दिखाई दे रही है। खरगोन नगर पालिका ने मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरों से अगरबत्ती बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले फूलों से तैयार अगरबत्ती को कुंदा नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के इसी संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेहरजा स्थित निधिवन परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर जिले में मनरेगा के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों का हरे क्षेत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया। आबाद खेती की आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में कृषि रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई है। जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल लगातार समीक्षा कर रही हैं। मनरेगा का प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता मत्स्य पालकों तक भी पहुंच रही है। जिले में रात्रि मछुआ चौपाल की अभिनव पहल शुरू की गई है। ग्राम दिचला में आयोजित चौपाल में मत्स्य पालकों को केज कल्चर बीमा योजना और मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति की जानकारी दी गई। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 174 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ। इस दौरान युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं जिले की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊर्जा मिल रही है। देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में नगर गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावद और पड़वा सहित नर्मदा नदी के घाटों पर बिना सुरक्षा मानकों के नाव संचालन और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम गीत सागर। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत सागर।

है ना, उड़ती हुई तितली की तरह है। जितना हम इसके पीछे पीछे भागेंगे, ये उतनी ही दूर जाती रहेगी। और जैसे ही हम अपना ध्यान खुशी की तरफ से हटा देंगे और कहीं और लगा देंगे, तो ये तितली हौले से आकर हमारे कंधे पर बैठ जाएगी और कहेगी, खुश हो ना।

दोस्तों, ज़िंदगी में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण

0: देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से गीत सागर, मैं हूं आपके साथ साधना। दोस्तों, खुश रहने के लिए सच्चे रिश्तों को संजोना होगा। हालांकि समय के साथ कई रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके करीब रहते हैं उन्हें अपने पास रखें। सादगी में खुशी ढूंढें, खुशी कृतज्ञता शांत पलों और एक कोमल दिल बनाए रखने से भी मिलती है।

दोस्तों, हर दिन नया कैनवास है जो हमारी उत्कृष्ट कृति को चित्रित करने की प्रतीक्षा कर रहा है। हर सुबह संभावनाओं और अवसरों से भरी एक नई शुरुआत लेकर आती है। बस हमें जो हमसे दूर गए हैं उनको बुलाना है और जो हमारे पास हैं उनको संजो कर रखना है।

0: दोस्तों, खुश रहने के लिए खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें, तो देखें कैसे अद्भुत चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे ही हम एक नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, हमारे लिए खुशी, सफलता और संतुष्टि लेकर आ जाती है।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

तो दोस्तों, चलते चलते साथ मिलकर हम महान चीज़ें हासिल करें और इस सप्ताह को यादगार बनाएं और आपको, आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां इसमें मिल जाएं।

आज के गीत सागर में बस इतना ही। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज इतनी ही बातें, इतने ही गीत। अगली बार नए विषय, नए गीतों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। आज्ञा दीजिए साधना जैन को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कादिर खान का सारंगी पर बजाया राग तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में कादिर खान का राग तोड़ी में सारंगी वादन। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम 2026 की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश राज्य वित्त आयोग आज नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा करेगा, जिसमें संबंधित जिलों के कलेक्टर्स, नगरपालिका अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्कूल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच आज क्रिकेट टेस्ट मैच मुलनपुर नई चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का कार्यक्रम सुनीता सिंह की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। ये जो बरसता बादल है, ये जो हहराता सागर है, धरती है, धरती है। ये जो घनी छांव है, ये जो नदी बहाव है, ये जो असीम ठहराव है, ये जो सुंदर रचाव है, धरती है, धरती है। ये जो जल एक दर्पण है, ये जो हवा में सरगम है, ये जो जल में कलकल है, ये जो नभ में हलचल है, धरती है, धरती है। ये जो नील गगन में लाली है, ये जो झूमते परिंदों की टोली है, ये जो बागों में कोयल सी बोली है, ये जो शरद में पावन दिवाली है, ये जो वसंत में बहुरंग होली है, धरती है, धरती है। तो आज समय की इसी पुकार को सुनते हुए हमने तय किया कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आप हमें बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर, और पर्यावरण बचाने के लिए वो एक छोटा सा संकल्प कौन सा है जिसे आप आज से अपने जीवन में अपनाने का वचन देंगे।

0: आदाब की गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद साहू जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप ठीक हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: और
0: हम...
1: मौसम कैसा है भोपाल का फिलहाल? अभी
0: मौसम भी बढ़िया है बादल छा गए हैं तो गर्मी से कुछ निजात है जी। हालांकि बहुत तूफान की वजह से, आंधी पानी की वजह से बहुत पेड़ भी गिरे और बहुत सी बातें हुई, लेकिन मौसम जरूर ठंडा हो गया है। तो भागचंद जी, हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: दीदी हम तो ये कहते हैं जैसे ये प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों की वजह से हो रहा है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैटरी वाली गाड़ी है वो चलाएं ज्यादातर, वो जो प्रदूषण करते हैं बहुत हानिकारक है। देखो दिल्ली में क्या माहौल है, प्रदूषण के कारण हालात बहुत गड़बड़ है। हम तो ये कहना चाहते हैं श्रोताओं से कि प्रदूषण ना करें और एक संकल्प जरूर लें कि हमें एक पौधा जरूर लगाना है अपने नाम से।
0: तो भागचंद जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके भीतर एक चिंता है और आपने वायु प्रदूषण की बात की। आप कह रहे हैं कि
1: बहुत बीमारियां चल रही हैं
0: और ये जो वायु प्रदूषण है इससे श्वास संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं।
1: होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऑक्सीजन तो कहते ही हैं कि भाई प्राणवायु है वो, तो उसका स्वच्छ रहना, साफ रहना जरूरी है। तो आपका संकल्प है कि आप एक पौधा अवश्य लगाएंगे, तो कब लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे या नहीं? सिर्फ पौधा लगाना दायित्व इससे पूरा नहीं होता, है ना, वो पौधा बड़ा भी हो। तो भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने एक सार्थक विचार रखा और अपना संकल्प साझा किया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका संकल्प है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, आपका संकल्प जरूर पूरा हो और कुछ और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
0: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद साहू जी, बहुत आभार कि आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हरिशंकर धाकड़ ग्राम आकुर्ती जिला शिवपुरी।
0: हरिशंकर धाकड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कितने दिन के बाद आपने फोन किया है?
1: मेरा कॉल तो पहली बार ही लगा है। 4-5 साल से ट्राई कर रहा था लेकिन अभी कॉल लगा है पहली बार मेरा।
0: अरे वाह, मतलब आप हमारे नए श्रोता हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके भीतर किस तरह की चिंताएं हैं और आप कौन सा एक संकल्प आज इस मंच पर रखेंगे जिस पर आप अमल भी करेंगे।
1: पर्यावरण के लिए हमको एक तो साफ सफाई रखना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करना चाहिए।
0: क्या करना चाहिए ये तो बहुत से लोगों को मालूम है ना, लेकिन आपका क्या संकल्प है आज के दिन से? आप कौन सा एक संकल्प लेंगे ये हम जानना चाहिए।

0: चाह रहे थे।
1: मेरा संकल्प यही है कि हम एक हर साल नया पौधा लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, जो कुछ पेड़ काटता है उसे मना करेंगे।
0: बहुत अच्छी बात है जी। और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे आप ये कह रहे हैं, कपड़े की थैली का प्रयोग करेंगे?
1: नहीं करेंगे
0: जी। जी तो हरिशंकर धाकड़ जी, आपकी बातें हमारे दूसरे श्रोताओं तक भी पहुंची हैं और मुझे लगता है कि जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि आप स्वयं तो पौधा लगाएंगे ही, वृक्षारोपण करेंगे, उसे बड़ा करेंगे, और जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है उस पर भी एक निगरानी आपकी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे। कपड़े के थैले वैसे भी हम पहले प्रयोग में लाते थे, उन्हें दोबारा लाने की आवश्यकता है। मालूम सबको सब है ना, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम उपाय सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम उन्हें अमल में नहीं लाते हैं। जी हम अमल में नहीं लाते, इसलिए हमने सोचा कि आज एक संकल्प हमारे श्रोताओं की तरफ से जरूर लिया जाए। तो हरिशंकर धाकड़ जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार मैडम। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार बहन जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट हजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: सुरेश कुमार सैनी जी कैसे हैं?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: अच्छा,
1: और इस समय अच्छी गर्मी भी बहुत

0: तेज पड़ रही है।
1: बिल्कुल, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, और
0: जी
1: इसी बात से जुड़ती हुई हमारी बात है आज की, हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर हम बात कर रहे हैं, जिसका
0: जी बहुत अच्छा
1: दुष्परिणाम।
0: विषय रखा आज आपने।
1: जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: जी मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है वो सब अपने ही द्वारा फैल रहा है, और जो पानी है पानी की भी बहुत बचत करनी चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए।
1: जी
0: और जो जैसे अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो जैसे अगर बस से भी जा सकते हैं कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं अगर अपन जंगल जा रहे हैं तो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, ये एक बहुत अच्छा संकल्प है और ये सभी को करना चाहिए। सुरेश कुमार सैनी जी, हमें अच्छा लगा कि पानी को लेकर आपकी चिंता है, और इस बार जो गर्मी पड़ी है, मुझे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण की बात इस गर्मी ने जन जन तक पहुंचाई है ना?
0: जी बिल्कुल। देखिए कभी बारिश हो जाती है अचानक, बेमौसम बारिश हो जाती है,
1: जी
0: ये सब पर्यावरण मतलब उसी का असर है।
1: बिल्कुल, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है, फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लेशियर हैं वो पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना? तो
0: वो
1: वो
0: भी घटते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो अगर पिघल रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता की बात है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर मनुष्य को, हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी बात है ना? और मैं ये महसूस करती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन कार्य रूप में बहुत कम लोग इसमें सक्रिय हो
0: जी
1: पाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बातें तो बहुत होती हैं, बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन करते नहीं है उस पर।
1: तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे इस दिशा में?
0: जी हमारा तो हर वर्ष का यही संकल्प रहता है कि हम दो चार पेड़ हर वर्ष लगाते हैं।
1: तो आप
0: बारिश के महीने में अभी गड्ढे खोद कर डाल दीजिए, और
1: तो
0: जो खेतों के किनारे में आड़ और जो मलाई रहती है
1: जी
0: उसी
1: जी
0: के पे लगाते हैं।
1: जी आप पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों को बड़ा करने का दायित्व भी निभाते हैं, और आपने पानी की बचत की बात की, जो कि बहुत आवश्यक बात है। कोई भी संसाधन जो आपको दिया गया है, अगर उसका आप बहुत बेफिक्री से उपयोग करते हैं, तो फिर वो कम पड़ ही जाता है ना? इसलिए आवश्यक है कि हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से हम उपयोग में लाएँ।
0: जी बिल्कुल। कुछ लोग क्या है कि जो नल सप्लाई आती है सुबह, मैंने भी देखा है अपने यहाँ, तो पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद खुली छोड़ देते हैं
1: बिल्कुल,
0: टोटी, उसको बंद नहीं करते हैं।
1: बंद नहीं करते हैं, जो
0: जी
1: ब्रश करते हैं, जब तक ब्रश करते हैं तब तक नल चलता रहता है, वो भी पानी
0: चलता
1: बर्बाद
0: रहता
1: होता
0: है,
1: है ना?
0: किसी किसी की तो कहो पैडे गाड़ी धुलती है
1: और
0: किसी की
1: जो
0: तो।
1: घरों में हम पानी का उपयोग करते हैं सब्जियां धोने में, या जो अपने रसोई घर में जो पानी बच जाता है, उसका
0: जी तो
1: उपयोग हम
0: उनको
1: अपने,
0: पेड़ों में डाल देना
1: हाँ, बगीचे
0: चाहिए।
1: में कर सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो किए जा सकते हैं, और
0: बिल्कुल
1: हर इंसान जब इसमें शामिल होगा तभी पर्यावरण संरक्षण की बात सार्थक हो सकेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सुरेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया।
0: नमस्कार बहन।
1: नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: विकास आर्या, प्रयागराज से।
0: विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: आज के विषय पर हम यही कहना चाहेंगे मैम, जो आज के प्रदूषण जो फैलते हैं, ये हम सब अनुरोध करते हैं कि कुछ जो होते हैं ये धुआं वगैरह और जो साफ सफाई प्लास्टिक, ये ना करें प्रदूषण, इससे हमारे बहुत से पर्यावरण पर ये नुकसान हो रहे हैं। और लोग कहीं भी प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, ये कभी गलता नहीं है और इससे बहुत ही हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है।
0: हमारे धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, है ना, जल स्रोतों के लिए भी अच्छा नहीं है
1: जी। और ये भी कहना चाहेंगे कि पानी कम से कम हो सके तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर बूंद से करें तो कोई भी चीज भर सकती है।
0: बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जल का अनावश्यक जो अपव्यय है वो ना करें, है ना, उसको सदुपयोग करें पानी
1: कहीं
0: का।
1: कहीं पर हम देखते हैं कि लोग पानी बहुत ही बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हमारे पास पानी है तो अब हमें कोई कमी ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब एक कहावत है कि उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, मतलब जैसे कि पानी
1: बिल्कुल।
0: पानी एक मूल्यहीन चीज है ना, एक मूल्यहीन तत्व है, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जबकि
1: नहीं होगा तो हमारा फिर ये जीवन
0: जी
1: बहुत ही मुश्किल से कटेगा।
0: बिल्कुल, जबकि अब समझने की बात यह है कि जिस तरह से आप पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, उससे ज्यादा कीमती अब पानी है, तो पानी की तरह बहाना ये बात ही अब बेमानी हो चुकी है। आपको बहुत सोच समझ कर पानी का उपयोग करना चाहिए,
1: इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए हम कहते हैं कि तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल। तो विकास जी, ये बताएं कि आपका क्या संकल्प है, या कई संकल्प हो तो वो भी बताएं, कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से संकल्प ले रहे हैं आज?
1: बिल्कुल, हम तो यही संकल्प लेना चाहेंगे मैम कि हम खुद से भी, अपने आसपास भी यही कहते हैं कि सब लोगों को कोई भी चीज हो उसे बहुत कम से कम मात्रा में लेना चाहिए।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि आप हर संसाधन का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। तो
1: कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि लोग बिजली फर्जी खर्चा करते हैं, कोई भी चीज चला लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास भी ये चीज कहते हैं कि सब लोग जितना काम है उतना ही खर्च कीजिए।
0: बिल्कुल। और अभी चूंकि देखिए गर्मियों का समय है, तो अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि हर कमरे में पंखा, कूलर या एसी चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि परिवार के सदस्य एक या दो कमरे में रहें और उसमें ही एसी कूलर चलाएं, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।
1: जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि अब ये हमारे पास है तो कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से ये आता है
0: जी। तो विकास जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। हम आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। ग्राम बनेता तहसील बंडा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहे हैं मैम। आपके
0: महेंद्र
1: लिए
0: सेन
1: मैं
0: जी,
1: श्रोता हैं।
0: महेंद्र सेन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: जी मैम, लाइफ में पहली बार लगा है, वो बड़ी खुशी हुई है हमारा ने जो आज
0: अच्छा, पहली
1: पक्का
0: बार
1: में
0: फोन
1: फोन
0: लगा
1: लगा
0: है,
1: है।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: जी मैम, हमारे कुछ भी है कि सबसे पहले तो अपने लिए वन वकली आग से बचाना चाहिए और हर श्रोता के लिए एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए।
0: वनों को आग से
1: और
0: बचाना चाहिए, महत्वपूर्ण बात
1: जी,
0: आपने कही, बिल्कुल।
1: और नदी है, नाले हैं, इन गंदगी मत रखो क्योंकि ये दूसरे होंगे तो अपन बीमार पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो जल स्रोत हैं अगर वो गंदे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए भी, है ना।
1: जी, क्योंकि उसमें गाय वगैरह हैं, कोई भी मवेशी पानी पीता है तो सर वो खत्म हो जाते हैं। पॉलीथिन वगैरह हैं जो आती हैं बैठ के जो उसमें, तो ये सर बहुत जटिल समस्या है।
0: बिल्कुल, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनका जो उपयोग हम अब भी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, और सारी जानकारी होने के बावजूद उसका उपयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है
1: और पेड़ भी लगाना चाहिए हर इंसान के लिए।
0: जी। तो ये तो आपने बताया है कि क्या करना चाहिए, और आप चिंतित हैं जंगलों को लेकर और धरती के स्वास्थ्य को लेकर। प्लास्टिक की आपने बात की है, पानी की आपने बात की है, साफ सफाई की बात की है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपके क्या क्या संकल्प होंगे, आप क्या क्या करेंगे आज से, ये बताइए।
1: क्योंकि मैम हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वनों की देख रेख करते रहते हैं और हम अपनी क्यारी वगैरह में हर चीज लगाए, आम वगैरह इनके तो पानी आने देते हैं और साफ सफाई का फुल ध्यान रखते हैं।
0: जी,
1: जी मैम,
0: तो जाहिर सी बात है कि पेड़ लगाने का काम तो यूं ही होता है आपसे, और जो आपने बात की है जल स्रोतों की सफाई की, उसमें ज़रूर आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना
1: बिल्कुल मैम, और सभी के लिए देना चाहिए।
0: जी। तो महेंद्र सेन जी, आज आपने हमें फ़ोन किया, हमसे बातचीत की, इस विषय पर अपने विचार रखें, आपका हृदय से आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: आदरणीय मैम जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैम जी। मैं जय नरसिंह दो FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूं मैम जी।
0: कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के विषय पर एक सार्थक विचार आप रखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को देख कर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं और क्या संकल्प है आपका पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
1: देखिए मैम जी, मैं श्रोता होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और बात पर्यावरण की चल पड़ी है तो मैम जी बहुत ही अनुकूल विषय है। मैम जी मैं तो ये कहूँगा कि हमने अभी पर्यावरण दिवस मनाया तो मैं सबसे पहले आपको एक अनुकूल बात बता दूं कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ मैम जी।
0: क्या बात है बहुत अच्छी बात।
1: मेरे पास वीडियो कॉल होता ना मैम जी, सचमुच में वीडियो कॉल करता और आप रेडियो में भी लोग देख पाते मुझे और आपको। तो पीपल का वृक्ष है, इसकी छांव में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलो खड़े होकर मैम जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: तो मैम जी देखिए, मैं तो वृक्ष लगाता ही रहता हूँ, मैंने एक बरगद का वृक्ष लगाया था।
0: कमलेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं होती हैं?
1: देखिए मैम जी, आज वर्तमान में देखी जाए तो ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, तो सबसे दायित्व बनता है कि ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल न करें।
0: बिल्कुल,
1: बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
0: बिल्कुल, मनुष्य को तो समस्या होती ही है, मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है, इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है, उनका भी जो प्रजनन चक्र है वो प्रभावित होता है। तो प्रदूषण कोई भी हो, पूरा जीव जगत उससे परेशान होता है और उस पर नकारात्मक प्रभाव उसका होता है।
1: देखिए मैम जी, आपने ये बात रख दी है, मैं ये बात बोलने वाला था कि मनुष्य ज्यादा हैरान मैं समझता हूँ प्रकृति से, प्रकृति को लेकर के। यदि प्रकृति अपनी पे आ जाए तो मनुष्य को तो खत्म कर देगी, तो मनुष्य का दायित्व बनता है कि प्रकृति को बचाए रखे, जल वायु अग्नि।

0: आकाश पृथ्वी माता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है।
0: इन पांचों चीजों को बचाने का दायित्व एक मनुष्य का बनता है कि इसे बचा के रखें। जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े विशाल कह सकते जीव का है,
1: तो क्या है कि संपूर्ण जीव जगत जो है
0: अनुकूल है मैम
1: जी, संपूर्ण जीव जगत का संरक्षित रहना, सुखी रहना आवश्यक है मनुष्य के लिए, है ना। तो कमलेश जी, आपने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है चिंता का विषय है और हमें प्रकृति के हर तत्व की रक्षा करनी चाहिए, आपका क्या संकल्प है, आप क्या करेंगे?
0: तो मैम जी, संकल्प मैं तो जल को बचाता हूँ ज्यादातर, मैं जल की तरफ ज्यादा आश्रित रहता हूँ क्योंकि जल है तो कल है।
1: क्या बात है, तो जल संरक्षण के लिए
0: मुझे कोई एक ही बूंद पानी बहाता ना तो मुझे गुस्सा आती है।
1: बिल्कुल, टोकना आवश्यक होता है क्योंकि पानी को लेकर हमारा जो व्यवहार है वो बहुत बेपरवाह रहा है शुरू से। अब लेकिन पानी अपनी कीमत बता रहा है और बता रहा है कि जल धन है, समृद्धि है, निधि है, उसे उस तरह से देखना चाहिए जैसे हम किसी खजाने को देखते हैं, संरक्षित करते हैं।
0: मैम जी, मैं तो एक बात रखूंगा कि जल है तो कल है, वरना चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ हलचल है तो वीरान आने वाला कल है। जल ही तो जीवन है, जीवन को बेकार मत बहाओ, अभी समय है मानव, तुम जल के प्रति चेत जाओ। जल बिन बताओ कैसे मिलेगी दो जून की रोटी, जल से है आपके हमारे जीवन की संगोष्ठी। खिल तो जागा यह कमलेश बिन पानी के कीचड़ में, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर चूंकि जबकि इत्यादि के चलते कैसे बनेगी कीचड़ बिन जल में।
1: क्या बात है, तो कमलेश जी आपने बहुत सुंदर संदेश दिया एक कविता के माध्यम से, जल संरक्षण की बात की, तो कुछ बारिश की फुहारें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: हेमचंद जैन।
0: नेमचंद जैन जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दमोह से।
0: आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की और जानना चाहते हैं कि इस समय जो पर्यावरण की स्थिति है, तेज गर्मी, बाढ़, भूकंप, है ना, ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं और मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई है, जल की कमी भी होती है, जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण की स्थिति देखकर आप
1: अधिक हो रही है, इसीलिए तो वो जल की कमी होती है, गर्मियों में होती है और प्राय जल की कमी थी।
0: जी, तो इस पूरे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में क्या चिंता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कौन सा एक उपाय करेंगे, क्या संकल्प है आपका?
1: दिल में ये चिंता है कि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगलों से ये सब पेड़ों से बाटा जाकर का खिंचाव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सरकार को इसमें थोड़ी रोक लगाना चाहिए।
0: सरकार तो रोक लगाती ही है, आपने जंगल कटने की बात की है, ये वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि जंगल जो हैं वो सभी जीव जंतुओं की आश्रय स्थली हैं, है ना, सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें, पेड़ पौधे भी वहाँ हैं, आपने बताया है कि बादलों को खींच कर वो ले आते हैं पेड़ और बारिश होती है, तो बहुत आवश्यक है कि हमारे जंगल सुरक्षित रहें ताकि जैव विविधता भी हमारी बनी रहे। तो आप कौन सा एक संकल्प लेंगे नेमचंद जी?
1: यही संकल्प है हमारा कि कम से कम जंगलों की कटाई हो।
0: और पौधे लगा सकते हैं, आपने पेड़ों की बात की है तो जाहिर सी
1: बात, अपने खेत में आम के पेड़ लगाने के मूड में थे,
0: तो आपने बताया कि आप पेड़ लगाने के मूड में हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर बहुत से पेड़ लगाइए, उनको संरक्षित कीजिए, बड़ा कीजिए। तो नेमचंद जी, आज आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मैं मनीष निमाड़े।
0: तो मनीष जी, आज का विषय जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं पर्यावरण को लेकर आपके भीतर हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका क्या संकल्प है।
1: जी, पर्यावरण देखिए हम लोगों का एक कहें कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। अगर ये पर्यावरण कमी हुई, नष्ट हुआ या धीरे धीरे क्षीण होते होते खत्म सा होने लगेगा, तब बहुत विपदाएं आएंगी। विपदाएं आनी शुरू हो गई, प्रकृति अपना संकेत हर समय दे रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मानव प्रजाति जो है उसकी तरफ कुछ दिन मना लेते हैं या पर्यावरण दिवस मनाकर और फिर भूल जाते हैं और कोई चिंता नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सरकार सब करेगी, लोग करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हमको खुद से करनी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
1: हम खुद जब से नहीं करेंगे तब तक जो है ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी जागेंगे, ना चार घर जागेंगे, ना नगर जागेगा, ना देश जागेगा और ना ही विश्व जागेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो शुरुआत हम अपने से करें। और मैं जो है पहले से इस विषय का चिंतित हूँ और चूंकि जागरूकता परिवार से मिली है हर विषय पर जानने की, देखने की, समझने की
0: जी।
1: तो हम लोग शुरुआत किए थे कि हम घर में मार्केट से कोई भी प्लास्टिक थैली नहीं खरीद के लाते हैं, मतलब
0: क्या
1: कोई
0: बात
1: सामान
0: है?
1: उसमें नहीं लाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई दिक्कत भी है तो पुनः घर लौटते हैं और फिर झोला लेकर ही सामान लाते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई देता है सब्जी भाजी देता है तो उसको मना करते हैं, नहीं भैया आप प्लास्टिक मत दो, हमारे पास झोला है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो परिवार में ये है कि हम लोग करते हैं। दूसरा, कभी भूले भटके किसी वस्तु में लाना अनिवार्य हो गया उसमें तो हम उसको डस्टबिन में नहीं डालते, हम उसको साफ करके या धोके रीयूज के लिए रखते हैं या कहीं और काम आ जाए, ताकि वो कूड़े में ना जाकर और अपनी वो ना फैलाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: ये प्रयास करते हैं, पानी बचाने का प्रयास करते हैं। पानी बचाने के लिए परिवार मिलकर प्रयास करता है
0: जी,
1: कि हम नल या शावर से कभी नहीं नहाते हैं,
0: क्या बात है,
1: भर कर नहाते हैं।
0: जी जी जी।
1: कूलर का जो है हम परिवार में एक सामूहिक हमारा हॉल है, हम उसमें सभी उस एक कूलर से आनंद लेते हैं।
0: वाह,
1: तो हम इससे दोहरे लाभ कमाते हैं, बिजली बचाते हैं और पानी भी बचा लेते हैं।
0: बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं और साथ का आनंद उठाते हैं।
1: साथ तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो अनमोल धरोहर है।
0: जी जी जी। तो मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सार्थक और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, हार्दिक आभार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार, नाम
1: नमस्कार
0: बताइएगा।
1: नमस्कार नमस्कार। गोविंद जलोदिया खाते गांव जिला देवास।
0: गोविंद जलोदिया जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है सर, गर्मी से अब ठंडी पड़ गई है।
0: जी, तो कुछ बारिश की बूंदों ने राहत तो दी
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं और कोई एक सार्थक
1: पर्यावरण तो
0: पहल।
1: क्या है कि पर्यावरण से तो पूरा स्वस्थ चल रही है। पर्यावरण क्या है, जब तक तो झाड़ पेड़ पौधे पदे ये वो नहीं रहेंगे, प्रदूषण नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी, तो वातावरण शुद्धिकरण रहेगा ही। इससे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सबसे जरूरी तो ये है कि आदमी ने क्या, अभी जैसे अभी 5 तारीख को बना रहे हैं तो एक संकल्प कर लेना चाहिए और वहां से चल के रोज एक कुछ ना कुछ झाड़ पेड़ पे पानी देते ही रहो।
0: तो आप पौधों को परवरिश देने की
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: पेड़ पौधे को पानी देते रहो, ये भी संकल्प कर लेना चाहिए। बनाना मतलब झाड़ उगाना तो अलग बात है,
0: बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पौधारोपण से
1: यही
0: बात
1: सभी
0: बनती
1: जरूरत है।
0: नहीं।
1: तो पर्यावरण से उससे ही शुद्धिकरण रहता है, आगे और पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ पे ये फल फूल वगैरह टाइप यही वो तो आप कर दो, इनको ही रोज आप पानी दो तो भी वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो आपने
1: ये
0: ये कहा कि
1: हाँ
0: पौधे लगाना तो आवश्यक है ही, उनकी
1: हाँ आवश्यक
0: परवरिश,
1: चाहिए।
0: उनकी परवरिश एक बच्चे की तरह करना आवश्यक होता है, वो पौधा बड़ा हो जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आपका क्या संकल्प रहेगा?
1: संकल्प ये मेरा है, मैं तो डेली वैसे जल तो चढ़ाता हूँ, वैसे तुलसी का वो है जो पौधा और 2-3 मतलब जो उसके फूल

0: भी है, तो जब सूरज ग्रहण कर सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं।
1: जी
0: अब और 5 तारीख से और संकल्प कर लिया कि हम डेली मतलब जो है पेड़ पौधों में पानी देंगे।
1: तो आप जहाँ भी देखेंगे सूखते पौधे पानी देंगे, ये एक अच्छा संकल्प है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारी स्मृतियों का घर है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वे हमारी सांसों के प्रहरी हैं। नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, वो जीवन की सतत बहती हुई कथा हैं। और पर्यावरण केवल एक किताबी विषय नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तब आवश्यकता है केवल चिंता की नहीं, बल्कि संकल्प की। एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरी भरी धरती का उपहार दे सके। और आज इस कार्यक्रम में आप सबने अपने संकल्प हमसे साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प आपको हमेशा याद रहेंगे। एक दूसरे को भी आप ये बातें याद दिलाते रहेंगे और इन संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां बातों से बात बनेगी नहीं, बातें अब तक

खूब हुई हैं, अब बारी है कुछ कर गुजरने की। तभी धरती पर जीवन की बात हो सकेगी, हमारे अस्तित्व की बात हो सकेगी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज की प्रस्तुति थी सुनीता सिंह की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है ये। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। शिक्षण संवर्धन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आज भी यही मौसम बना रहेगा और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामेगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? तो लीजिए, हम लेकर आ गए हैं आप सभी की पसंद पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। तो भारत और भारत से बाहर सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार। आपने अपनी पसंद हमें भेजी और हम आ चुके हैं आपके गाने लेकर। पहला गीत हमने लिया है काजल फिल्म से। आशा भोसले साहिर की आवाज़ है आशा भोसले की। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है रवि ने। इस गाने को पसंद किया है नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देशपांडे, मोहन, रमेश बल्लाल और आपके सभी साथियों ने। तो आपकी पसंद पर ये गीत हम भेज रहे हैं काजल फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत सच्चा झूठा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है अखिल भारतीय तीर संरक्षण महासभा मध्य प्रदेश के सभी साथियों ने। अनिल अरुणा RBI, आदिश्वर प्रसाद, अल्पना जैन, संजय जैन, सीमा जैन, संध्या आज़ाद मोदी, प्रदीप जैन, राजेश ममता डालडा, संतोष किरण ट्रांसपोर्ट, वर्षा ज्योति स्वरूप जैन, सुषमा सुनील गंगवाल, जितेश आभा, ज्योतिषाचार्य और राकेश रौनक ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सुजाता फिल्म से एसडी बर्मन की आवाज है। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसडी बर्मन का, और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी साथियों ने। अमेरिका के बोस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन और आपके परिवारजन प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव और अनिरुद्ध, साथ ही आप हमारे देश हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई, रिश्तेदारों और सभी मित्रों को भी सुनवाना चाहते हैं ये गीत। तो अमेरिका के साथ साथ भारत में भी डॉक्टर विजय प्रकाश जी और अपने साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

और लीजिए आपकी फरमाइश का अगला गीत, ये रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर की आवाज़ है। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर ने संगीत दिया है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने इसी गीत को सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सभी की पसंद पर महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत सुनिएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। बेताब फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है। इस गीत के फरमाइशकर्ता इस गीत के बाद हम आपको बताते हैं।

बेताब फिल्म के इस गीत को पसंद किया था भोपाल गौतम नगर से पंडित ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, अक्षरा अनुष्का और विनायक शर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। आप सभी की पसंद पर हमने सुनवाया बेताब फिल्म का ये गाना। और लीजिए, आपकी फरमाइश का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल।

जक के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। और इसी गीत को पसंद किया है बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जे एस नायक, शोभा नायक और जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लोफर फिल्म के इस गीत को, जिसे आशा भोसले ने गाया था, इसके साथ ही आपकी फरमाइश यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए साधना जैन को। अगली बार नए साथियों के पत्र और नए गीतों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:25 हुए हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग एक।
1: प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: यशवंत क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
0: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए, मगर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
1: यही सवाल शंभू काका, ठीक यही सवाल मुझे हर पल झकझोरता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो, गोद में खेलने वाले बच्चों को दूध की एक बूंद भी ना मिले, पिचका पेट और उघड़ा

0: बदन लिए घूमने वालों के लिए भला इस आजादी का क्या महत्व काका?
1: दुख तो इस बात का है बेटा कि हमारे नेता भी हमारी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, बस जुलूस सभाओं में गाल बजाते हैं और भूखी नंगी जनता की तालियां बटोरकर खुद की पीठ थपथपाते हैं।
0: अब इस साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका, कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है।
1: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
0: हाँ काका,
1: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
0: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
1: हड़ताल तो यूनियन करती है,
2: हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है।
1: मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
0: क्या
1: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
0: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है। क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका, मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
1: बेटा, तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं काका।
1: कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है, अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा।
0: लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है, अब वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग हम मजदूरों के हित में नहीं होता?
1: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
0: हाँ?
1: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है, सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
0: ओ, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
1: सच? जरा बता दो क्या समझा।
0: देखो काका, मैं मानता हूँ कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है। कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं, लेकिन काका यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता। अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
1: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
0: काका, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं। लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
1: भाई आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
0: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं। अब काका, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ,
1: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का, तेरा जोश देखकर उम्मीद बंधी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन।
0: हाँ काका।
1: तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है, तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
0: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब, आपकी योजना क्या है?
1: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है, यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
0: तो फिर काका?
1: फिर क्या, अगर राम बहादुर को

0: यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा।
1: अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है। दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
2: सच काका, सच। लेकिन काका, क्या यूनियन इस बात के लिए सहमत होगी?
0: भाई, इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कोशिश करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है। लेकिन जसवंत,
2: हाँ काका,
0: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा है?
2: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा। आज हम अपने

0: कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
1: ठीक है बेटा।
2: अरे वाह, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। हाय हाय हाय हाय। और फिर पानी में नहाती हुई परी, इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
3: हाय भैया। हाँ, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती, फिर ये बिजली जैसी क्या चमकी। लगता है कोई भूत प्रेत है, यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए। हम आप कौन हो बाबू, पराई नारी को नहाते हुए छुप छुप कर देखते हो, आपको लाज नहीं आती।
2: ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना, पानी में खड़ी हुई तो किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो। तेरी कुछ तस्वीरें खींच लूँ।
3: आप मेरी तस्वीरें खींचेंगे बाबू? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं।
2: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई, शहर से घूमने आया हूँ।
3: मैनेजर की छोटे भाई हैं आप?
2: हाँ हाँ, क्यों मेरी बात का विश्वास नहीं?
3: लेकिन बाबू, आप मेरी तस्वीरें क्यों लेना चाहते हैं?
2: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, बस जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
3: बाबू, आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाएंगे ना?
2: हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा।
3: तो ठीक है, फिर खींचो मेरी फोटो।
2: अच्छा, थोड़ा मेरी तरफ देखो।
3: ये?
2: थोड़ा दूसरी तरफ घूमो।
3: ये ऐसे?
2: हाँ। अब जरा मेरी तरफ देख कर मुस्कुराओ। अब थोड़ा बैठ कर दोनों हाथ उधर करो।
3: ये ऐसे बाबू?
2: ऐसे हाँ, एक हाथ थोड़ा और ऊपर। बस बस बस बस बस बस, इतनी तस्वीरें बहुत हैं। जरा नदी से बाहर तो निकलो।
3: बड़े बेशरम हैं आप, अपने सामने ही मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं।
2: कमाल है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे ही बाहर निकलना चाहती थी।
3: तब की बात और थी।
2: अच्छा,
3: तब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अच्छा बाबू, चलो तुम मुंह घुमा कर खड़े हो जाओ।
2: अच्छा अच्छा, समझ गया। लो लो, मैंने ये मुंह घुमा लिया।
3: देखो, जब तक मैं ना कहूँ और मुँह ना करना।
2: जो आज्ञा देवी जी।
3: आपने मुझे देवी जी कहा?
2: आपने नाम तो बताया नहीं, तो देवी जी ही कहना पड़ा।
3: मेरा नाम नारायणी है बाबूजी। बाबूजी, अब आप मेरी ओर घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
2: अच्छा अच्छा, चलो मैं घूम गया। भाई, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नारायणी। यानी देवी, सौंदर्य की देवी यानी नारायणी। सच नारायणी, तुम बहुत सुंदर हो। एक बात पूछूं नारायणी?
3: हाँ पूछिए बाबू जी।
2: तेरा ब्याह हुआ कि नहीं, पता ना नारायणी, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
3: क्यों पूछ रहे हैं आप?
2: पहले बताना, बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
3: हो गया।

0: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
1: अच्छा नारायणी, ये तो बता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
0: वो भी इस दुनिया में अकेला है बाबूजी, मजदूरी करके अपना पेट भरता है।
1: अच्छा, एक बात और बता, क्या वो तुझे पसंद है?

0: बेटा यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तू तो उसे जानता है ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका।
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका, आखिर यहाँ के मजदूरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
0: भूख बेटा, भूख। भूख ही वो कारण है जो जीते जागते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका, तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका, इस साइट का अब कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा, जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका, एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका, सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।
0: अरे हाँ, यूनियन के नाम पर अच्छा याद दिलाया। अगले महीने की 10 तारीख को यूनियन की आम सभा बुलाई है। राम बहादुर की यूनियन की वर्दी उतरना निश्चित है। यूनियन में तेरा नाम शामिल करवाने का अगर ये मौका हम चूक गए तो फिर ऐसा सुनहरी अफसर फिर कभी नहीं आएगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शंभू काका, हमें इस मौके को हर हाल में भुनाना है। काका, जब तक यूनियन में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक उनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती।
0: मैं तेरी बात से सहमत हूँ यशवंत।
1: काका, आप एक काम कीजिए, आप सभी दलित मजदूरों को आम सभा में उपस्थित रहने के लिए कह दीजिए।
0: ठीक है।
1: यूनियन में दलित मजदूरों को आज तक जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, इस बार हम अपना वो अधिकार लेकर रहेंगे।
0: दलित मजदूर तो एक है यशवंत, इसके अलावा मैं दूसरे मजदूरों का मन भी टटोलता हूँ, शायद उनका समर्थन भी हमें मिल जाए।
1: और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा काका।
0: और हाँ, लिचू भी हमारे साथ है। अब कामयाबी अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकती।
1: काका, तब तो समझो कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी और काम का पूरा भुगतान तुरंत करने का नियम भी जल्दी बन जाएगा। और काका, तब कोई भूख से नहीं मरेगा, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे सभी मजदूर भाई खुशहाल होंगे। काका खुशहाल।
0: तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे ऐसा शुभ दिन जल्दी आए।
1: हाँ काका।
2: मेरी नारायणी, कैसी होगी मेरी नारायणी, मेरी जीवन संगिनी। सोचा था उसके मां बाप की मौत के तुरंत बाद उसे घर ले आऊं, मगर क्या करता, क्या करता मैं, उन दिनों बेकार जो था, अपना पेट भरना ही मुश्किल था, उस बेचारी का कहां से भरता। वो सोचती तो जरूर होगी कि संकट की घड़ी में उसका मर्द भी उसके किसी काम नहीं आ सका। बेचारी मजूरी कर रही है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप तो गरीबी और भूख है।

अगर गरीबी और भूख न रहे तो धरती पर पाप का बोझ ही क्यों बढ़े। ठीक है, अब मैं इस बीमार गरीब ब्राह्मण की देखरेख का काम कर रहा हूं, मगर इसके पास मुझे देने के लिए है भी क्या? बेचारा आप ही कई कई दिनों तक भूखा रहता है, मैं उसे यूं भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन उसकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मगर नारायण, अगले महीने ही तो गौना करवाना है, जबकि मेरी गांठ में तो फूटी कौड़ी तक नहीं। अरे कैसे होगा ये सब?

0: लगता है ब्राह्मण जा गया है, उसे प्यास लगी है, मैं जाकर उसे पानी पिलाता हूँ। ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मण महाराज, महाराज
1: बेटा
0: लीजिए, आप पानी पीजिए, लीजिए लीजिए,
1: लाओ बेटा
0: लीजिए।
1: भगवान तुझे लंबी आयु दे बेटा।
0: महाराज
1: बेटा तू मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा।
0: ब्राह्मण महाराज आपके साथ मेरा भी खाली समय कट जाता है। महाराज एक बात समझ में नहीं आता।
1: कौन सी बात बेटा?
0: महाराज आप रहने वाले तो इलाहाबाद के हैं।
1: हाँ
0: आपका भरा पूरा परिवार है, फिर आप यहाँ आकर अकेले क्यों रह रहे हैं?
1: यह एक दुख भरी कहानी है शिबू बेटा। जब से मुझे ये निगोड़ी टीबी की छूत की बीमारी लगी है बेटा, तब से मेरे अपने सगों ने मुझे टुकरा दिया है। सगों के सामने तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि कहीं दूर एकांत में अपने अंतिम दिन व्यतीत।
0: आपको तो बहुत तेज खांसी हो रही है, आप रुकिए मैं आपको पानी देता हूँ। ये लीजिए पानी और पीजिए, ये लीजिए
1: बेटा लाओ।
0: महाराज आपके बलगम में तो खून भी है।
1: शायद मेरी बीमारी अंतिम चरण में है बेटा।
0: महाराज
1: बेटा बेटा
0: जी महाराज
1: एक बात बताएगा?
0: जरूर जरूर पूछिए महाराज।
1: बेटा क्या क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता?
0: महाराज भला मैं आपसे क्यों डरने लगा?
1: बेटा तू मेरे कपड़े धोता है, मेरी गंदगी साफ करता है, तुझे टीबी हो सकती है बेटा। इस भयानक बीमारी से तू नहीं डरता क्या?
0: ब्राह्मण देवता हम गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है, फिर ये टीबी जैसी छोटी छोटी बीमारियों से क्या डरना?
1: तू ठीक कहता है शिबू बेटा। बीमार इंसान तो फिर भी कुछ दिन जी लेता है बेटा, लेकिन लेकिन भूखा इंसान ना ना ना ना, भगवान किसी को भूख करो।

0: Mom, you did get the help.
1: Who got up not? Mom,
0: Mara? Mara, somebody. महाराज आपकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज अब आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। समझिए महाराज।
2: हाँ बेटा, मेरी सांस कब रुक जाए बेटा, कोई भरोसा नहीं। मैं बेटा उससे एक विनती करना चाहता हूँ।
0: महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का स्थान देवताओं के बराबर होता है। देखिए महाराज, विनती करके आप मुझे नरक में ना ढकेलिए, आप मुझे आदेश दीजिए।
2: बेटा बेटा, तुझे ध्यान होगा कि जब मैं 3 दिनों से भूखा था तो तूने मुझे अपने घर से रोटी लाकर खिलाई थी।
0: हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है,
2: मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बेटा तू इस बात का कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा, इस बात का भी नहीं कि मैं तेरे हाथ का पानी पीता था। हाँ बेटा,
0: ब्राह्मण महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।
2: बेटा बेटा ये नहीं पूछेगा कि ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं।
0: इसमें पूछने की क्या बात है महाराज,
2: तू तो बहुत समझदार है ऋषभ।
0: महाराज आप किसी भी तरह की चिंता न करें, अपमान का घूंट पीना तो हम दलितों के लिए रोजमर्रा की बात है। महाराज मैं आपके सम्मान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज।
2: जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो।

0: क्या बात है नारायणी, तो रो क्यों रही है?
1: बसुमती काकी, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
0: कौन चला गया? वो चौधरी?
1: हाँ काकी, हाँ, उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उसकी अंधेरे की चमक दमक में मैं इतना खो गई कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। होश तो तब आया जब उसकी शादी की बात सुनी।
0: क्या?
1: हाँ काकी, वो अपना ब्याह करने गया है। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा काकी?
0: नारायणी, ना, ओ अभी रोना धोना बंद कर। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बाबू बाबू के चक्कर में ना पड़। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। नारायणी, उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है।
1: कैसे भूल जाए?

0: अर की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। प्रकृति का पोषण करें ताकि भविष्य समृद्ध हो, वन्य जीवों की रक्षा करें, जैव विविधता को संरक्षित करें, प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हमारा अधिकार। मैनो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता नहीं करता। मैनो आज विश्व तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सतत विकास की अवधारणा मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रदान करता है। मैनो किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हों। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया। मैनो इस असमानता के कारण समाज की आधी आबादी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई। सतत विकास लक्ष्य 5 इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मैंने जब महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं तो वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे आर्थिक विकास तेज होता है, गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। यही कारण है कि लैंगिक समानता को सतत विकास

की आधारशिला माना गया है। बहनों, महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध भविष्य के निर्माण से है। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करती है। इससे एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी का निर्माण होता है, जो भविष्य में देश और समाज के विकास में योगदान देती है। बहनों, महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ती है और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बहनों, आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकती हैं। बहनों, हमारा आने वाला कल केवल आर्थिक विकास पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी आधारित है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य की पीढ़ियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहनों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जल संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में अपनी पूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहनों, जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनते हैं। बहनों, सतत विकास लक्ष्य 5 इन मूल्यों को और मजबूत करता है। जब महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहनों, महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। वे बच्चों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देती हैं। इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती हैं, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत होती है। आइए बहनों, सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: बहनों, भारत में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है महत्वपूर्ण लखपति दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिक आय 1 लाख या उससे अधिक तक पहुँचाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य लाखों ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बहनों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय। बहनों, इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऋण सुविधाएं, बाजार से जुड़ाव और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। बहनों, लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अनेक महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस योजना ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। हालांकि बहनों, यह योजना अत्यंत लाभकारी है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच व तकनीकी ज्ञान का अभाव कई बार महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। बहनों, यह कहा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो लाखों महिलाएं अपने जीवन में समृद्ध और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख सकती हैं।
1: बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्ष

0: पूरे होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आप सभी ने अपनी दादी नानी मम्मी को जरूर सुनते हुए देखा होगा रेडियो, जिसको सुनने के बाद उन्हें सुकून महसूस होता था। तो आइए बहनों, हम बातचीत करते हैं अपनी दादी की नातिन श्रुति शर्मा से, दादी की याद में सुखद रेडियो के अनुभव।
1: नमस्ते, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। आकाशवाणी का जब भी नाम सुनती हूँ और अपनी दादी से पूछती हूँ कि उनके क्या अनुभव रहे हैं आकाशवाणी और रेडियो के साथ खास तौर पर, तो वो बताती हैं कि रेडियो मात्र उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो उनके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। पुराने समय में पूरे घर में एक ही रेडियो हुआ था और वो उसी को पूरा परिवार बैठकर उसके विभिन्न कार्यक्रमों को सुनता था। वो बताती हैं कि पुराने समय में विविध भारती के बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसमें कि फिल्मी गीत आते थे, और वो कहती हैं कि वो फिल्मी गीतों का इंतज़ार उन कार्यक्रमों का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया करती थी, जिससे वो नए फिल्मी गीत उस समय के सुन पाएँ। और वो बताती हैं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, उसमें समाचार, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी जानकारियाँ भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती थी। आकाशवाणी और रेडियो जो है उनके लिए ऐसा एक अनमोल याद है जिसका नाम लेते ही उनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई पड़ती है, जिससे उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो कहती हैं रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे रेडियो, और आज के समय में जो इंटरनेट, मोबाइल और मनोरंजन के और भी जो साधन चल रहे हैं, तो उसमें फ़र्क ये बताती हैं कि रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे मटके का पानी, और बाकी जो अभी चल रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल, ये साधन ऐसे हैं जैसे फ्रिज। तो मटके का पानी जो होता है उससे हम पिए तो बीमार नहीं पड़ते, वो ठंडक भी प्रदान करता है, मगर फ्रिज हमें ठंडक तो देता है, पानी भी ठंडा रखता है लंबे समय तक, पर उसमें ये भी रहता है कि वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारा गला बैठ सकता है और पर्यावरण को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो हाँ, मेरी दादी सभी गाने रेडियो पर ही सुना करती थी। जो भी विविध भारती के पहले शाम को प्रोग्राम आया करते थे, वो उनका कहती हैं कि वो उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी, और जब कोई और रेडियो लिया रहे तो वो उन सोचती थी कि ये कब हटे और मैं बैठूं रेडियो के सामने और अपना प्रोग्राम। बच्चे, बूढ़े, जवान, तो जो बूढ़े लोग हुआ करते थे बताती हैं कि वो समाचार और ये स्वास्थ्य शिक्षा की सभी जानकारियां लेते थे, और फिर जो अभी जवान लोग रहे थे जैसे वो खेल और बाकी जो विभिन्न समाचार उनको सुना करते थे, और जो फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे वो फिल्मी गीत और जो भी फिल्म अभिनेताओं वगैरह के जो साक्षात्कार इंटरव्यू आया करते थे उनको सुना करते थे, जिससे वो उस दुनिया से जुड़ पाएं।
0: आपकी दादी अपने आप को कैसे अनुभव किया करती थी रेडियो के साथ?
1: मेरी दादी जो हैं वो सभी प्रोग्राम, सभी तरीके के प्रोग्राम सुना करती थी। जब बच्चों का प्रोग्राम आया करता था तो वो बच्चा बन जाती थी, युवाओं में का प्रोग्राम आया करता था तो उनमें उत्साह और उमंग भर जाता था, और जब भी फिल्मी गीत आते थे तो वो उसी उस फिल्मों के प्रति इतनी उत्सुक हो जाती थी कि जैसे वो उसी सेट पर हो। तो सभी प्रोग्रामों को बड़े ही उत्साह के साथ सुना करती थी, चाहे प्रोग्राम कोई भी आए, रेडियो उनके लिए ऐसा साधन था।
0: दादी अब आपकी बोल नहीं पा रही हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा अनुभव करा दिया है उन्होंने रेडियो के बारे में कि आपको भी इच्छा होती होगी कि हम भी दादी के ज़माने में हुआ करते थे।
1: दादी मुझे सीख दिया करती हैं कि जो इंटरनेट और जो आजकल के साधन हैं इनको छोड़कर रेडियो भी सुना जाए, तो मैं भी कभी कभी रेडियो सुन लेती हूँ, और जो उसमें गीत आते हैं वो भी मैं कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। रेडियो ने बहुत प्रभाव डाला है, जो मतलब जेन जी जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है उसमें, वो भी कई बार सोचती है कि वो भी रेडियो सुने, मगर जो मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन है उनके जीवन का रेडियो और आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा

0: ये पूरी युवावस्था अपना बचपन बिताया है।
1: श्रुति जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं गीत।

मैंने बाजार में पुदीना खूब आ रहा है और पुदीना तो एक सुगंधित औषधीय पौधा है जिसका उपयोग भोजन, पेय पदार्थों और आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। इसके लाभ भी बहुत हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, मुख की दुर्गंध दूर करता है, सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, त्वचा के लिए भी लाभकारी है पुदीना। मैनो पुदीना कम कैलोरी वाला होता है। यह भोजन का स्वाद बढ़ाने का एक अच्छा प्राकृतिक तरीका है। इसीलिए बहनों आज हम लेकर आए हैं पुदीने की चटनी बनाने की आसान विधि, जिसके लिए सामग्री इस प्रकार है। एक कप ताजे पुदीने के पत्ते, आधा कप हरा धनिया, दो से तीन हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक से दो लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा, स्वादानुसार नमक, दो से तीन बड़े चम्मच पानी। मैंने बनाने की विधि इस प्रकार है। पुदीने और हरी धनिया को धो लें, फिर मिक्सर में पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालें, फिर इसमें नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाएं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर एक कटोरी में निकाल लें। लीजिए, तैयार हो गई आपकी पुदीने की हरी हरी चटनी, जिसका आनंद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी के साथ ले सकते हैं और रोज के खाने का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। अरे, ना, ना, ना।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत हैं नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध

0: देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है यार रहमान की आवाज़ में फिल्म तेरे इश्क में से।

इरशाद कामिल के लिखे बोल, ए आर रहमान का संगीत और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तेरे इश्क में से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से।

0: हनी बनी का संगीत सागर के लिखे बोल, नीति मोहन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण सत्र में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सेवा सत्र में आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही विदिशा मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
1: हम विचार कर रहे थे कि टाटा मेमोरियल यूनिट कैसे लाएं, तो दो चीजें आई, एक परमानेंट अस्पताल बनाना है, तो उसमें तो समय लगता है, लेकिन जिनको आज कैंसर है उनका क्या करें, वो इंतजार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल के, बाकी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेगी। सुविधाएं तत्काल मेडिकल कॉलेज विदिशा में हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये स्क्रीनिंग का, जाँच का और परामर्श का शिविर लगाया जाए, हम वो चीजें जो आज जरूरी कर लें। डे केयर सेंटर यहाँ टाटा मेमोरियल यहाँ शुरू करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।
0: प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में सभी जिलों में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में पालकगण आधार एवं सहमति पत्र के साथ उपस्थित होकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएंगे। अपार आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मंडला जिले में आज तड़के बीजा डांडी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं शाजापुर जिले में कल देर रात राष्ट्रीय

0: राजमार्ग 52 पर मजदूरों से भरी एक बस आगे चल रहे लकड़ी से लदे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कुशल रणनीतिकार और महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और शौर्य से मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल शासन को प्रभावहीन कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के ग्राम दाड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हरित पर्यावरण और स्वस्थ भविष्य के लिए औषधीय पौधे विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ नीमच के मेन्स क्लब में 25 जून को पेंशन अदालत एवं कल्याण एवं पुनर्वास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की नगर पालिका परिषद को वर्ष 2024-25 का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं कार्यालयीन उद्यान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और

0: 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो

0: के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक

0: शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश जहां आपको हम सुनाते हैं आपके पसंद के गीत और आपके पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। साथ है मोहम्मद अजीज़ और फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से। लिखा है हमारे श्रोता गनूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है जो कि है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोरा और काला और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कब्रुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की तरफ से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी हमें पत्र भेजा है। कोटरा नारायणपुर बाबापट्टी पलियास से हमें लिखा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दिव्या ने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की भी फरमाइश आई है। और इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीवी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के लिखे बोल, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप, और अगली फरमाइश हमें मिली है औरंगाबाद से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसके अलावा बनिया पारा धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, पूजा शरद और उनका पूरा परिवार। और इन्होंने फरमाइश की है जिस गीत की, वो है सलमा आगा की आवाज़ में फिल्म निकाह से। तो लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

रवि का संगीत हसन कमाल के लिखे बोल, सलमा आगा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निकाह से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपकी अगली फरमाइश को सुनने का, और वो है फिल्म नवरंग से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है हमें लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: सी रामचंद्र का संगीत, भरत व्यास के लिखे बोल, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नवरंग से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें अपने पत्र, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भोपाल की मध्य प्रदेश जनजाति

0: संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्यनाट्य का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा डॉक्टर C.R. मेहता से आज शाम 6:00 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम PM मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा शाम 7:45 पर। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00 बजे। 9:30 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 बजे सुनिएगा ऋषिकेश गंगुरडे का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी भोपाल है और लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लकी अली की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

राजेश रोशन का संगीत, इब्राहिम अश्क के लिखे बोल, लकी अली और रामिया की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कहो ना प्यार है से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म सरफरोश से।

जतन ललित का संगीत, समीर के लिखे बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सरफरोश से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाज़ में। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

जतन ललित का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खूबसूरत से। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का है। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में और फिल्म का नाम है मन।

संजीव दर्शन का संगीत, समीर के लिखे बोल। मन फिल्म से अभी आपने गीत सुना उदित नारायण की आवाज़ में। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्यार में कभी कभी।

0: विशाल शिराज और सम्राट का संगीत विशाल और राज कौशल के लिखे बोल, शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यार में कभी कभी से, और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दो निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। और मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान लोक।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम आपके बीच हैं वो है ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और अपशिष्ट प्रबंधन। आजकल चर्चा में है ग्रीन तकनीक हर जगह, और जब आवासों के निर्माण की बात आती है तो उसमें भी ग्रीन तकनीक का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। साथ ही बढ़ती आबादी के साथ अपशिष्ट का प्रबंधन भी जानना जरूरी है, और इस विषय पर जानकारी लेने हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है गौरव वैद्य जी को। गौरव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम विज्ञान लोक में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: बातचीत की शुरुआत करें हम, और जाने सबसे पहले तो इस बात को कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और क्या आशय है इसका।
1: धन्यवाद, मुझे फिर से आप लोगों ने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, कंसेप्ट की या परिकल्पना की, तो हमेशा से ये देखा गया है कि बिल्डिंग्स इट्सेल्फ, मैंने बिल्डिंग अपने आप में ही ऊर्जा का एक काफ़ी मात्रा में उपभोग करती आई हैं हमेशा से।
0: जी,
1: अगर हम विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्केल पर भी देखते हैं तो लगभग 30% ऊर्जा बिल्डिंग के निर्माण से लेके उसके रखरखाव, उसके परिचालन, ठीक है, उसी में ही उपयोग कर ली जाती है। तो हमेशा से जब ये देखा गया है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा जो उपयोग है, उपभोग है, बिल्डिंगें कर लेती हैं, तो 1960 से 70 के दशक के बीच में विश्व स्तर पर लोगों ने सोचना शुरू किया कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए कि भाई जो ऊर्जा का इतना सारा हम खर्चा करते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, उसको नियंत्रित करने का, सीमित करने का कोई तरीका हो सकता है क्या। समय के साथ जब लोग उसके बारे में सोचने लगे, 1962 में एक किताब प्रकाशित हुई थी।
0: हाँ हाँ।
1: उसका टाइटल था साइलेंट स्प्रिंग्स, जिसके लेखक थे रशेल कार्सन। यूएसए में ये किताब लिखी गई थी और पहली बार इसमें ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के ऊपर बात की गई थी कि बिल्डिंग्स को कैसे ग्रीन बनाया जाए या बिल्डिंग्स को किस तरीके से ग्रीन तरीके से उपयोग किया जाए। यहाँ पे ग्रीन शब्द का उल्लेख था ऊर्जा संरक्षण के लिए
0: जी,
1: और वहाँ से पहली बार इस शब्द का उद्भव हुआ। और समय के साथ चलते चलते फिर वो कि कैसे लोगों के बीच में उसकी जागरूकता आई, लोगों ने उसको समझा, लोगों ने समझा तो लोगों के समझने के बाद इंडस्ट्री जो थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माने इस पूरी की पूरी मकान बनाने वाले, बिल्डिंग्स बनाने वाले, बिल्डिंग्स को सर्विसेज देने वाले, बिल्डिंग्स को उपयोग करने वाले लोग, ठीक है, तो तमाम लोगों को उसके बारे में समझ आई और धीरे धीरे लोगों ने इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को स्वीकार किया।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट एक कॉमन कंसेप्ट के रूप में लोगों के बीच में आ गया।
0: जी,
1: मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में जो एक्सपेक्टेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहली बात वाटर एफिशिएंसी मिलनी चाहिए, माने सीमित मात्रा में पानी का उपयोग हो, ठीक है, जिससे पानी का अपव्यय कम से कम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी ऊर्जा का कम से कम उपयोग हो और ऊर्जा संरक्षण मिले।
0: जी,
1: तीसरी बात नेचुरल रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जैसे कि सूर्य प्रकाश को
0: जी,
1: या फिर ताजी हवा को इतना उपयोग करना है कि आपको सूर्य के प्रकाश के लिए या प्रकाश व्यवस्था के लिए और हवा के लिए आपको एनर्जी साधनों के ऊपर आश्रित रहना ना पड़े।
0: जी,
1: फिर उसके बाद यह है कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज कर सकते हैं जिससे हैवी मैन्युफैक्चरिंग को कम किया जाए, और जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण और तमाम तरीके के प्रदूषण है जो इंडस्ट्री से होते हैं वो भी कुछ हद तक कम होंगे। माने ये परकोलेशन ऑफ द आइडिया उस लेवल तक जाता है सर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी और सुगठित प्लानिंग है। हम आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग के मानक या स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे परखा जाता है कि ये एक ग्रीन बिल्डिंग होने जा रही है।
1: इसमें बेसिकली अगर मानक की बात करें या इसको एवेल्युएट करने की बात करें तो मुख्य मुद्दा यह है कि इन्वायरमेंटली साउंड अप्रोच को अडॉप्ट करना रहता है, जिसमें बिल्डिंग की लाइफ

0: आजकल पूरी की पूरी माने बिल्डिंग का प्लानिंग फेज, प्लानिंग के बाद उसका डिज़ाइनिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, डिमोलिशन, जितने भी स्टेजेस हैं सारी स्टेजेस के ऊपर पूरी की पूरी नज़र रखी जाती है। और उन सारी की सारी स्टेजेस के अंदर किस तरीके से ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हेल्थी लिविंग स्पेस और बेटर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। भारत में मुख्य तौर पर तीन ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स हैं। पहला कहलाता है ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट।
1: गृह
0: ग्रीहा
1: जी
0: जो गृह सिस्टम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरी, टेरी मीन्स द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के सहयोग से 2007 में बनाया था सर। और इसमें टोटल 34 क्राइटेरियाज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बिल्डिंग की प्लानिंग से लेकर डिमोलिशन तक के, तो
1: जी
0: उसमें तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं और 34 क्राइटेरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करके रेटिंग किया जाता है।
1: अच्छा
0: दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया या रेटिंग सिस्टम है वो है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये जो रेटिंग व्यवस्था है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII ने 2001 में हैदराबाद शहर में प्रस्तावित किया था, जो कि अमेरिका की लीड्स सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया, जो जनरल बिल्डिंग स्टैंडर्ड काउंसिल द्वारा दिया गया था, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, उससे प्रभावित है।
1: जी
0: और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही इस पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन को दिया जाता है, जो कि इवन US के क्राइटेरियाज के हिसाब से अनुमोदित है।
1: अच्छा
0: फिर तीसरा हमारा जो आता है क्राइटेरिया, या आपका कहलाता है BEE, ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी का,
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, उन्होंने ये 2009 में जो एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड के अपडेटेड वर्जन के साथ नए दिशा निर्देशों को देखते हुए 5-स्टार रेटिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया था,
1: जी
0: और उसके बेसिस पे पूरा रेटिंग देते हैं। मुख्य मुद्दा यही है इसमें कि ऊर्जा एवं पानी का संरक्षण, कचरा एवं प्रदूषण का प्रबंधन, निर्माण कार्यों एवं निर्माण योजना के लिए नवीन एवं कम प्रदूषण करने वाले मटेरियल का प्रयोग, तथा बेहतर इन्वायरमेंटल और अच्छी सेहत वाले विषयों को प्रमुखता दी जाती है।
1: बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि जब हम किसी बिल्डिंग की या भवन की रचना करते हैं तो उसकी डिज़ाइन या मटेरियल सिलेक्शन में या उसमें किस तरह से हम एक इनोवेशन या नवीकरण ला सकते हैं या उसका ध्यान रखते हैं।
0: अगर देखा जाए तो प्लानिंग स्तर से ही इसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाते हैं। बिल्डिंग के सभी पहलुओं के ऊपर विचार किया जाता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है तो कृत्रिम लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े।
1: जी
0: सभी जितने भी हमारे लिविंग स्पेसेस हैं, माने रूम्स कह लें हम, वहाँ पर एयर सर्कुलेशन, हवा का प्रवाह इतना बेहतर हो कि किसी भी परिस्थिति में आपको जहाँ हवा का प्रवाह बेहतर मिलना शुरू होगा, वहाँ पर आपको जो कृत्रिम हवा के इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने की ज़रूरत कम हो जाएगी, या उसकी इफ़िशियंसी को कम करके चला सकेंगे आप,
1: बिल्कुल
0: तो वो चीज़ें। साथ ही साथ फिर दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, बरामदे कैसे हों, सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को कैसे प्रयोग करें। फॉर एग्जांपल हमारे संस्थान में भी पानी को गर्म करने के लिए हम लोग सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं, सोलर पैनल लगा के पार्किंग में हम लाइट जलाते हैं। तो कई सारे छोटे छोटे प्रयोग हमारे संस्थान में हम लोगों ने खुद शुरू किए हैं, भोपाल के
1: जी
0: कई सारे गवर्नमेंट संस्थाओं में भी वो प्रयोग शुरू किए गए हैं। जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें हम, ग्रीन बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल ब्रिक्स नाम से ब्रिक्स आ रही हैं, जो इस तरीके की ब्रिक्स होती हैं कि वो मॉइस्चर को इस तरीके से मैनेज करती हैं कि ठंड में थोड़ा सा गर्माहट, गर्मी में थोड़ा ठंडक का माने आपको अनुभव हो। जो सेरामिक टाइल्स वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं, तो मैग्नीशियम क्रोमाइट का और टाइटेनियम ऑक्साइड का एक MgCr2O4 एंड TiO2 सेरामिक टाइल्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं। ये पोरस टाइल्स हैं,
1: हाँ
0: पोरस
1: हाँ
0: स्ट्रक्चर्ड टाइल्स हैं। इनका भी यही है कि ये कम से कम प्रदूषित करते हैं, और टेम्परेचर, थर्मल इफिशियंसी इनकी बहुत अच्छी है।
1: अच्छा
0: साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक नया माने कंसेप्ट है इसमें, अर्थ टनल एयर कूलिंग सिस्टम, कि आपके कंक्रीट के या आपके सीमेंट के, आपके अलग अलग पाइप के नेटवर्क 3-4 मीटर आपके फ्लोर लेवल से नीचे, और फिर उसके बाद अलग अलग लेयर पे अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर बना के
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि AC का जो आपका बिल है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, क्योंकि ठंडा पानी जो प्रवाहित होता है वो टेम्परेचर को वैसे ही कम कर देता है रूम के, तो इस कारण से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन ये है, ये बिल्डिंग स्केल के ऊपर ज़्यादा सक्सेसफुल है, हाउस होल्ड लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी इसको और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ विकसित करने की और ज़रूरत है।
1: जी जी
0: एक लास्ट चीज़ मैं आपके साथ जो इसमें थोड़ा

0: माने शेयर करना चाहूँगा। एक 2010 में कंसेप्ट आया है नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का मतलब यह है कि एनर्जी को ऑलमोस्ट ऑप्टिमम लेवल तक ऐसा कंज्यूम करें कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसी से सब कुछ ऑपरेट हो, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। तो ये हमारा आगे का भविष्य है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे।
1: जी जी।
0: अगर भोपाल के स्तर पर मैं देखूं तो जितने भी नए संस्थान बन रहे हैं उनमें बनने वाले नए बिल्डिंग्स में ये सारे के सारे आस्पेक्ट के ऊपर प्रयत्न किया जा रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि इस स्तर पर प्रयत्न होता है तो आगे वाले समय में काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हो पाएंगे।
1: जी, अब एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो कचरे और अपशिष्ट का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, तो इसमें क्या कुछ हो रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और हमारे शहर भोपाल में?
0: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत कुछ हो रहा है। कचरा का जनरेशन माने आपके जो जहाँ से कचरा निकलता है, चाहे हमारे घर हों, दुकानें हों, संस्थान हों, इंडस्ट्री हो, तो सोर्स सेग्रीगेशन शुरू हो चुका है।
1: जी
0: ठीक है, गीला कचरा, सूखा कचरा हम लोग सुनते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट, उसके बाद मेडिकल वेस्ट या आपका ई वेस्ट, सबको अलग अलग लेवल पे एकत्रित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कुछ हद तक उसमें हमें कामयाबी मिल भी रही है। फिर उसके बाद ये सेग्रीगेशन होने के बाद ट्रांसफ़र करते समय भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो अलग अलग ही जाएं, ताकि उनका रिसाइकल या रीयूज़ के लिए कहीं कोई उपयोग संभव हो सके और ट्रीटमेंट करते समय उसमें कुछ आसानी मिले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अगर हम बात करें तो नेशनल और स्टेट और लोकल माने शहरी स्तर पर हर स्तर पर बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016
1: जी
0: ठीक है प्रकाशित हो चुके हैं। कई सालों से ये हम पुराने जो रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारी जो तकनीकी संस्थाएं हैं उन्होंने नए रूल बनाए हैं जो ज्यादा प्रासंगिक है आज की जरूरतों को देखते हुए। और उन सारे रूल्स के अंदर किस तरीके से जहां पर कचरा जनरेट हो रहा है, जहां कचरा आ रहा है, वहीं से जैसे घरों से हमारे या दुकानों से, संस्थाओं से, इंडस्ट्री से, वहीं पे उसको कैसे सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेट करके किस तरीके से उसको इकट्ठा करके हम रिसाइकलिंग रीयूज के लिए हम उसको भेज सकते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके उसमें से कुछ डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से उसको साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें भोपाल के परिप्रेक्ष्य में तो भोपाल में सालों से भानपुर खंती के ऊपर सिर्फ डंपिंग हुआ करता था और उस डंपिंग के कारण वायु प्रदूषण भी हुआ।
1: जी,
0: वहाँ की जमीन का ग्राउंड लेवल है उसके अंदर सॉइल का कंटेमिनेशन हुआ
1: जी।
0: उसके साथ ही साथ आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका कंटेमिनेशन हुआ, तो हर एक तरीके से वहाँ पे प्रदूषण फैला। ठीक है, तो जैसे आदमपुर छावनी में साइंटिफिक लैंडफिल साइट प्रपोज किया गया है
1: जी।
0: और ये साइंटिफिक लैंडफिल साइट के अंदर जो लैंडफिलिंग होगा वो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक होगा, जो कम से कम प्रदूषण करेगा और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कचरे को डिस्पोज करने का कैपेसिटी रखेगा।
1: अच्छा, तो वैसे ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसमें किस तरह की नई तकनीक और प्रयत्न आजकल आए हैं सामने?
0: अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर बहुत सारे नए इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो आपका चाहे सेग्रीगेशन, स्टोरेज, रिसाइकल और रीयूज़ के आइडिया को ध्यान में रख के एक सोर्स रिडक्शन अप्रोच अडॉप्ट की गई है। सोर्स रिडक्शन अप्रोच का मतलब यह है कि सोर्स के ऊपर आपका जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है उसको मिनिमाइज कैसे करें।
1: जी
0: ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमशन लेवल पर ही उसको कम करना चाहते हैं, जहां से आपका इंडिविजुअल कंज्यूमशन होता है और फिर उस हिसाब से आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, तो उस लेवल पे उसको कैसे कम कर सकते हैं और रीयूजेबल और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें।
1: जी,
0: तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो इसमें पूरा बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली आपका कचरे का जो टोटल जनरेशन है वो कुछ कम हो जाता है। दूसरा, अगर कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन के अंदर मोशन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आजकल इंट्रोड्यूस हुई हैं, उसमें जीपीएस की मदद से पूरा का पूरा कलेक्शन का जो मूवमेंट है, मोशन है, उसको मैनेज किया जाता है कि भाई कौन सा रोड पे से कचरे वाला गाड़ी कितने बजे से कैसे गुजरेगा, उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन से कचरा कलेक्ट करके दूसरी जगह जाके फिर ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्पोजल लोकेशन, हर जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा, कौन सा रूट के ऊपर भीड़ ज़्यादा है, कौन सा रूट उसका प्रेफर्ड रूट होगा, तो वो पूरा जीपीएस से गाइडेड रहेगा। बहुत माने बेहतर तकनीक है ये। साथ ही साथ जो रिमोट मॉनिटरिंग और कलेक्शन इफिशियंसी टेक्निक, जिसमें एक हमने छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट किया था गुजरात में, जिसमें कि हम लोगों ने हाउसहोल्ड लेवल पर बारकोड्स लगाए थे लोगों के दरवाजों के ऊपर।
1: अच्छा।

0: और बारकोड्स के साथ हमारे जो वेस्ट कलेक्टर रहते थे, कचरा लेने वाले जो लोग रहते थे, वो उसका हमेशा सिग्नल माने सेंसर से, उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता था, तो इंस्ट्रूमेंट से सेंसर से उसका पिक लेते थे, और वो पिक लेते बराबर हमारे सर्वर में मेन ऑफिस में आ जाता था कि इस घर में से कचरा उठा लिया गया है। तो हर एक घर का यूनिक बारकोड डेवलप करके उस घर के साथ एसोसिएट किया जाता था
1: जी।
0: और उसमें घर वालों के सेफ्टी सिक्योरिटी के फीचर्स भी रखे थे हमने कि हमारे कचरे वाले लोगों से कभी किसी को कोई सुरक्षा का कोई भय न रहे
1: जी।
0: साथ ही साथ कचरा इकट्ठा हो गया है उसकी जानकारी हमारे पास तुरंत की तुरंत पहुंचे। अगर किसी घर से कचरा लेने वाला नहीं गया है तो हमारे सर्वर में तुरंत पता पड़ जाता था कि इस घर से आज कचरा नहीं लिया गया है।
1: अच्छा।
0: और फिर कचरा जब इकट्ठा कर लिया है तो नेबरहुड लेवल से लोकल एरिया लेवल तक, माने अपने नेबरहुड लेवल से वार्ड लेवल तक, वार्ड लेवल से जोन लेवल तक पूरा मॉनिटरिंग उसमें हो सकता था। तो इस तरीके के कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बड़ी स्केल पर, सिटी स्केल पर लाने के लिए इसे हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो इनको कहते हैं हम हमारी भाषा में एनवायरमेंटली साउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटली साउंड टेक्निक्स।
1: अच्छा
0: जी।
1: और आने वाले समय में जो भारत का रूप है तकनीकी रूप से, और जो आपका क्षेत्र है खासतौर पर आर्किटेक्चर, कैसा पाते हैं आप?
0: मैं तो बहुत ज़्यादा माने ब्राइट देखता हूँ हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में बेहतर होने की, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में भी बहुत तुलनात्मक रूप से इम्प्रूवमेंट आया है, इनोवेशंस को लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एक जो चीज़ मैं देखता हूँ हमारे लिए एक्चुअल चैलेंज है वो ये है कि हमारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखकर हम अफोर्डेबल आस्पेक्ट के ऊपर उनको कैसे संसाधन दिला सकते हैं। अगर हम अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस कर पाए तो विश्वसनीयता, तकनीक, योग्यता, बाकी पैमानों पर हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे मुझे लगता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी गौरव वैद्य साहब, ग्रीन बिल्डिंग तकनीक के बारे में और उससे जुड़ी हुई कई और बातें, खासतौर पर अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। इन सारी जानकारियों का और आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत है आपके लिए उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हलचल।

नदीम श्रवण का संगीत समीर के लिखे बोल, शान और साधना सरगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हंगामा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है। माफ़ कीजिएगा, गीत भी आपने सुना उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ में फिल्म हलचल से, जिसका संगीत दिया था विद्यासागर ने और बोल लिखे थे समीर ने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाएंगे उसे आवाज़ दी है शान और साधना सरगम ने। फिल्म का नाम है हंगामा।

नदीम श्रवण का संगीत, समीर के लिखे बोल, शान और साधना सरगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हंगामा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म है छुप छुप के।

0: ये मैं शीशा मियाँ का संगीत, समीर के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चुप चुप के, और इसी चुप चुप के से और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की पहली कड़ी।
1: प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: यशवंत, क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
0: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए, मगर पर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
1: यही सवाल शंभू काका, ठीक यही सवाल मुझे हर पल झकझोरता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो, गोद में खेलने वाले बच्चों को दूध की एक बूंद भी ना मिले, पिचका पेट और उघड़ा बदन लिए घूमने वालों के लिए भला इस आजादी का क्या महत्व काका?
0: दुख तो इस बात का है बेटा कि हमारे नेता भी हमारी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, बस जुलूस सभाओं में गाल बजाते हैं और भूखी नंगी जनता की तालियां बटोर कर खुद की पीठ थपथपाते हैं।
1: अब इस साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका, कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है?
0: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
1: हाँ काका,
0: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
1: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
0: हड़ताल तो यूनियन करती है,
2: हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है।
0: मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं।
1: हाँ?
0: पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
1: क्या
0: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
1: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है, क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका, मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
0: बेटा, तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।
1: हाँ? मैं कुछ समझा नहीं काका।
0: कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है, अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
1: लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है, वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग

0: हम मजदूरों के हित में नहीं होता।
1: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
0: हाँ?
1: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है, सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
0: ओह, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
1: सच? जरा बता दो क्या समझा।
0: देखो काका, मैं मानता हूँ कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है। कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं, लेकिन काका यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता। अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
1: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
0: काका अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं। लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
1: भाई आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
0: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं। अब काका आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ,
1: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का, तेरा जोश देखकर उम्मीद बंधी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन।
0: हाँ काका।
1: तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है। तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
0: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब आपकी योजना क्या है?
1: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है। यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
0: तो फिर काका?
1: फिर क्या, अगर राम बहादुर को यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा। अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है। दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
0: सच काका, सच? लेकिन काका, क्या यूनियन इस बात के लिए सहमत होगी?
1: भाई इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ इतना जरूर है कि कोशिश करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है। लेकिन जसवंत,
0: हाँ काका,
1: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा है?
0: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा। आज हम अपने हालात के सामने विवश हैं, लेकिन काका कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
1: ठीक है बेटा। अरे वाह, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। हाय हाय हाय हाय, और फिर पानी में नहाती हुई परी, इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
2: हाय भैया, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती, फिर ये बिजली जैसी क्या चमकी? लगता है कोई भूत प्रेत है, यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए। हम आप कौन हो बाबू? पराई नारी को नहाते हुए छुप छुप कर देखते हो, आपको लाज नहीं आती?
1: अरे ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना, पानी में खड़ी हुई तो किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो। जरा तेरी कुछ तस्वीरें खींच लूँ।
2: आप मेरी तस्वीरें खींचेंगे बाबू? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं।

0: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई। शहर से घूमने आया हूँ यहाँ।
1: मैनेजर के छोटे भाई हैं आप?
0: हाँ, क्यों मेरी बात का विश्वास नहीं?
1: लेकिन बाबू, आप मेरी तस्वीरें क्यों लेना चाहते हैं?
0: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, बस जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
1: बाबू, आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाई देना।
0: हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा।

0: আচ্ছা, আপনারা মেজদার দেখো, আপনারা দূষিতার ঘুমো, আর যারা মেরি তরফ দেখে মুস্কুরা, আর থোড়া বেহ কর দোনো হাত উধার করো, कितनी तस्वीरें बात है, जरा नदी से बाहर तो निकलो,
1: बड़ी बेशरम है आप, अपने सामने ही मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे?
0: कमाल है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे ही बाहर निकलना चाहती थी।
1: तब की बात और थी।
0: अच्छा।
1: तब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अच्छा बाबू, चलो तुम मुंह घुमाकर खड़े हो जाओ।
0: अच्छा अच्छा, समझ गया, लो लो मैंने ये मुंह घुमा लिया।
1: देखो, जब तक मैं ना कहूँ इस ओर मुंह ना करना।
0: जो आज्ञा देवी जी।
1: आपने आपने मुझे देवी जी कहा?
0: आपने नाम तो बताया नहीं, तो देवी जी भी कहना पड़ा।
1: मेरा नाम नारायणी है बाबूजी। बाबूजी, अब आप मेरी ओर घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
0: अच्छा अच्छा, चलो मैं घूम गया। भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नारायणी। यानी देवी, सौंदर्य की देवी यानी नारायणी। सच नारायणी, तुम बहुत सुंदर हो। एक बात पूछूं नारायणी?
1: हाँ पूछिए बाबू जी।
0: तेरा ब्याह हुआ कि नहीं पता ना नारायणी, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: क्यों पूछ रहे हैं आप?
0: पहले बताना, बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: हो गया।
0: क्या?
1: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
0: अच्छा नारायणी, ये तो पता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
1: वो भी इस दुनिया में अकेला है बाबूजी, मजदूरी करके अपना पेट भरता है।
0: अच्छा अच्छा, एक बात और बता, क्या वो तुझे पसंद है?

0: बेटा यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तू तो उसे जानता है ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका।
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका, आखिर यहाँ के मजदूरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
0: भूख बेटा, भूख। भूख ही वो कारण है जो जीते जागते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका, तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका, इस साइट का अब कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा, जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका, एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका, सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।
0: अरे हाँ, यूनियन के नाम पर अच्छा याद दिलाया। अगले महीने की 10 तारीख को यूनियन की आम सभा बुलाई है। राम बहादुर की यूनियन की वर्दी उतरना निश्चित है। यूनियन में तेरा नाम शामिल करवाने का

0: अगर ये मौका हम चूक गए तो फिर ऐसा सुनहरी अवसर फिर कभी नहीं आएगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शंभू काका, हमें इस मौके को हर हाल में भुनाना है। काका, जब तक यूनियन में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक उनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती।
0: मैं तेरी बात से सहमत हूँ यशवंत।
1: काका, आप एक काम कीजिए, आप सभी दलित मजदूरों को आम सभा में उपस्थित रहने के लिए कह दीजिए।
0: ठीक है।
1: यूनियन में दलित मजदूरों को आज तक जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, इस बार हम अपना वो अधिकार लेकर रहेंगे।
0: दलित मजदूर तो एक है यशवंत, इसके अलावा मैं दूसरे मजदूरों का मन भी टटोलता हूँ, शायद उनका समर्थन भी हमें मिल जाए।
1: और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा काका।
0: और हाँ, लिचू भी हमारे साथ है। अब कामयाबी अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकती।
1: काका, तब तो समझो कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी और काम का पूरा भुगतान तुरंत करने का नियम भी जल्दी बन जाएगा। और काका, तब कोई भूख से नहीं मरेगा, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे सभी मजदूर भाई खुशहाल होंगे। काका खुशहाल।
0: तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे ऐसा शुभ दिन जल्दी आए।
1: हाँ काका।
2: मेरी नारायणी, कैसी होगी मेरी नारायणी, मेरी जीवन संगिनी। सोचा था उसके माँ बाप की मौत के तुरंत बाद उसे घर ले आऊं, मगर क्या करता मैं, उन दिनों बेकार जो था, अपना पेट भरना ही मुश्किल था, उस बेचारी का कहां से भरता। वो सोचती तो जरूर होगी कि संकट की घड़ी में उसका मर्द भी उसके किसी काम नहीं आ सका। बेचारी मजूरी कर रही है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप तो गरीबी और भूख है। अगर गरीबी और भूख ना रहे तो धरती पर पाप का बोझ ही क्यों बढ़े। ठीक है, अब मैं इस बीमार गरीब ब्राह्मण की देखरेख का काम कर रहा हूं, मगर इसके पास मुझे देने के लिए है भी क्या। बेचारा आप ही कई कई दिनों तक भूखा रहता है, मैं उसे यूं भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन उसकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मगर नारायण, अगले महीने ही तो गौना करवाना है, जबकि मेरी गांठ में तो फूटी कौड़ी तक नहीं। अरे कैसे होगा ये सब।

0: लगता है ब्राह्मण जा गया है, उसे प्यास लगी है, मैं जाकर उसे पानी पिलाता हूँ। ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मण महाराज, महाराज
1: बेटा
0: लीजिए, आप पानी पीजिए, लीजिए लीजिए,
1: लाओ बेटा
0: लीजिए।
1: भगवान तुझे लंबी आयु दे बेटा।
0: महाराज
1: बेटा तू मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा।
0: ब्राह्मण महाराज आपके साथ मेरा भी खाली समय कट जाता है। महाराज एक बात समझ में नहीं आई।
1: कौन सी बात बेटा?
0: महाराज आप रहने वाले तो इलाहाबाद के हैं।
1: हाँ
0: आपका भरा पूरा परिवार है, फिर आप यहाँ आकर अकेले क्यों रह रहे हैं?
1: यह एक दुख भरी कहानी है शिबू बेटा।

0: जब से मुझे ये निगोड़ी टीबी की छूत की बीमारी लगी है बेटा, तब से मेरे अपने सगों ने मुझे टुकरा दिया है। सगों के सामने तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि कहीं दूर एकांत में अपने अंतिम दिन व्यतीत।
1: आपको तो बहुत तेज खांसी हो रही है। आप रुकिए, मैं आपको पानी देता हूँ। ये लीजिए, पानी और पीजिए। ये लीजिए,
0: बैठा रहो।

0: महाराज आपके बलगम में तो खून भी है।
1: शायद मेरी बीमारी अंतिम चरण में है बेटा।
0: महाराज महाराज
1: बेटा बेटा
0: जी महाराज
1: एक बात बताएगा?
0: जरूर जरूर पूछिए महाराज।
1: बेटा क्या क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता?
0: महाराज भला मैं आपसे क्यों डरने लगा?
1: बेटा तू मेरे कपड़े धोता है, मेरी गंदगी साफ करता है, तुझे किसी टीबी हो सकती है बेटा। इस भयानक बीमारी से तू नहीं डरता क्या?
0: ब्राह्मण देवता, हम गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है। ये टीबी जैसी छोटी छोटी बीमारियों से क्या डरना?
1: तू ठीक कहता है शुभो बेटा। बीमार इंसान तो फिर भी कुछ दिन जी लेता है बेटा, लेकिन लेकिन भूखा इंसान ना ना ना ना, भगवान किसी को भूख का रोग ना दे बेटा।
0: हाँ महाराज ठीक कहते हैं आप,
1: भूख का रोग ना दे।
0: महाराज महाराज समझिए, महाराज आपकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज अब आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। समझिए समझिए महाराज।
1: हाँ बेटा मेरी सांस कब रुक जाए बेटा, कोई भरोसा नहीं। मैं बेटा तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ।
0: महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का स्थान देवताओं के बराबर होता है। देखिए महाराज विनती करके आप मुझे नरक में ना धकेलिए, आप मुझे आदेश दीजिए।
1: बेटा बेटा तुझे ध्यान होगा कि जब मैं 3 दिनों से भूखा था तो तूने मुझे अपने घर से रोटी लाकर खिलाई थी।
0: हाँ महाराज मुझे अच्छी तरह याद है,
1: मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बेटा तू इस बात का कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा, इस बात का भी नहीं कि मैं तेरे हाथ का पानी पीता था। हाँ बेटा।
0: ब्राह्मण महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।
1: बेटा बेटा ये नहीं पूछेगा कि ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं।
0: इसमें पूछने की क्या बात है महाराज?
1: तू तो बहुत समझदार है ऋषभ।
0: महाराज आप किसी भी तरह की चिंता न करें, अपमान का घूंट पीना तो हम दलितों के लिए रोजमर्रा की बात है। महाराज मैं आपके सम्मान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज।
1: जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा।

0: क्या बात है नारायणी, तो रो क्यों रही है?
1: बसुमती काकी, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
0: कौन चला गया? वो चौधरी?
1: हाँ काकी, हाँ, उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उसकी अमीरी की चमक समक से मैं इतना खो गई कि कुछ कुछ होश ही नहीं रहा। होश तो तब आया जब उसकी शादी की बात सुनी।
0: क्या?
1: हाँ काकी, वो अपना ब्याह करने गया है। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा काकी?
0: नारायणी, ना, अभी रोना धोना बंद कर। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बाबू बाबू के चक्कर में ना पड़। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। नारायणी, उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है।
1: कैसे भूल जाऊं काकी, कैसे भूल जाऊं?

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार का भाग एक। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन

0: अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज दोपहर भोपाल विधानसभा में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, जंगलों में घूमना, नदी पहाड़ों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगेगा जब आपसे ये सभी चीजें और आपका अधिकार छीन लिए जाएं? जाहिर है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें वापस पाना चाहेंगे। ऐसा हुआ भी है, कब और कहां जानते हैं आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जान देकर आदिवासी समाज को नई राह दिखाई। उनका नाम है बिरसा मुंडा। वो झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गाँव में 15 नवम्बर 1875 को एक मुंडा परिवार में जन्मे थे। बिरसा बचपन से ही बहुत समझदार और साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को करीब से देखा। आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति खोते जा रहे थे। बिरसा ने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक महान विद्रोह उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमारी जमीन हमारी है, हमें अपना धर्म और संस्कृति बचानी है। बिरसा ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था अबुआ राज, मतलब हमारा राज। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक हो गए। इससे अंग्रेज बहुत घबरा गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून वर्ष 1900 को उन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के बाद भी आदिवासी आंदोलन और मजबूत हुआ। बिरसा मुंडा का बलिदान हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर हम एक होकर लड़ें तो अन्याय हार जाता है। आज झारखंड राज्य बनाने में भी बिरसा की प्रेरणा काम आई। उन्हें धरती आबा, मतलब पृथ्वी का पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी का बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहो। उनकी याद में हम भी आज अपनी जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षा लें, एकजुट और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें। और दोस्तों, अब श्रेया घोषाल की मीठी और सुखविंदर सिंह की दमदार आवाज में आपको

दोस्तों, क्या आपने सीड योजना के बारे में सुना है? सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारी

0: एकता मंत्रालय ने शुरू किया था। डीएनटीज का मतलब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। ये वो समुदाय हैं जो सदियों से घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अच्छे घर से दूर रहे। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सीड योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इन समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वे सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे समूह बनाकर रोजगार और आजीविका शुरू करवाई जाती है, जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन। समुदाय को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से हजारों युवा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा रहे हैं, परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और कई लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोस्तों, सीड योजना हमें बताती है कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। जो छात्र इस समुदाय से हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोचिंग के लिए आवेदन करें। सीड योजना देश के हर नागरिक को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, अब दीपांजलि त्रिपाठी से जानते हैं डीएनटी समुदाय के लिए सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समुदायों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। अगर हम कुछ मुख्य योजनाओं की बात करें तो धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। ये अभियान करीब 63,000 आदिवासी गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये खास तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTG के लिए है। इसमें घर, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस किया गया है। हजारों घरों में बिजली पहुंची, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई, वन धन केंद्र बने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचाई गई। हर स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इससे लड़के लड़कियों दोनों को फायदा हुआ। कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास शिक्षा और विदेश पढ़ाई के लिए लाखों आदिवासी छात्र इससे पढ़ पा रहे हैं। वन धन योजना में जंगल की चीजों, महुआ, हल्दी जैसे कई चीजों को बेचकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाखों आदिवासी परिवारों की आय इससे बढ़ी है। दोस्तों, ये योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची हैं। शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लड़कियों की पढ़ाई सुधरी, कई गांवों में बिजली पानी पहुंचा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, वन धन से लाखों लोगों को आय का नया जरिया मिला, पीएम जन मन ने 48 लाख से ज्यादा PVTG लोगों को छुआ। फिर भी चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता कम होना, दूर दराज के इलाकों में पहुँच मुश्किल होना और पूरा फायदा न मिलना। सरकार बजट बढ़ा रही है लेकिन निगरानी और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आदिवासी हमारी संस्कृति की जड़ है। इन योजनाओं से वो मुख्य धाराएं में आएंगे तो देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी भर्तियां चल रही हैं, जिनमें हजारों पदों पर आवेदन का मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे जिनके फॉर्म

30 जून 2026 तक भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोजगार समाचार। पहली है एसएससी सीजीएल 2026। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर 12,256 से भी ज्यादा पद हैं। ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसमें विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है। आवेदन ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगली है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 11,127 पद हैं और ये रेलवे की बड़ी भर्ती है। आईटीआई डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विभिन्न कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डिप्यूटेशन के आधार पर सीनियर कंसल्टेंट, डिजास्टर मैनेजर जैसे कई पद हैं। इनमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून और 30 जून 2026 विभिन्न पदों के अनुसार है। आवेदन आधिकारिक एनडीएमए पोर्टल पर किया जा सकता है। अगली है नालको नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल। इसमें 268 पद ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फोरमैन आदि के हैं। 10वीं आईटीआई डिप्लोमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 है। nalcoindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें 660 से भी ज्यादा विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 है। इनके अलावा यूपीएससी में विभिन्न पद इंडियन नेवी, अग्निवीर, कोंकण रेलवे, एसबीआई अपेरेंटिस के भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल आरआरबी एएलपी जैसी बड़ी भर्तियों में जल्दी आवेदन करें क्योंकि बाद में सर्वर का भारी लोड होता है। डेप्यूटेशन वाली एनडीएमए भर्तियां अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ ध्यान से पढ़ें। इनमें योग्यता, आयु सीमा, फीस, इन सभी का ध्यान रखें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फीस समय पर जमा करें। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जल्दी आवेदन करें और तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए या किसी खास भर्ती के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। तो रोजगार समाचार में आज इतना ही और आपको अपनी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का। तो आपको सुनाते हैं इंद्रधनुष का ये पहला गीत जावेद अहमद की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कवि हेमंत देवलेकर,
6: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
7: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ओमकारा फिल्म से। राहत फतेह अली खां की आवाज़ है, गुलजार की शब्द रचना, संगीत विशाल भारद्वाज का।

अगला गीत आरक्षण फिल्म से लिया है, जिसे गाया श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अंतरा मित्रा और मोहित चौहान की आवाज़ों में है, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम का है। इस गीत को हमने लिया राजनीति फिल्म से।

0: मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे राजनीति फिल्म का गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का,
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

भारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानीज एवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता। विषय है कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सी आर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की है चंद्रशेखर शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी अपनी गौरवमय और स्वर्णिम प्रसारण यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हमारे श्रोता जानते हैं कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी पर नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई थी।

0: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सूचना शिक्षा मनोरंजन, इन सब बातों को लेकर कार्यक्रमों के माध्यम से जनहित के लिए जो कार्य किए जाने हैं आकाशवाणी उसमें अपना पूरा योगदान शिद्दत के साथ निभा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज़ादी के वक्त तो हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद GDP उसका आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे कृषि क्षेत्र से ही आता था और इस सफ़र के दौरान जब केवल आकाशवाणी अकेला सरकारी माध्यम हुआ करता था आकाशवाणी ने किसानों तक नई तकनीक आधुनिक उपकरण और नई नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियां पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने विभिन्न कार्यक्रमों विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा ग्राम सभा और कृषि चर्चा और किसानवाणी जो LRS के लोकल रेडियो स्टेशन के माध्यम से जिसने स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करके उन तक कृषि के नए नए उपादान नई नई तकनीक पहुंचाने का और ग्रामीण विकास के लिए एक सार्थक कार्य करने की भूमिका निभाई है। आज इस प्रसारण यात्रा के संदर्भ में ही हम एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर CR मेहता जी जो डायरेक्टर हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल में और कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान इस विषय पर आज हमसे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसे कि आज का विषय है कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान, आकाशवाणी की एक लेगेसी रही है, लंबी यात्रा रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी का कृषि विकास या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान है इसको किस प्रकार से आंकते हैं।
1: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बधाई देता हूं कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप सभी आकाशवाणी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। जहां तक कि कृषि विकास में आकाशवाणी का योगदान है उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आज से करीब 40 साल पहले या 45 साल 50 साल पहले
0: जी
1: तब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, आकाशवाणी ही एक माध्यम था,
0: अकेला माध्यम था,
1: चाहे वो कृषि से संबंधित जानकारी की जरूरत हो या आपको देश में क्या हो रहा है राज्य में क्या हो रहा है उसके बारे में सूचना की जानकारी का सवाल है
0: जी।
1: तो उसमें पहले एक रेडियो हुआ करते थे और रेडियो भी इस प्रकार के होते थे कि पहले बटन ऑन करो थोड़ी देर बाद उसमें से आवाज़ आती थी
0: जी।
1: फिर बाद में वो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे
0: जी।
1: पहले बड़े ट्रांजिस्टर होते थे फिर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आए और अब आजकल बहुत छोटे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल में भी आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हो
0: जी।
1: शुरुआत की बात करें तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे
0: जी।
1: तब हम कृषि की तो बात नहीं सुनते थे लेकिन जब भी विविध भारती गीतमाला प्रोग्राम आता था तो उसको हम अक्सर सुनते थे और उसमें ये देखते थे कि इस बार कौन सा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर कौन सा गाना है, वो गाने की रैंकिंग वगैरह करके सभी गानों को बजाया जाता था
0: जी।
1: और वो रैंकिंग होती थी, उस प्रकार के कार्यक्रम होते थे
0: जी।
1: दूसरा मुझे अभी भी याद आ रहा है, अगर पुरानी बातें मैं सोचता हूँ तो तीसरा वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो हुआ था
0: जी
1: इंग्लैंड में हुआ था
0: जी
1: 1983 में
0: जी।
1: और उस समय TV उस समय खास तौर से मैं जिस जगह पर था नहीं आए थे, भारत में कुछ बड़े शहरों में उस समय TV आ गए थे,
0: उस वक्त शुरुआत मानी जाती
1: जी जी
0: एक व्यापक।
1: तो उस समय हमें जब पता चला कि भारत फाइनल में है बड़ा क्रेज था तो हमने आकाशवाणी के थ्रू ही उसकी कमेंट्री सुनी थी और वो कमेंट्री रात को देर तक सुनी थी और भारत जीत गया था
0: जी।
1: तो उस प्रकार से हम आकाशवाणी से शुरू से जुड़े रहे हैं। जब कृषि की बात करें तो जब से हमने कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री की उसके बाद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में एज ए वैज्ञानिक ज्वाइन किया उसके बाद आकाशवाणी की तरफ से हमें आमंत्रण मिला कि आप कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी दें किसानों को, तब हमें कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी देने का अवसर मिला। और आजकल तो आकाशवाणी के साथ बहुत सारे दूसरे मीडिया भी हैं जिसके थ्रू किसान कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं
0: जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले रेडियो पर जो हमारा वर्ल्ड कप भारत टीम जीती थी 1983 में
1: जी।
0: कपिल देव की कप्तानी में और बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और भारत में पूरा खेल सिनेरियो जो चेंज करने का है उस जीत को श्रेय जाता है।
1: जून का महीना था शायद 21 तारीख या 23 तारीख।
0: हम सर ये जानना चाहते हैं कि जो आपने पहला प्रोग्राम दिया आपके जहन में अभी भी ताज़ा होगा कि पहला प्रोग्राम किस विषय पर था या किस केंद्र पर आपने दिया था।
1: मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी

0: भोपाल में ही दिया
1: जी,
0: आकाशवाणी के
1: आकाशवाणी
0: भोपाल
1: भोपाल
0: केंद्र से।
1: जी।
0: और वो कृषि अभियांत्रिकी में जो जो नई नई उस समय उपकरण आ रहे थे, आज जैसे नए नए स्मार्ट मशीनें आ रही है, उस समय स्मार्ट नहीं थी, लेकिन जो ट्रैक्टर से चलने वाली उस समय जो नई आ रही थी, उनके बारे में मैंने आकाशवाणी के कार्यक्रम के थ्रू जानकारी दी है।
1: जी
0: और उस जमाने में तो मेरा कहना है कि किसान भाई भी सबसे ज़्यादा आकाशवाणी से ही जुड़े हुए थे। दूरदर्शन बहुत कम
1: जी जी
0: या गांवों में तो उतनी अच्छे से उपलब्ध भी नहीं था। किसान अपना खेती का काम करने के साथ आकाशवाणी को सुनने की उनकी फिर भी आदत थी।
1: जी यही रेडियो की पोर्टेबिलिटी है। रेडियो के साथ किसी प्रकार के ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सबका लोकप्रिय रहा है। विशेष तौर पर किसानों के लिए इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सर अब ये बात करें कि जो आप CIA का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप हुए हैं, तो उनके डेवलपमेंट में जो कुछ ख़ास बातें रही हैं या ख़ास उपकरण रहे हैं, उनके बारे में और उनके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की क्या कोई भूमिका रही है, इस बारे में आपके विचार जानेंगे।
0: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जहाँ तक कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की बात करें
1: जी,
0: तो उसने भी अभी पिछले साल ही 50 वर्ष पूरे किए हैं।
1: जी
0: जब शुरू में खेती में उपकरण का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, तो मनुष्य और पशु चालित उन्नत कृषि यंत्रों के विकास पर हमारा काफ़ी जोर था।
1: जी
0: उस समय तो आकाशवाणी ही मेन मीडियम होता था, जिसके थ्रू हम किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते थे।
1: जी
0: उस समय इतना इजी नहीं था कि आपको मोबाइल हो और मोबाइल पर आप यूट्यूब या उसके थ्रू भी आप या व्हाट्सएप के थ्रू किसानों तक बात पहुँचाए। तब उस समय आकाशवाणी था, उसके बाद दूरदर्शन भी एक मीडिया आया, लेकिन उसकी भी उतना पेनिट्रेशन नहीं था। उसके बाद धीमे धीमे जैसे इम्प्रूव टूल्स एंड मशीनरी पर, जैसे ट्रैक्टर ऑपरेटेड, सेल्फ प्रोपेल्ड पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और आजकल जो हम स्मार्ट मशीनरी के डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इन सब के जब तक किसानों के पहुंचाने के लिए अभी भी एक आकाशवाणी एक सशक्त मीडियम है, जिसका कि हम समय समय पर उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूसरे मीडियम भी यूज करते हैं, लेकिन आकाशवाणी की भी उसमें एक अहम भूमिका है।
1: जी, और हमारे यहाँ से प्रसारित कार्यक्रमों में आपके संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कॉन्ट्रीब्यूशन सराहनीय रहता है, और किसानों के लिए जो भी तात्कालिक महत्व के प्रश्न होते हैं, विषय होते हैं, उन पर बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में 1 जून से 30 जून के मध्य केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के नाम से लॉन्च किया गया है, तो इसमें आप अपने संस्थान की और आकाशवाणी की भूमिका को किस प्रकार से आंकते हैं?
0: पहले तो मैं खेत बचाओ कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा।
1: जी,
0: उसमें यह है कि आप सब जानते हैं कि अभी ईरान और US का युद्ध चल रहा है, और ख़ास तौर से उसकी वजह से जो मतलब तेल वगैरह का जो इंडिया इंपोर्ट करता है उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है, और तेल की कीमतें बढ़ गई है। तो उसकी वजह से अब ये जो हमारे खाद बनाते हैं या खाद के लिए जो कारखाने चलते हैं वो भी सब तेल पर निर्भर है, यहाँ तक कि उसमें कुछ इंपोर्ट भी किया जाता है। तो इसको बचाने के लिए खेत बचाओ अभियान में विशेष जोर है। अभी क्या होता है, किसान खाद खेत में खेत की ज़रूरत के हिसाब से न डाल के उसको जितना मिल जाता है
1: उतना
0: वो उतना डाल देता है। वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा खाद डालूंगा तो मेरी पैदावार ज़्यादा होगी। तो मेरा किसानों से ये आग्रह है कि खेत की मिट्टी की जांच कराएं, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसके बाद देखें कि खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता के अनुसार खेत में उपयोग कराएं। उसमें जैसे कि खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में रामसिया गांव से हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 1 तारीख को किया। उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और किसानों तक इस अभियान की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। लेकिन उसमें विशेषकर मैंने वहाँ भी देखा कि आकाशवाणी से भी भोपाल आकाशवाणी की टीम उपलब्ध थी, और उन्होंने भी उस प्रोग्राम को कवर किया, जिससे कि किसानों तक अधिक से अधिक जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में मिले। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वैज्ञानिक इस इन 30 दिनों में अलग अलग गाँवों में जाके किसानों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, और उसमें भी आकाशवाणी अपना योगदान दे रहा है।
1: जी, हम सर बात करें ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और विशेष

0: तौर पर आपके माध्यम से जो यंत्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है, तो जो महिलाओं के लिए जो ऐसे यंत्र जिनको कि महिलाएं भी अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें, इस पर भी आपके संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से हम किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं?
1: मेरा आपसे यही कहना है सभी से कि जो भी उपकरण होते हैं
0: जी,
1: वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उसको महिला या पुरुष दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि दोनों की कैपेबिलिटी
0: जी,
1: दोनों के स्ट्रेचर में डिफरेंस होता है, स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है, तो अपन को उस प्रकार से उपकरण हम विकसित करते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट देते हैं, जिससे कि मेल एज वेल एज फीमेल दोनों कार्यकर्ता ढंग से उसको उपयोग कर सकते हैं। आकाशवाणी से भी मेरा यही अनुरोध है, समय समय पर हमारे साथी और हम लोग आकाशवाणी के थ्रू भी महिलाओं तक ये समाचार पहुँचाते हैं, आपके लिए हमने उपकरण विकसित किए हैं या उन जो एग्जिस्टिंग उपकरण थे उसमें मॉडिफिकेशन किया है कि उनको आपके लिए सूटेबल बनाने के लिए, और उसमें हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारे संस्थान में आयोजित करते हैं जिसमें कि आप भाग ले सकते हैं, और आकाशवाणी के थ्रू भी ये हम किसानों तक और महिलाओं तक पहुँचाने का काम करते हैं।
0: जी सर, यहाँ पर मैं विशेष तौर पर किसानवाणी कार्यक्रम की बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसानवाणी जिन केंद्रों के माध्यम से होता है, हमारे लोकल रेडियो सेंटर्स हैं वो, और उसमें स्थानीय स्तर पर किसान जो हितग्राही हैं उन तक रेडियो पहुंचता है, और वहां पर KVK और बड़े संस्थानों के जैसे आपका संस्थान है यहां के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको लाइव डेमो दिया जाता है, और उस कार्यक्रम का एक रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा प्रसारण किया जाता है। तो ये जो भूमिका रही आकाशवाणी की, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
1: इसमें आकाशवाणी की भूमिका तो बहुत अच्छी रही है
0: जी।
1: दूसरा ये है कि आकाशवाणी की एक्सेस या अवेलेबिलिटी
0: जी
1: बहुत ज़्यादा है
0: जी, जी
1: कहीं भी आप कहीं भी सुन सकते हैं, उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आप चलते हुए भी आकाशवाणी पर
0: जी, जी
1: जानकारी ले सकते हैं, और आपके जो कार्यक्रम है वो किसानों तक अधिक से अधिक संख्या में इसके द्वारा पहुँच रहे हैं
0: जी। आपका कोई यादगार अनुभव रेडियो के संदर्भ में, चूँकि हम रेडियो का ये 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई आपका ऐसा यादगार अनुभव?
1: उसमें विशेष तो मैं पहले ही कुछ एग्जांपल बता चुका हूँ कि वर्ल्ड कप का फाइनल की कमेंट्री हमने रात को लेट तक जग के सुनी थी
0: जी,
1: वो भी एक बड़ा था। दूसरा है जो संगीतमाला
0: जी,
1: उस कार्यक्रम को हम करीब रेगुलर सुनते थे
0: जी,
1: और कृषि से संबंधित कार्यक्रम को तो हम उतना फिर भी अभी नहीं सुन पाते, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, और मेरा ये भी कहना है कि इसको थोड़ा और इनोवेटिव करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि पॉडकास्ट आ रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें क्या होता है कि आप बीच बीच में फोटोग्राफ्स डालें तो कम से कम और थोड़ा सा इंटरेस्ट किसानों का बढ़ेगा कि जो भी जानकारी दे रहे हैं आप किस मशीन की बात कर रहे हैं। जैसे हम इंजीनियर हैं, हम मशीनों की बात करते हैं, अगर केवल मैं बात ही करूँगा तो समझ में नहीं आएगा जिसने वो मशीन देखी नहीं है
0: जी।
1: तो उसके साथ फोटोग्राफ भी हो तो कम से कम उसको ये पता चलेगा कि ये मशीन है जिसके बारे में कि अपन आकाशवाणी में, तो इस प्रकार का आकाशवाणी में इनोवेशन किया जा सकता है
0: जी। आपने सर उसी प्रश्न का जवाब दिया जो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि जो वर्तमान परिदृश्य है, डिजिटल टाइम है, ये इस डिजिटल समय में हमें क्या क्या परिवर्तन लाने हैं ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में, और जैसा आपने बताया पॉडकास्ट का, तो हमने ये सिलसिला सर शुरू भी किया है, और जो आकाशवाणी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें पॉडकास्ट और अलग अलग माध्यमों से जो नए तरीके हैं तो उसके माध्यम से प्रसारण सुनिश्चित किया जा रहा है, और प्रसारण की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए FM चैनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। बदलते समय के साथ जो तकनीकी आवश्यकता है उस युग में हम लोग भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, हम सभी जानते हैं कि आपदा के समय पर, विशेष तौर पर जब बाढ़ या सूखा की बात आती है, आकाशवाणी ने आपदा प्रबंधन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने प्रसारण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उन तक राहत और रसद पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विशेष कार्यक्रम है मन की बात, वो भी वो आकाशवाणी के माध्यम से ही शेयर करते हैं।
1: जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है
0: जी,
1: एक तो क्या है कि आकाशवाणी का पहुँच बहुत ज़्यादा लोगों में है
0: जी, लगभग 100% क्षेत्रों तक कवर करते हैं, और जियोग्राफिकली 92% क्षेत्र को हम कवर करते हैं
1: जी। तो उसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा
0: जी,
1: 1971
0: जी,
1: जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
0: जी,
1: मैं बहुत छोटा बच्चा था
0: जी,
1: लेकिन तब भी मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि तब तो कुछ भी हमें पता नहीं लगता था।

0: केवल आकाशवाणी पर सुनते थे कि अच्छा इधर ये हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें सेफ्टी लेनी पड़ती थी, विशेषकर राजस्थान में।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल।
0: और हम छोटी ऐसी जगह रहते थे, घर की बिजली भी बंद करनी पड़ती थी रात को, तो उसमें भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, आजकल भी कभी भी कोई जैसे अलर्ट होती है उसका आकाशवाणी के थ्रू सभी तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है अलर्ट। और वो मैसेज क्या होता है कि कहीं आदमी चल भी रहा है तब भी उसको पता चल जाता है कि यह हुआ। उसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था गुजरात में
1: जी,
0: और उस समय मैं अहमदाबाद से भोपाल लौटा था
1: जी।
0: भोपाल में लौट के मैं रास्ते में था, आकाशवाणी को सुना तो पता चला कि भूकंप है, हल्के झटके भोपाल में भी आए, मुझे तुरंत चिंता हुई
1: जी।
0: तो इस प्रकार की है
1: जी,
0: सूचना जल्दी पहुंच जाती थी
1: जी।
0: दूसरा एक ये एग्जांपल जैसे मन की बात है
1: जी,
0: तो इस बार 134वां एपिसोड था मन की बात का, प्रधानमंत्री जी का जी। वो हमने हमारे संस्थान में उसको लाइव सुनने के लिए रखा था, विशेषकर किसान भाइयों के लिए
1: जी।
0: उसमें 200 करीब किसान भाइयों ने भाग लिया था
1: जी।
0: और उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल साहब ने भी शिरकत की थी। उन्होंने न केवल हमारे संस्थान के जो मशीनें डेवलप हुई उसके बारे में जानकारी ली थी, बल्कि मन की बात का भी सुना था और उसके साथ किसानों के साथ भी उसको शेयर किया था और इम्पोर्टेंस बताई थी। तो मेरा ये कहना है कि उसकी एक जैसे आप मन की बात का सुनेंगे कि 134 एपिसोड हो गए
1: जी,
0: तो ये एक पेनिट्रेशन शो करता है। दूसरा, उसमें भी इनोवेशंस आपने देखा होगा कि शुरुआत के जो एपिसोड थे वो केवल रेडियो पर सुनाई देते थे, अब आप चाहे तो उसको टीवी पर भी दिखा सकते हैं, उसमें विजुअल्स भी ऐड किया गया, तो ये भी आकाशवाणी का एक इनोवेशंस है। तो यही मैं आपकी जानकारी में शेयर करना चाहता था और ये भी कहना चाहता था कि आकाशवाणी की अभी भी काफ़ी रिलीवेंस है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि आज इतने अधिक मीडियम आ गए, मोबाइल पर वो आ गए, ऑप्शंस आ गए, लेकिन फिर भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है।
1: हमारे श्रोताओं के लिए सर कोई संदेश आप देना चाहें?
0: श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि आप न केवल आकाशवाणी से जुड़े रहें, बल्कि आप अदर मीडियम्स जो भी है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके साथ जुड़े रहें। और ये विशेषकर ये भी कहूँगा कि दूसरे मीडियम पर तो सूचना जो मिलती है उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन आकाशवाणी सूचनाओं को जांच करके ही उसको प्रसारित करता है,
1: उसकी एक्यूरेसी है,
0: तो उसके लिए आप रिलायबिलिटी की वजह से भी उस पर आप भरोसा कर सकते हैं
1: जी। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को कि कृषि विकास और यंत्रीकरण के क्षेत्र में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि थे सीआर मेहता साहब, इन्होंने हमें बताया कि रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि किसानों के जीवन में परिवर्तन का भी साधन रहा है। आशा है चर्चा हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को अपनाने के लिए उनको मार्गदर्शन मिलेगा। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और प्रतिभागिता सुनिश्चित की।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय था कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सीआर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की थी चंद्रशेखर शर्मा ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरे और हुआ।
0: कार्यक्रम का पहला गीत जयदीप साहनी का लिखा, संगीत सलीम सुलेमान का। आजा नचले फिल्म का ये गीत है जिसे आवाज़ें दी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: मोहित चौहान की आवाज़ में गए जब वी मेट फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, शाम के 6:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय है पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, मध्य प्रदेश चीतों का नया घर। मध्य प्रदेश के कूनो का प्रोजेक्ट चीता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ मध्य प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। वर्ष 1952 में हमारे देश से रफ्तार के बेताज बादशाह चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दशकों तक हमारे जंगल इस अनोखी दहाड़ को तरसते रहे, लेकिन फिर आया साल 2022 जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच ने

0: इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों और इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से भारत की धरती पर चीतों की सफल वापसी हुई है, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का एक नया अध्याय लिख दिया है। इस महाअभियान को जमीन पर उतारने और आगे बढ़ाने में हमारे हार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। सूबे के संवेदनशील और विकास परक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार कूनो नेशनल पार्क को न सिर्फ चीतों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बना रही है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। चुनौतियां बड़ी थीं, मौसम नया था और दांव पर थी देश की साख। इस पूरे मिशन को जमीनी स्तर पर संभालने, चीतों की 2400 घंटे सुरक्षा करने और कूनो के जंगलों में उनके कुनबे को बढ़ाने के पीछे वन विभाग की एक समर्पित टीम है। और आज उसी टीम के कप्तान यानी प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी श्री उत्तम कुमार शर्मा जी हमारे साथ सीधे कूनो से इस रेडियो चर्चा में जुड़े हैं। उत्तम जी, रेडियो पर हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: उत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में जब कूनो में चीतों को छोड़ा था, तब से अब तक ये प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है और सबसे बड़ी सफलता क्या रही है?
1: ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, सभी देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि चीता जो हम लोगों ने आज से 70 साल पहले खो दिया था, उसको 17 सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस भारत देश लाया गया। भारत देश में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाके उसको छोड़ा गया। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 8 नामीबिया से चीते माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितंबर को लाए गए थे। उसके बाद 12 और चीते साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को लाए गए और अभी हाल ही में 9 चीते बोत्सवाना से 28 फरवरी 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। कुल 29 चीते हम लोगों के अफ्रीका के अलग अलग 3 देशों से लाए गए हैं, उसमें से 20 आज की तारीख में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रोजेक्ट की कही जा सकती है इस लगभग 4 साल के कार्यकाल में, वो ये कि 33 चीते भारत की धरती पर जन्म हुए हैं और यहाँ फल फूल रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे पास में आज की तारीख में भारत में 53 चीते हैं
2: जी।
1: और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने कूनो के अतिरिक्त जो इसकी दूसरी साइट है गांधी सागर सेंचुरी, वो भी पिछले साल हमने शुरू की है और 3 चीते, 2 नर 1 मादा गांधी सागर में पिछले साल में वहां भेजी गई है। इस प्रकार 50 चीते कूनो में और 3 चीते गांधी सागर सेंचुरी में इस वक्त मौजूद हैं। और जिन उद्देश्यों के लिए को लेकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, हमें लगता है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर। जब भी किसी जानवर को किसी दूसरे प्रवास में विस्थापित किया जाता है तो उसकी अनुकूलता पर एक सवाल उठता है। जो चीते कूनो से हमारे देश में विस्थापित किए गए थे और जिन चीतों का जन्म कूनो में ही हुआ, वे दोनों ही किस प्रकार से अब भारत की स्थितियों में, विशेषकर कूनो की परिस्थितियों में ढल चुके हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोजेक्ट है इस सेंस में कि ये पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है किसी भी बड़े कार्निवोर का। इससे पहले कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं किया गया था, तो ये पहली बार प्रयोग किया गया। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में चीते लाए गए, जिसका मतलब ये होता है कि मौसम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जब वहां गर्मी पड़ती है तो यहाँ सर्दी पड़ती है और जब वहां सर्दी पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। तो चीतों के लिए अपने आप को उस प्रकार से विपरीत मौसम में ढालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी
2: जी।
1: तो लगभग पहले साल में इस प्रकार की चुनौतियां रही, चीतों के लिए भी चुनौतियां रही और हम लोग भी जो इसमें नए थे मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा इतिहास भारत देश में मौजूद नहीं था, क्योंकि 1952 के बाद में यहाँ चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस भी वन विभाग के पास में नहीं था
2: जी।
1: तो उस शुरुआती दौर के बाद से चीतों ने अपने आप को बहुत तेजी से यहाँ के वातावरण में ढाला है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की धरती, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के कोप्रेडेटर, यहाँ के प्रे, उन सब में चीतों ने बहुत तेजी से अपने आप को यहाँ पे ढाला है। ये वाकई आश्चर्य की बात है। इन लोग इतना, हम लोग भी और जो भी चीता के विशेषज्ञ हैं वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी ये अडेप्टेशन होगा, लेकिन हुआ। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि चीता की ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली हुई। जैसे मैंने बताया कि 33 भारत में जन्मे चीता आज की तारीख में हम लोगों

0: के पास में है, तो
1: जी
0: ये एक बड़ी उपलब्धि दर्शाता है। वो इस सेंस में भी बताता है कि चीता ने इस धरती को अडेप्ट कर लिया है, इस धरती को अपना लिया है, और ब्रीडिंग उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। तो वो जो शुरुआती दौर होता है 1-1.5 साल का स्ट्रगल का,
1: जी
0: उस दौर से हम लोग आगे निकल गए हैं, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में चीतों ने अपने आप को पूनो और मध्य प्रदेश के मौसम के हिसाब से ढाल लिया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। कूनो की धरती पर जब पहले शावक पैदा हुए तो वह पल कैसा था और उनकी परवरिश के लिए तब से लेकर अब तक क्या-क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
0: कूनो में सबसे पहला शावकों का जन्म जो है 29 मार्च 2023 को हुआ था, जब ज्वाला नाम की एक फीमेल ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। और वो हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समस्त भारतीयों के लिए एक बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि बड़ी छोटी सी अवधि में, लगभग 6 महीने के अंतराल में सक्सेसफुल ब्रीडिंग होके बच्चों का, शावकों का जन्म हुआ। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के सफलता के लिए और चीतों के अडेप्टेशन को दिखाने के लिए,
1: जी
0: तो सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल था। सामान्यतः जो है वो बच्चों की परवरिश माँ के ऊपर ही होती है, माँ बच्चों को संभालती है। हमारी तरफ से सिर्फ जो है वो जहाँ भी जरूरत हो, हमें लगता है कि कहीं असिस्टेंस की आवश्यकता है, चाहे वो फीडिंग के रूप में हो या किसी और रूप में, वो हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं, पर ये प्राइमरीली माँ की ही जिम्मेदारी होती है, और माँ उस जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाती भी है। हम लोग विशेष रूप से जो असिस्टेंस मैंने देखा है पिछले 3-4 साल के अनुभव में अपने, मैंने जाना है कि यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है
1: जी
0: बड़ा सीवियर होता है, 47-48 डिग्री से तापमान जाता है, लू चलती है। तो चीतों, बड़े चीतों ने तो अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन जो अभी नए नए शावक गर्मी के मौसम में से पहली बार जब गुजरते हैं,
1: जी
0: उनके लिए लू के कुछ दिन जो हैं वो देखने वाले होते हैं। मतलब वो हम मानते हैं कि उसमें कुछ घटना दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी
0: ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए हम लोग जहाँ भी चीता अपने बच्चों के साथ में है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी रहे, और हम लोगों ने अपने बाड़ों के अंदर जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं, जिससे कि एक ठंडा इलाका थोड़ा सा हम डेवलप कर सकें, तो लू से जिससे शावक अब बच सकें और पानी का उपयोग कर पाए। ये असिस्टेंस हमारी तरफ से एक प्रयास किया गया है, और हमें लगता है कि उसके हमें सफलता भी हमें मिली है, क्योंकि शावकों द्वारा उस इलाके का जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज्यादा है, जहाँ पे स्प्रिंकल लगे, उसका उपयोग भी ज्यादा किया जाता है। जब पहला मौका था जब बच्चे हुए थे, तो सभी के लिए बहुत खुशी का पल था, और उसी पहले ज्वाला की पहले बच्चों में से जो सबसे पहली हमारी भारतीय जन्मी फीमेल शावक जो है वो अब लगभग 3.25 साल की हो गई है, मुखी के नाम से है, और मुझे लगता है कि दे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी उसका नाम जाना जाता है कि मुखी भारत में जन्मी पहली चीता शावक।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेरा अगला सवाल है कि भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी को वैश्विक संरक्षण जगत ने किस नज़रिए से देखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट की किस प्रकार से सराहना हुई है?
0: ये प्रोजेक्ट वैश्विक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी भी इतिहास में नहीं किया गया, जब एक जगह से कार्निवोर को दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया गया है, तो सभी की नजरें हम लोगों पे टिकी हुई हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे कैसा चलता है, सफल होता है, नहीं सफल होता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। हमारा जो एक्शन प्लान, चीता एक्शन प्लान भी बना है, वो भी इस प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन सही मायने में कहता है कि 25 से 30 साल के बाद ही किया जा सकता है। तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इसमें गोल हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जरूर आकलन करते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो विश्व भी इसको उसी दृष्टि से देखता है कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के गोल हैं क्या, उस दिशा में प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर भारत इसमें सफलता अर्जित करता है और उन गोल को अचीव करता है, तो ये टेम्पलेट होगा सभी देशों के लिए जो इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं। तो सभी की नजरें इस पे हैं, और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के गोल इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे, जिसमें मुख्यतः ये था कि अडेप्टेशन जल्दी हो जाए, ब्रीडिंग यहाँ पे हो जाए, और जो मोर्टेलिटी है, जो एडल्ट मोर्टेलिटी होती है, वो नियर नेचुरल लेवल पे पहुंच जाए, उसमें कोई अधिकता ना रहे, जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है वो मृत्यु दर प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि इन 3 एस्पेक्ट्स पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही आगे बढ़ रहा है। वो तीनों चीजें यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हमने उस दिशा में सही प्रयास किए हैं, वो सफल भी रहे हैं। और उसके अलावा जो और सफलता के आकलन हम लोग करते हैं कि भाई लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी।

0: है नहीं बढ़ी है, यहाँ के हैबिटाट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़े हैं और सफलता भी हमने प्राप्त की है। यहाँ पर लोगों का सहयोग हमको बहुत अच्छा मिला है, लोगों ने बहुत लोकल लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है, जिसकी वजह से चीता आज यहाँ सुरक्षित भी है और सुरक्षित घूम भी रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, अच्छी संख्या में आते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि टूरिस्टों की संख्या में लगभग 4 साल पहले से 5 गुना इजाफा हुआ है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ये इन सभी पैरामीटर पे जो इसकी सफलता का आकलन करेंगे, उन सभी पैरामीटर पर हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सभी की नजरें उस पर हैं कि क्या एक व्यापक रूप से कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये प्रोजेक्ट भारत में आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है।
1: जी सर, अभी तक हमने बात की अडॉप्टेबिलिटी की, अडॉप्टेबिलिटी चीतों की कूनों के वातावरण से, कूनों के परिस्थितियों से, लेकिन एक अडॉप्टेबिलिटी की बात हम करते हैं कूनों में मौजूद जैव विविधता, यानी पहले से जो जानवर वहाँ मौजूद हैं, कूनों में पहले से तेंदुए हैं, लकड़बग्घे हैं, इन पुराने निवासी

0: हैं कि क्या एक व्यापक रूप से कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये प्रोजेक्ट भारत में आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है।
1: जी सर, अभी तक हमने बात की अडॉप्टेबिलिटी की, अडॉप्टेबिलिटी चीतों की कूनों के वातावरण से, कूनों के परिस्थितियों से, लेकिन एक अडॉप्टेबिलिटी की बात हम करते हैं कूनों में मौजूद जैव विविधता, यानी पहले से जो जानवर वहाँ मौजूद हैं। कूनों में पहले से तेंदुए हैं, लकड़बग्घे हैं, इन पुराने निवासियों और नए मेहमान यानी चीतों के बीच किस प्रकार से तालमेल रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: यहाँ पे कूनों में तेंदुए की काफी अच्छी संख्या है, लकड़बग्घा हाइना उसकी भी संख्या अच्छी है। और एक सबके मन में शुरुआत में ये डर था कि तेंदुए के साथ में चीता का इंट्रैक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में जहाँ पे भी चीते हैं ये कहा जाता है कि लगभग लगभग 10% चीतों की मृत्यु तेंदुए की वजह से होती है। तेंदुआ चीता के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक एप्रिहेंशन सबके मन में था। लेकिन हमारा जो पिछले सालों का अनुभव है उसमें यह है कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, चीता लेपर्ड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, हाइना के बीच में भी इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उसके कोई बहुत नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। चीता एक स्मार्ट एनिमल है, वो सर्वाइवल जानता है और लेपर्ड के साथ कैसे रहना है, लेपर्ड के बीच में कैसे रहना है, इसको वो पूरी भली भांति समझता है। इंट्रैक्शन हो रहे हैं, यदा कदा कभी नेगेटिव इंट्रैक्शन सुनने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से चीता को यहाँ पर ऐसा खतरा है कि वो सर्वाइव नहीं करता। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई भी बात है। एक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट है हमारे, अगर हम इस कूनों की बात करें तो कूनों में मुख्यतः ग्रासलैंड का एरिया है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में जंगल को सुरक्षित करने की काफी प्रयास किए हैं, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के प्रयास किए हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, ग्रासलैंड डेवलप किए हैं। उसका फायदा ये हमको मिला है कि जो स्पीशीज यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कभी नहीं थे या बहुत पहले कभी हुआ करते थे, उन स्पीशीज की वापसी हुई है।
1: जी
0: अभी हाल ही में हमको फॉरेस्ट आउलेट यहाँ देखने को मिला, जो इस कूनो लैंडस्केप में कभी पहले नहीं देखा गया था। पहली बार हिस्टोरिकली वो फॉरेस्ट आउलेट, जो कि बहुत ही रेयर बर्ड है और 90 के दशक में इसको एक्सटिंक्ट भी घोषित कर दिया गया था, वो कूनो में हमको मिला है। इसी प्रकार से भेड़िया, इंडियन वुल्फ जो है, वो कूनो में बहुत पहले कभी, 20 साल पहले कभी रिपोर्ट हुई थी, जो हमें अब वापस देखने में मिल रही है। और इसी प्रकार से वाइल्ड डॉग की रिपोर्टिंग भी कूनो लैंडस्केप में कहीं नहीं थी, उसकी भी रिपोर्टिंग हमको अभी हाल ही में हुई है। तो इस प्रकार नए नए जानवर जो कभी यहाँ पे लोकली विलुप्त हो गए थे, वो वापस इस लैंडस्केप में हमको दिखाई देने लगे हैं। तो ये सिर्फ चीतों के ही इंट्रोडक्शन की बात नहीं है, चीतों का इंट्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है ये जो पुराने लोकली विलुप्त जानवर थे उनके वापस लाने के लिए भी। तो इन सबके बीच में जो है अब चीता भी है, और मुझे लगता है कि चीता बहुत अच्छे से इनके साथ में एडजस्ट करेगा।
1: कुछ चीतों की मौत ने थोड़ी चिंता बढ़ाई थी, तो बीमारी और संक्रमण से बचाने के लिए मेडिकल टीम किस प्रकार से काम करती है ताकि चीतों को सुरक्षित रखा जाए?
0: इस पूरे प्रोजेक्ट में वेटरिनेरियन की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीता को नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग है, चीता एक फ्रेजाइल एनिमल, एक नाजुक जानवर है, जिसको अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत ज्यादा समय वो नहीं देता कि हम उसे बचा सके। तो एक बहुत हमारी वेटरिनरी टीम की बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। मेरे दो वेटरिनरी डॉक्टर जो हैं, वो जहाँ हमारा मुख्य चीता केंद्र है पालपुर में कूनो के अंदर, वहां पर 24 घंटे उपस्थित रहते हैं, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोजेक्ट में पिछले 4 साल में रही है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास एक मोबाइल हॉस्पिटल भी है, एक गाड़ी को हमने हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया है, जो हमेशा तैयार रहती है, और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग किसी भी जगह में जहाँ कहीं इमरजेंसी हमें चीता की पता चलती है, हम पहुँच सकते हैं।
1: जी
0: तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। 4 साल से कड़ी मेहनत उन्होंने की है, और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे चीता को कोई बात हो और हम लोग ना पहुँच पाए हों। हम लोग सही समय पे पहुँचे हैं और हमने काफी प्रयास किए। तो हमारे पास में सभी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट जो हैं, जो एक हॉस्पिटल में होने चाहिए या चीता का वेटरिनरी ट्रीटमेंट करने के लिए होने चाहिए, वो हम लोगों के पास में है।
1: जी
0: हमको सरकार ने इसमें पूरी खुली छूट दी है कि किसी भी प्रकार की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो वो हम लोग पूरी उस दिशा में हम लोग ध्यान देते हैं। दवाइयाँ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग को चाहिए रहती है, वो हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध है, और हम लोग बड़े सजग हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इतने बड़े जंगल में चीतों की निगरानी के लिए कौन-कौन सी आधुनिक तकनीक काम आ रही है?

0: हरे चीता हमारे द्वारा रेडियो कम सैटेलाइट कॉलर किया गया है, मतलब एक ऐसा कॉलर पहने हुए है जिसमें रेडियो सिग्नल भी आता है, सैटेलाइट से भी उसकी लोकेशन ली जा सकती है। हम लोगों के पास में एक मोबाइल में ऐप रहता है जिससे सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन आती है, और रेडियो सिग्नल ट्रैक करने के लिए एक रेडियो एंटीना होता है जिसे हमारी मॉनिटरिंग टीम जो है वो अपने साथ में लेके चलती है। तो कोई भी चीता हमारे खुले जंगलों में अगर है तो उसके पीछे एक टीम सतत रहती है, 24/7 एक टीम रहती है जो उसकी स्थिति मॉनिटर करती है और उससे एक उचित दूरी पे बना के रखती है ताकि चीता को भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, लेकिन चीता लोकेशन में रहता है। और यदि कभी चीता का मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियो सिग्नल की निश्चित सीमा होती है 500, 600, 800, 700 मीटर तक वो पकड़ पाता है, कई बार चीता का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, नदी क्रॉस कर जाए, पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाए, जहाँ टीम नहीं पहुंच सकती, तो फिर हम सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से उसकी लोकेशन प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में यूज की जाती है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग कैमरा ट्रैप का बड़ा रेगुलरली उपयोग करते हैं। कैमरा ट्रैप हम लोग लगाते हैं पूरे अपने जंगलों में, जिससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें पता चलती रहती हैं। साथ ही जो चीतों के बाड़े हैं, हमारे पास में लगभग 1,000 हेक्टेयर का ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने फेंस किया हुआ है प्रेडेटर प्रूफ फेंस है। और जब हम कहते हैं कि चीते बाड़े के अंदर हैं, वो इसी फेंसिंग के अंदर रहते हैं, जिसे हम सॉफ्ट रिलीज बूमा भी बोलते हैं। 1,000 हेक्टेयर को हमने 14 छोटे छोटे बाड़ों में बांटा गया, मतलब 70 से 80 हेक्टेयर का एक क्षेत्र होता है जिसमें एक चीता रहता है। तो इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए हमने हाई मास्ट कैमरा लगाए हुए हैं। ये कैमरा नाइट विजन से भी वो है, रात में भी देख सकते हैं, और पूरा हमारी फेंसिंग और बाड़ों की निगरानी जो है इससे हो पाती है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि प्रोटेक्शन में, इनके मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और के रिजल्ट भी हैं कि हर चीता हमारा बेहतर मॉनिटर हो पाता है।
1: सर, अभी हमारी बातचीत में आपने जिक्र किया कि गांधी सागर अभयारण्य को चीतों का दूसरा घर बनाने की तैयारी की जा रही है, और आपने बताया कि वहां शायद कुछ चीते छोड़े भी गए हैं। अभी क्या कुछ उसके लिए प्लानिंग चल रही है और कितने चीते वहां पर रखे जाएंगे, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
0: गांधी सागर जो सेकंड चीता इंट्रोडक्शन साइट है, ये लास्ट ईयर शुरू हुई है, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे दो चीते पिछले साल 20 अप्रैल को छोड़े थे, दो मेल चीते छोड़े थे, उसके बाद 17 सितंबर को एक फीमेल चीता और गांधी सागर में छोड़ा गया। इस वजह से तीन चीते गांधी सागर में हैं,
1: जी
0: और वो एक फेंस्ड रिजर्व के रूप में एक प्रयोग किया जा रहा है। फेंस रिजर्व मतलब आप जंगल का एरिया घेर देते हैं, वहां पर करीबन 68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फेंसिंग से घेरा गया है। ये कुछ अफ्रीकन, विशेष रूप से साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के फेंस रिजर्व होते हैं, और चीता इन्हीं फेंस रिजर्व में साउथ अफ्रीका में स्थापित भी हुआ था प्रारंभिक दशा में। तो ये फेंस रिजर्व कॉन्सेप्ट पे गांधी सागर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार वहाँ फेंस रिजर्व के अंदर करीबन तीन चीते हैं, दो मेल एक फीमेल, और भविष्य में भी उनकी संख्या में इजाफा हम लोग करेंगे जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा। ना सिर्फ गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि और जो साइट्स हैं, हम लोगों ने देश में 10 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं। जब शुरुआती दौर पर चीता इंट्रोडक्शन की बात होती थी, तब 10 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पर चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है,
1: जी
0: जिसमें से मध्य प्रदेश में एक नौरादेही टाइगर रिजर्व है
1: जी
0: और बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में है। तो अभी ये दो साइट भविष्य में बहुत जल्द ही हम लोगों की शुरुआत करने का है कि चीतों का विस्तार इन दोनों साइट्स में भी हो, और हम लोग जो है 4 साइट चीता के लिए डेवलप कर सके, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी चारों जगहों में मेंटेन रहे, इसको ध्यान में रखते हुए चीता का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। हमारे पास में तीन अलग अलग देशों से चीते लाए गए हैं, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से। तो तीन जो हमारी यहाँ पे भी साइट्स बनेंगी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि तीनों देशों के जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन इन साइट्स पे हो जाए।
1: जी
0: वो कितना फिजिबल होता है, कैसे होता है, ये भविष्य में जब हम निर्णय लेंगे तभी ये डिसाइड हो पाएगा।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चीता आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुका है। अगले 5 साल में ये कहाँ होगा? श्रोताओं को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: जैसा मैंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट एक अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, सारी दुनिया की निगाहें इस पे हैं। साउथ अफ्रीका में ये प्रोजेक्ट 70 के दशक में ऐसे शुरू हुए थे, चीता इंट्रोडक्शन के, नामीबिया से चीता साउथ अफ्रीका लाए गए थे और लगभग 20 साल तक वो पूरा फेलियर रहा, कहीं भी चीता स्थापित नहीं। 90

0: दशक में, फिर फेंस रिजर्व के भीतर उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद उन्हें तो सफलता उसमें मिली है। तो एक यूनिक प्रोजेक्ट एक की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम एक ओपन फॉरेस्ट में चीता दूसरे कॉन्टिनेंट से लाके यहाँ पे एक अलग तरीके का इतिहास यहाँ पे की बात हो रही है, तो विश्व इसको बहुत पैनी नजरों से देख रहा है। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पहचान बनाने में ये सफल भी हुआ है कि जो भी काम कोनों में हो रहा है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 सालों में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जैसा मैंने बताया कि 4 साइट हम लोगों की डेवलप हो जाए, कुलू, गांधी सागर, बन्नी और नौरादेही, ये 4 साइट हमारी डेवलप हो जाए और इन 4 साइट्स में चीतों की संख्या जो है वो एक हेल्दी पॉपुलेशन चीता की वहां हो। उसके बाद में फिर हम और बाकी साइट्स के बारे में भी विचार करेंगे। तो अभी 5 साल में हमारा उद्देश्य यही है कि चारों साइट्स पे चीता पॉपुलेशन बने और बढ़े, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और मेरा श्रोताओं से बस यही कहना है कि ये चीता, भारत में चीता की वापसी सिर्फ एक स्पीशीज की वापसी नहीं है, ये भारत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को वापस लाना है। हमने आजादी के बाद से कोई भी जानवर, ऐसा बड़ा मैमल, बिग मैमल, हमने नहीं खोया। सिर्फ एक चीता था जो हमने 1952 में खो दिया। और एक कहते हैं कि सबके मन में एक ऐसी बात थी, तो ये हमारा चीता हमारी एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। ऐतिहासिक काल से चीता हम लोगों के रहा है, तो इस चीता को वापस लाना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया है, उनके द्वारा यहाँ वापस लाना न सिर्फ चीता को वापस लाना है बल्कि हमारी खोई हुई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाना है। तो इस ये सिर्फ किसी एक प्रदेश की विरासत नहीं है, किसी विभाग की नहीं है, तो पूरे जितने हमारे देशवासी हैं उन सबकी एक विरासत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको वापस लाके दी। तो हम सबका ये दायित्व तो होता है कि इस विरासत को हम दोबारा ना खोने दें। जो भी अपने स्तर से हम संभव प्रयास कर पाए, जो भी मदद कर पाए, उसकी हमें उनसे अपेक्षा रहेगी।
1: एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई उत्तम जी। आज आपसे बात करके न सिर्फ हमें बल्कि हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं को प्रोजेक्ट चीता की उन बारीकियों और ज़मीनी हकीकतों को जानने का मौका मिला जो कि अक्सर अखबारों की सुर्खियों से भी पीछे छूट जाती हैं। श्रोताओं, आज की इस बातचीत से एक बात और साफ हुई कि धरती पर दौड़ते ये चीते सिर्फ एक वन्यजीव परियोजना का हिस्सा नहीं बल्कि यह नए भारत के उस ऊंचे संकल्प का प्रतीक है जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। और यह हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है कि हम प्रकृति को उसका पुराना गौरव लौटा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हमारा चीता स्टेट पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा रोल मॉडल बनेगा। उत्तम कुमार शर्मा जी, आपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की, इसके लिए हम पूरे आकाशवाणी परिवार और करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: श्रोताओं, तो ये थे उत्तम कुमार शर्मा जी, कूनो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी, जिन्होंने आज हमारे साथ इस सारगर्भित चर्चा में भाग लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, वार्ताकार अभिषेक कटियार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा होगी। 7:45 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे। 8:35 पर फिल्म संगीत। 9:30 बजे साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली से और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें। 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा 8:30 बजे। आरती तिवारी के गए बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत।

सातवीं, समय रहेगा सुबह 9:15। 9:30 सुनिएगा सिंधिया जी सुरहान। इसमें कल आप सुन सकते हैं उचित पोषण और खाद्य सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर ज्योति केशवानी से बातचीत। 10:00 जिले की चिट्ठी। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में कन्नड़ गीत सुनिएगा 10:05 पर। सुबह 10:30 पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका भाग 5 आप सुन सकते हैं। 10:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में 7:30 से 8:00 के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो ग्राम सभा, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीनानाथ घोरे। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए जानकारी दे दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसे सुन सकते हैं आप कल सुबह 11:00। 12:00 आपकी फरमाइश संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग 2। 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी शिवपुरी से ही सुनिएगा 1:30 लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 2:00, 2:00, 5:33 और 6:00। बच्चों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30, 2:30। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। पीएम मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:30। 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर फिल्म संगीत। रूपकों को अखिल भारतीय कार्यक्रम 9:30 और 10:00 अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, कहा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन

0: व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
1: ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LAC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज से पहले कैंसर रोकने का अभियान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर गुटखा, तम्बाकू, शराब और बीड़ी सहित अन्य नशीले पदार्थों को बंद करने का अभियान चलाएं।
2: हम एक अभियान नहीं चला, कैंसर हो उसके पहले कैंसर रोकने का, और वो अभियान है गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी बंद करने का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान। आखिर कितनी दारू और काय के लिए दारू? जानबूझ के विनाश के सामान क्यों इकट्ठे कर रहे हो? कई आते हैं कम उम्र के बच्चे, लीवर खराब हो, क्या तुम ये नहीं समझते तुम्हारा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता? माता पिता कहां से पैसे लाएंगे तुम्हारे लिए? क्या करेगा परिवार तुम्हारा? सारे माता पिताओं को, समाज को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, पूरे प्रदेश में चलाएं नशा मुक्ति का अभियान। उस दुकान के अलावा जो लाइसेंस ही है, घर घर में शराब, गाँव में शराब दुकानों में नहीं मिलेगी।
0: प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। वहीं जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन समझौतों के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध, किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी हेलियन द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली यह

0: अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगी। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया प्रशांत मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने आज बिजावर विधानसभा क्षेत्र के सटई नगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। खंडवा में महिला संबंधी अपराधों की विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रेशम पालन और वस्त्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न डिजाइनों की साड़ियां तैयार कर रहे हैं। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जिले में जल निगम द्वारा संचालित जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा सुनवे बारे हमें सभी भयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी ने भरी दो दो हाथ जोड़ के राम राम पहुँच पे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब इन्होंने हुओ। देखो का है भैया बहना हरों, थोड़ा थोड़ा सा मौसम अब बदलन लगो है। बस कारे और तेज हवा ने ठंडक तो कर दी है, लेकिन एक और समस्या है जो भोपाल के लोगों ने पिछले दिनन देखी, वो है पानी की समस्या। कही जा रही है कि पिछले दिनों पानी की मेन लाइन में खराबी हो जाने की वजह से शहर के लोग पानी के लाने तरस गए, और ई के लाने सरकारी टैंकरन के माध्यम से सप्लाई तो करी गई, लेकिन फिर भी हमारे कई भैया बहन पानी की समस्या से जूझत बे दिखे। सो भैया बहना हरों, पानी पानी बड़ो ही अनमोल है।

हमें मितव्ययता से ईको उपयोग करना चाहिए और पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। मैंने चार दिन शहर में पानी की सप्लाई ना होने से सबको ईको महत्व तो समझ में आई गो है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी पानी बचाओ और संकल्प ले हो कि अपने और आसपास के लोगों को भी पानी बचावे के लाने प्रेरित करो। सो चलो बातचीत अपन और भी करें। सबसे पहले सुन लेते हैं जो देवी गीत अनरत लाल बैरसिया के स्वर में।

0: ग्राम सभा में अब बेरा हो चली है बुंदेली समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिका मंच की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 को शुभारंभ करो। ई मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशन के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इको उद्देश्य भारत और इन देशन के बीच व्यापार और निवेश के नए मौका खोजबे की है। ई मौका पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधिकारिक वेबसाइट को लोकार्पण सोई करो, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरन को सशक्त बनावे की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक को विमोचन सोई करो। और बात करत है परामर्श शिविर की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर और जांच परामर्श शिविर को शुभारंभ करो। इस मौका पर उन्होंने कही है कि कैंसर के इलाज से पहला कैंसर रोकवे को अभियान चलावो जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कही है कि हम सब मिलकर गुटखा तम्बाकू

शराब और बीड़ी समेत अन्य नशीले पदार्थों को बंद करबे को अभियान चलाए। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इकाई से जुड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर में इंडस्ट्रियल पार्क स्थित भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई को भूमि पूजन करेंगे। विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी हेलियन द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपया की लागत से स्थापित हुई व्यापारी जो अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों ई के निर्माण पर केंद्रित हुए, जितने उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार और आवश्यकताओं की पूर्ति के संग एशिया प्रशांत मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र के अनेक देशों में भी निर्यात करी जय है। अब बात कर रहे थे राज्यसभा चुनाव की। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लाने भारतीय जनता पार्टी के दो उम्मीदवार ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंच के अपना नामांकन दाखिल करो। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों के लाने आगामी 18 जून को मतदान होने हैं। और अब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के संग बैठक की अध्यक्षता करी। इसके दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देवे के लाने विभिन्न विचारन और उपायन पर चर्चा सुई करी गई। उतई जीवन स्तर व्यापार में सुगमता लाभे के लाने विभिन्न सुधारन पर भी विचार विमर्श करोगा। और अब बात करते हैं मेरा भारत युवा सम्मेलन की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कही है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और साल 2047 तक विकसित भारत को सपना पूरा करवे के लाने अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लाने युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करत भय श्री मंडाविया ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं विचारों और शैक्षिक योगदान की भावनाओं को साझा करवे के लाने देश को जो मंच प्रदान करो है। और अब बात कर लिए थे सौर ऊर्जा क्षमता से जुड़ी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही है कि पिछले 12 सालन में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगाबाइट से बढ़कर 155 गीगाबाइट हो गई है। श्री शेखावत ने कही है कि आज सोशल मीडिया पोस्ट में 40 लाख से ज्यादा घरन में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। और अब बात कर रहे थे AAIMOU की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश भर के हवाई यात्रियों के लाने कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दो निजी कैब कंपनियों के संग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कही है कि इन समझौतन के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डन पर यात्रियों को निर्बाध किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाए हैं, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बन पे है। अब बात करते हैं BCCI टीम की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के संग होवे वाली T20 श्रृंखला के लाने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम को कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान हुए और वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल करो गए। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए हते। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। और चलत चलत बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहला ही प्री मानसून की गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा जिलों में बसकारों दर्ज करोगा। मौसम विभाग ने गुना अशोकनगर विदिशा सीहोर देवास हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करो। इतने तेज आंधी गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल इंदौर उज्जैन नर्मदापुरम ग्वालियर जबलपुर रीवा और शहडोल सागर संभागन के संग कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई है। और ई के संग बुंदेली समाचार अब समाप्त है। बुंदेली समाचार। भैया बहनों बातें और भी हैं और जानकारी भी हम आपको सुनवा हैं, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं जो दादरा आभा खरे को गाओ भाओ।

भैया बहनाहरों, किसानन को उनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पावे ई के लाने मध्य प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करो है, जी के माध्यम से किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पा सकत हैं और बेचबे के लाने ऑनलाइन पंजीयन और स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी जात है। ई उपार्जन के माध्यम से ई पोर्टल में अनाज जैसे कि गेहूँ, धान, चना, मसूर, सरसों, मूंग, उड़द की खरीद और मॉनिटरिंग पारदर्शी तरीका से करी जाते हैं। ई में MSP को सीधो लाभ किसानन को मिलत है, वे अपनी उपज बेच सकत हैं, घर बैठे पंजीयन कर सकत हैं, मैंने कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन ई को पंजीयन करो जा सकत है। स्लॉट बुकिंग के लाने फसल को मंडी या खरीदी केंद्र पे कौन देना लेके जाना है, अपनी सुविधा के अनुसार किसान तारीख और समय और स्लॉट चुन सकत हैं। सीधो बैंक ट्रांसफर में फसल खरीद के बाद भुगतान राशि सीधे किसानन के आधार लिंक्ड बैंक खातन में ट्रांसफर करी जात है। SMS अलर्ट में इमें खरीदी केंद्र पर अनाज लाभे की तारीख, स्थान और भुगतान संबंधित सभी जानकारियां SMS के जरिए मिल जाती हैं। तो बता दें कि किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन के लाने पंजीयन

25 मई से लेकर 15 जून तक पोर्टल पे कर सकत है। और ई सीजन में प्रदेश की सरकार ने उड़द की फसल पे अतिरिक्त बोनस भी दो है। सो हम किसान भैयन को जो ये कहना चाहते हैं कि आवश्यक दस्तावेज समग्र आईडी, आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाता की पासबुक, भूमि से संबंधित दस्तावेज जिनमें खसरा नंबर और ऋण पुस्तिका भी शामिल है, अपना मोबाइल नंबर आधार बैंक और खाते से लिंक होने चाहिए, और आप पंजीयन करबो चाहते हैं तो अपनी पावती रसीद देखबो चाहते हैं तो प्रदेश सरकार के ई उपार्जन पोर्टल पर जाके ई को देख सकते हैं। सो जो तो है बातचीत और अब आपको सुनवा देते हैं जो दादरा अर्चना जाटव को गाँव भाव।

भैया बिना हर ऑफ फार्मर आईडी भी हमारे किसान भैया अपनी बनवा सकत हैं। ई किलाने का करने हैं जो हम आपको बताए देते हैं। फार्मर आईडी के लाने भूमि बैंक विवरण सरकारी योजनाओं को एकल डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं जो कृषि सब्सिडी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने में मदद करत है। सो ई किलाने भैया बहना हरें का कर सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि सब्सिडी के लाभ सीधे प्राप्त करवे के लाने ई को अनिवार्य कर दो गो है। ई किलाने एकल डेटाबेस में किसान को पूरा रिकॉर्ड जैसे नाम पिता को नाम जमीन और सब जगह को विवरण एक ही डिजिटल रूप में सुरक्षित रह जाते हैं। आसान ऋण प्रक्रिया जी में बिना कोनो परेशानी के किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कृषि लोन प्राप्त करवे में सहायता मिलत है। और ई किलाने ऑनलाइन आवेदन करवे किलाने हमारे किसान भैया अपने आधिकारिक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाके फार्मर रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करके अपनो

भैया बहना हरों, ई लोक भजन के संगे ग्राम सभा कार्यक्रम हम इतना ही समाप्त करते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल सवेरे 6:45 पे कृषि चर्चा में आपको सुनवाए हैं जीवाणु खाद विषय पर डॉक्टर मदन लाल जोशी से जानकारी, और ई के संगे स्वीकार करो पूनम बैन की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है
3: 8860088827। जी हाँ 8860088827।
2: हम आज देखते हैं कि लोग खास तौर पे माता पिता आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपीचंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी। तो सर हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद प्रियंका और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: सर आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया जो कि बहुत ही अजीब होता जा रहा है। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलट कर जवाब दे देते हैं। और सर कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के

0: हमने शर्मिंदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका, पर आपको ये जानना होगा कि ये परेशानी हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। प्रियंका, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
0: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
1: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलट कर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं और ये हमें बच्चों में नज़र आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है, और उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
0: मतलब ये नेचुरल है सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाएं या ठीक हो जाएं या इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं, पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं, माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके, और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है। और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका हमारे श्रोताओं, एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं। उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है, और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं,

0: वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूँकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज़ को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज़ के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड़ ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और ये गलतियाँ बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की ज़रूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों एक बार एक ईशान नाम का लड़का था, उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज़ की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वहीं किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर

0: भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए दोस्तों। जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे ज़्यादा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। सो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: तो दोस्तों, और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

0: इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है
0: जी।
1: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
0: जी,
1: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
0: जी।
1: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो
0: जी।
1: और जो जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजट

0: You see, for a very long time, what had happened is, like, I think Sushma ji was mentioning very rightly, she was saying that it's never been that there has been lack of potential on the side of Indian women. You know, women in our country have a profound legacy of strength. Throughout centuries, if you look, they've led empires, they've driven social reforms, you know, they've even fought on the front against the colonial British rule. I mean, we have Rani Lakshmibai as an example, Rani Chennamma, Ahilyabai Holkar. Among freedom fighters, we have Lakshmi Sehgal, Sarojini Naidu. So there are n number of examples of women enterprise in our country through different sectors and through different segments. What had happened is suddenly after independence, there was lack of policy intent to see women as drivers of change. So, you know, you were not looking at women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. And like you said, that women have been brought into the financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the Jan Dhan accounts. Now, this sounds very simple, it sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance accounts, majority of the accounts are owned by women. I think, if not majority, at least 40% of these accounts are with women. And around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Samriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the JAM Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar, and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, Pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sonu.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशंस एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ विमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer.
2: Ek
1: yes. aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
1: जी
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
1: जी जी.
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
2: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
1: yes.
2: which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when
2: yes.
1: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
2: yeah,
1: due to the
2: yeah.
1: Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
2: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future.
1: Yeah.
2: You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
1: Yes.
2: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है.
1: Yes.
2: This is the linkage.
1: Yes.
2: Between women's health and the empowered or Vikasit Bharat, as we say. Atmanirbhar Bharat bhi usi mein mila hua hai.
1: Absolutely. Aditi ji, coming to you, agar hum safety ki baat kare, ek dignified life ki baat kare, to jo mission shakti ek mission wo raha hai, muhim sarkar ka, jiske tahat unhone kai aise initiatives wo laaye hain jisse ki mahilaye surakshit mehsoos kare, jisme abhi jo latest hai She Box portal, jo digital platform hai sexual harassment complaints ka workplace pe unko register karne ka, iske bare mein aap thoda sa bata sakti hain ki iska विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ। ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल

0: लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजोल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का। जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
1: बिल्कुल ही पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है, सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, 2-फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी, जी।
0: अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल, पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है।

0: है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। There can't be a better recipe because if you get some financial support which women need usually and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, yes. They may have their own financiers also, like they are coming up now, but with that you also need later skills because skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they're ready for the world. और ये सरकार चाहती है, women led development कब होगा? वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
2: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों

0: का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
0: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आंधी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत मौसम फिल्म से लिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की, संगीत मदन मोहन का।

मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश, वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। ये प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर,

आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है ये। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopar@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: रेडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को

0: विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय

0: महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers.

0: He accomplished this achievement in the boys' sub-junior artistic single competition. So far, India has won a total of 7 medals, including 6 gold, in this world-class yoga competition. In chess, 19-year-old Savita Srivastava has won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. With this win, she also secured qualification for the 2027 FIDE Women's World Cup. In the one-off cricket test against Afghanistan, India ended day one with a score of 368 for 3 in their first innings at Stumps in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Szwalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाज़राई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वजीर आजम को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वजीर आजम के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی

0: तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमुई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तयन करने से मुतालिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम अज कम 9 अफराद की मौत हुई, जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्द आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों, ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। एक देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔

गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका

0: बोवा की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुँचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: नृत्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के कर। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा नहीं, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्हें कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि ये कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और फिर कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उसका प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप

0: हाँ मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे

0: समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग से उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है, तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उससे कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाए, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए जो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उससे मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से

0: दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भावभंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र, तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
3: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी

0: आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के टेक्नीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य।

आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाई हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुड़े आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing.

0: his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
1: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुलडे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर. अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से. विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है. बोल है प्यारी पग होले होले. इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशे प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी.
0: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashay Kulkarni and on the harmonium by Shri Makaranda Kharvandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग